सुप्रभात, हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई 2026। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में प्रातः के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: FM 14.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी देहरादून है। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर 2 गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के

0: बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है चिंतन।
2: इस देश को सती प्रथा से मुक्त कराने वाले महापुरुष राजा राम मोहन रॉय प्रत्येक भारतीय के लिए प्रातः स्मरणीय है। राजा राम मोहन रॉय को उदार विचारों के मौलवियों द्वारा कुरान की दीक्षा तथा सूफियों की रहस्यवादी नज्मों व दर्शन ने विशेष रूप से आकर्षित किया था। इसी प्रकार उपनिषदों में प्रतिपादित एकेश्वरवाद के सिद्धांत ने भी उन पर अपना गहरा प्रभाव डाला। परिणाम स्वरूप शनह शनह उनका विश्वास एकेश्वरवाद के प्रति दृढ़ हो गया। उन्हें एक ऐसे ईश्वर का बोध हुआ जिसका आधार पूर्ण सत्य था और जिसे उन्होंने सभी धर्मों में समान रूप से विद्यमान पाया। राम मोहन रॉय का दृढ़ विश्वास था कि हिंदू, इस्लाम और बौद्ध आदि धर्मों में एक मूलभूत एकता है और वो है ईश्वर की पूजा। वे अंधविश्वासों और अंधभक्ति के कट्टर विरोधी थे। वे तर्क के आधार पर ही किसी बात पर विश्वास करते और थोथी सिद्धांतवादिता का विरोध करते। उनका मत था कि लोगों को सभी धर्मों के मूल सत्य को पहचानना चाहिए। राम मोहन रॉय ने ईसा को एक मानवतावादी नैतिक उत्थान का प्रवर्तक और मार्गदर्शक बताया। इसी प्रकार उन्होंने बौद्ध धर्म के विश्व बंधुत्व के आदर्श से भी प्रेरणा ली। विभिन्न धर्मों के वास्तविक उद्देश्य को जानने के बाद उन्होंने सभी धर्मों के सामंजस्य पर विशेष जोर दिया था। वे धर्म को केवल सत्यता के आधार पर लोगों तक पहुंचाना चाहते थे और ये प्रदर्शित करना चाहते थे कि ईश्वर एक है, जो जाति, धर्म और रंग में कोई भेद नहीं करता। सभी धर्मों में विद्यमान

0: काल्पनिक कथाओं को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। उनका मानवतावाद भी केवल भावुकता मात्र नहीं था। इसलिए मैक्स मूलर और मोनियर विलियम्स ने भी यह स्वीकार किया कि राम मोहन रॉय विश्व के सबसे अधिक प्रगतिशील विचारक धर्मशास्त्री थे। उनका मत था कि ईश्वर की पूजा दान दया नैतिकता परोपकार और सद्गुणों की वृद्धि करने तथा सभी धर्मावलंबियों में पारस्परिक भाईचारा बढ़ाने के लिए की जाए। इस प्रकार वे सभी धर्मावलंबियों को एक ही प्रार्थना भवन में एकत्र कर प्राचीन ऋषियों के विश्व बंधुत्व के सिद्धांत को पुनः जीवित करना चाहते थे। उनका कहना था कि अगर हम धार्मिक भेदभाव को त्याग कर सामान्य बुद्धि व वैज्ञानिक अनुसंधान के निष्कर्षों का सहारा लें और पक्षपात रहित दृष्टि से देखें तो समस्त मानव जाति एक ही परिवार है। उनका मूल मंत्र था, चिंतन केवल एक का हो जो सर्वव्यापी और घट घट में निराकार रूप में विद्यमान है।
1: चिंतन, अभी आप सुन रहे थे, वाचन स्वर विभूति भूषण भट्ट का था।
2: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी देहरादून। प्रातः के 6:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देशगान से।

ये आवाज़ थी हरिहरन की। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और वंदना कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं ये अगला भक्ति गीत अनुराधा पौडवाल के स्वर में, शब्द भरत आचार्य के।

ये आवाज थी भीमसेन जोशी की। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। और अब सुनिए कार्यक्रम में नाथ अब्दुल रब और साथियों की आवाजों में।

अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। ये आकाशवाणी देहरादून है। 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का आज का अंक।

भगवान शिव ने जगत जननी पार्वती को इस प्रकार वो कथा सुनाई जो काक भुशुंडी ने गरुड़ का मोह भंग करने के लिए सुनाई थी। प्रभु के चरित्र की संख्या अपरिमित है, अपार, जिनका वर्णन स्वयं सरस्वती भी नहीं कर सकती। भवानी कृतकृत्य हुई, उनके मन का संशय मिट गया, श्री राम के प्रताप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया।

ये था श्री रामचरितमानस गान का आज का अंक एफएम 104.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी देहरादून है। 6:50 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

आज रात्रि 9:15 पर हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा कार्यक्रम स्पॉटलाइट। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम भी हमारे दिल्ली केंद्र से ही रिले किया जाएगा। प्रसारण समय रात 9:30। आज रात 8:15 पर सुनना ना भूलें। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देहरादून स्थित दून लाइब्रेरी में आयोजित संगीत संध्या पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। फिल्म संगीत के अंतर्गत कुछ देशभक्ति गीत आप सुनेंगे अब से कुछ ही मिनटों के अंतराल पर, यानी प्रातः 7:10 पर। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून सुनिएगा रोज की तरह ही आज सवेरे 8:30 पर, जिसके ठीक बाद यानी प्रातः 9:00 समय होगा सदाबहार फिल्मी गीतों का। हमारे केंद्र से विभिन्न फिल्म संगीत के विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद लीजिएगा। प्रातः 10:11 पर, दोपहर 1:15 पर, शाम 7:40 पर और रात 8:30 पर। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम सुनना ना भूलें। व्हाट्सएप फरमाइश सुबह 11:00 और आपकी फरमाइश रात 10:30 पर। दोपहर 12:12 पर आज आप सुनेंगे अर्चना तलगांवकर की गायी चंद गजलें सुगम संगीत के कार्यक्रम में। उत्तराखंड की प्रमुख महिला साहित्यकार विषय पर गढ़वाली वार्ता सुनिएगा डॉक्टर ममता कुंवर से।

कार्यक्रम जनानों का वास्ता में दोपहर 12:30 पर। शाम 4:02 पर समय शास्त्रीय संगीत का होगा। आप सुनेंगे पंडित मणिलाल नाग का सितार वादन, राग होगा सरस्वती। युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे आज शाम 5:10 पर। संध्या के 5:45 पर ग्राम जगत के अंतर्गत आप सुन सकेंगे श्री शंभू प्रसाद रतूड़ी से गढ़वाली कहानी। शाम 7:00 किसान भाई बहनों के कार्यक्रम कृषि जगत का होगा। और क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून का विशेष कार्यक्रम राज्य दर्शन प्रसारित किया जाएगा आज शाम 7:50 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवीके सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच कराने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों की प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन

0: नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अंतिम अनुमान पिछले कार्य वर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में है। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Central Bureau of Investigation, CBI, has taken into its custody Shubham Khairnar in connection with the alleged NEET paper leak. Shubham was detained from Nashik in Maharashtra yesterday by the Crime Branch Unit of Nashik Police on request of Rajasthan Police. The NEET UG 2026 exam for admission to undergraduate courses in medical colleges held on 3rd of this month was cancelled yesterday amid allegations of paper leak. The government asked the CBI to carry out a comprehensive inquiry into the irregularities. In a related development, a parent of a NEET UG 2026 candidate has filed a complaint with the Latur SP office alleging that a private coaching institute conducted a mock test before the exam in which 42 questions reportedly matched those asked in the actual NEET paper. SP Amol Tambe directed the sub-divisional police officer to conduct an immediate inquiry and initiate legal action against those found guilty. Earlier, Rajasthan Police Special Operations Group detained 15 people during investigations into the suspected network and money trail. The Special Operations Group yesterday detained an alleged mastermind, Manish, from Jaipur. In Tamil Nadu, the TVK government is scheduled to prove its majority in the assembly today. Chief Minister C. Joseph Vijay has been holding meetings with leaders of supporting parties to consolidate support ahead of the floor test. Along with the backing from allies, the TVK government has secured the support from the breakaway faction of AIADMK and the lone MLA of Amma Makkal Munnerettra Kadagam, S. Kamaraj. The TVK now has support of around 150 MLAs in the assembly. Meanwhile, in a dramatic turn of events in the political situation in Tamil Nadu yesterday, the AIADMK split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Idappadi Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. A high-level Indian parliamentary delegation led by Lok Sabha Speaker Om Birla will visit Bhutan from today with the main objective of further strengthening India-Bhutan relations. The 51-member delegation includes MPs from Rajya Sabha and Lok Sabha and officials from the Ministry of External Affairs. The delegation is expected to hold discussions on various aspects of Bhutan-India relations and ways to enhance cooperation between the two neighbouring countries. The delegates will also meet the King of Bhutan and the Prime Minister of Bhutan during the visit. In West Bengal, following the change of government, the state police

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: फिल्मी देशभक्ति गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला और अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं स्वदेश फिल्म से, जिसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत AR रहमान का और आवाज़ भी AR रहमान की ही।

0: फिल्मी देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी देहरादून है। प्रातः के 7:20 हुए हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में वन भूमि हस्तांतरण को स्वीकृति दी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय का दल आज से उत्तराखंड के प्राकृतिक उत्पादों का अध्ययन करेगा। स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की योजना पर होगा काम। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआर सी पुरुषोत्तम ने राज्य में एसआईआर की तैयारियों की समीक्षा की और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक कर राज्य में सहजन की खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय के निर्माण को बड़ी प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार के वन मंत्रालय ने खेल विश्वविद्यालय के लिए 12.317 हेक्टेयर वन भूमि डायवर्जन को अंतिम स्वीकृति दे दी है। जारी आदेश के अनुसार नैनीताल जिले के हल्द्वानी वन विभाग के गोलापार क्षेत्र में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय परियोजना के लिए वन भूमि हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान की गई है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने इसे उत्तराखंड के खेल भविष्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल अवस्थापना को मजबूत करने और युवाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। खेल मंत्री ने कहा कि यह खेल विश्वविद्यालय खिलाड़ियों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, खेल विज्ञान अनुसंधान और उच्च स्तरीय कोचिंग का प्रमुख केंद्र बनेगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय का एक दल आज से उत्तराखंड में प्राकृतिक रूप से उगाए जाने वाले उत्पादों का अध्ययन करेगा। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की योजना तैयार करना है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर वाणिज्य मंत्रालय की टीम को गढ़वाल क्षेत्र के दौरे के लिए आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि यह दल पहाड़ में उगाए जाने वाले मिलेट्स, हल्दी, जड़ी बूटियों और अन्य प्राकृतिक उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की संभावनाओं पर काम करेगा। इसके तहत किसानों से सीधे संपर्क करने के साथ उत्पादों की जियो टैगिंग और ब्रांडिंग की योजना भी तैयार की जाएगी। अनिल बलूनी ने कहा कि इस पहल से किसानों को लाभ मिलेगा और पहाड़ की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा समर्थित सूक्ष्म उद्यम विकास योजना के तहत कुमाऊनी पिछौड़ा पारंपरिक एवं आधुनिक उन्नत कौशल विषय पर 20 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम के तहत 30 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

0: अवसर पर नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक मुकेश बिलवाल ने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
1: समूह की महिलाओं को हम लोग जो हमारा पहाड़ी परिधान है कुमाऊनी पिछौड़ा, इसमें जो नई टेक्निक है, जो नई डिजाइन है, उसके ऊपर ट्रेनिंग यहाँ पर हम करवा रहे हैं और 20 दिन का कार्यक्रम ये रहेगा। जो हमारा पिछौड़ा एक GI प्रोडक्ट है, तो उस पर हम देख रहे थे कि यहाँ पर पिछौड़ा में अच्छा कार्य नहीं हो रहा, बाहर से सही यहाँ पर चीजें आ रही है, तो हम चाहते हैं कि क्योंकि हमारा GI प्रोडक्ट है तो हम लोग यहीं पर इसको बनाए और नए नए डिजाइन बनाए और उसको आगे बेचे, और हम चाहते हैं जो SHG की महिला है इसको अपनाए और इसमें आगे जाके अपना बिजनेस करें, एंटरप्राइज स्थापित करें।
0: प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को कुमाऊनी पिछौड़ा निर्माण की आधुनिक तकनीकों, नए डिजाइनों, पैकेजिंग और बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करने की जानकारी दी जा रही है। साथ ही बैंकिंग, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण में शामिल महिलाओं का कहना है कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से पारंपरिक परिधान निर्माण सीखने से उन्हें भविष्य में रोजगार और आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
2: मेरा नाम सुमन अधिकारी है। ये जो ट्रेनिंग है ये नाबार्ड के सपोर्ट से हो रही है और इसमें महिलाएं इस काम को सीख करके हमारा उद्देश्य है कि आगे अपना रोजगार शुरू करें और जो है इसको हैंडमेड बनाएं और इससे महिलाएं अपना आर्थिक विकास करेंगी।
3: मेरा नाम है निर्मला जोशी। जैसे हम लोग हमारा ये अपना परिधान है हमारी महिलाओं का, तो हमारा इसमें जैसे हम लोग सीखेंगे, जैसे स्टार्टिंग पहले रहेगा कि कपड़े को कलर करके फिर उसको हम लोग सुखाना, फिर उसमें अलग अलग तरीके से हम लोग डॉट्स मतलब पॉइंट बनाएंगे।
0: उत्तरकाशी जिले की महक चौहान का चयन भारतीय सीनियर महिला रग्बी टीम में हुआ है। महक अब 16 और 17 मई को ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित सेंट्रल एंड साउथ एशिया चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। विकासखंड मोरी के भद्रासु गांव की निवासी महक चौहान इससे पहले भारतीय अंडर 18 और अंडर 20 रग्बी टीम का हिस्सा रह चुकी हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल जीतकर उत्तराखंड का नाम भी रोशन कर चुकी हैं।
4: आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार। के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ BVRC पुरुषोत्तम ने आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR को लेकर सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को SIR की तैयारियों को अंतिम रूप देने और मैपिंग कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फॉर्म 6, 7 और 8 की प्रतिदिन समीक्षा कर उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक बूथ पर तैयार ASD यानी एब्सेंट शिफ्टेड और डेथ सूची को राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ भी साझा किया जाए और आगामी एक सप्ताह के भीतर सभी BL को यह सूची उपलब्ध कराई जाए। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में किसानों की आय बढ़ाने, नई फसलों को प्रोत्साहन देने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर चर्चा की गई। श्री जोशी ने अधिकारियों को प्रदेश में सहजन की खेती की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहजन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी फसल है और इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है। बैठक में 11 और 12 जून को देहरादून में आयोजित होने वाली दालचीनी की खेती, नर्सरी और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और कार्यशाला की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। नई टिहरी नगर पालिका परिषद शहर की सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही अपने बेड़े में 8 नए वाहन शामिल करने जा रही है। इन वाहनों के जरिए कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। साथ ही नगर क्षेत्र में पहली बार गोग्रास सेवा और शव यात्रा वाहन सेवा भी शुरू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
5: नगर पालिका अध्यक्ष टीरी ने बताया कि नए वाहनों के आने से सभी वार्डों में नियमित कूड़ा कलेक्शन और सफाई व्यवस्था को बेहतर किया जा सकेगा। गोग्रास सेवा के तहत एक विशेष वाहन घर घर जाकर गायों के लिए रोटी, सब्जियों के छिलके और अन्य खाद्य सामग्री एकत्र करेगा, जिसे गौशाला में पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाएगा।
6: और अभी 8 वाहन हम ले रहे हैं, उसमें हमारा स्वच्छता के लिए 2-2 ट्रैक्स वाहन है, उसमें हमारा पानी का टैंकर है, उसमें हमारा

0: जो है एक संविधान का भी हमारा प्रावधान है और हम शहर को बेहतर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए हमको संशोधन की अत्यंत जरूरत थी और जिसके लिए हम प्रयासरत हैं।
1: इसके अलावा नगर क्षेत्र में पहली बार शव यात्रा वाहन सेवा शुरू की जाएगी ताकि लोगों को कम खर्च में सुविधा मिल सके। वहीं स्ट्रीट लाइट मरम्मत, पेयजल आपूर्ति और सार्वजनिक शौचालय की सफाई के लिए भी विशेष वाहन लगाए जाएंगे। आकाशवाणी देहरादून के लिए टीरी से जयप्रकाश कुकरेती की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं निशी भाटिया।
2: हरिद्वार में कचरा और ठोस अवशिष्ट के उचित निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए तथा कचरे के उचित निस्तारण के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने गीले और सूखे कचरे के अलग अलग निस्तारण के साथ मेडिकल वेस्ट, प्लास्टिक और अन्य अवशिष्ट के उचित प्रबंधन के निर्देश भी दिए। देहरादून में विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के हरबटपुर के लिए स्वीकृत करीब 48 करोड़ रुपए की पेयजल योजना का विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने निरीक्षण किया। योजना के तहत स्कूल के पास ट्यूबवेल स्थापित किया जा रहा है जिसे क्षेत्रवासियों और स्कूली बच्चों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिल सके। विधायक ने कहा कि हर घर नल हर घर जल योजना के तहत लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को इस पेयजल योजना से बड़ी राहत मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में वन भूमि हस्तांतरण को स्वीकृति दी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय का दल आज से उत्तराखंड के प्राकृतिक उत्पादों का अध्ययन करेगा। स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की योजना पर होगा काम। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने राज्य में एसआईआर की तैयारियों की समीक्षा की और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक कर अन्य राज्य में सहजन की खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यंग समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी देहरादून 100.5 MHz की फ्रीक्वेंसी पर। 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शैल संकेत। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योति उप्रेति सती के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा।

0: ये स्वर था ज्योति उप्रेती सती का, जिनके गाए कुमाऊनी लोकगीत आप सुन रहे थे शैल संकेत के कार्यक्रम में। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी और उसके पश्चात अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
2: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वही 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोग ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्षेत्र वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VP रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस

0: अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा

0: करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली दो दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समेट नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने

उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार देहरादून। नफा संभालवी की इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं पुष्पा पुंडीर करती हूँ आपका स्वागत प्रोग्राम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओं, घड़ी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कितना भी बुरा दौर हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोई चाहे सब कुछ अपना खो दे, लेकिन उम्मीद और साहस ही हैं जो फिर से खड़ा होने का हौसला दे जाते हैं। ऐसे में जमील मजहरी की वो पंक्तियां भी याद आती हैं, जलाने वाले जलाते ही हैं चराग आखिर, जलाने वाले जलाते ही हैं चराग आखिर, ये क्या कहा कि हवा तेज है जमाने की। तो हालात चाहे जैसे भी हों, हिम्मत बनाए रखना और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना ही जीवन के इस रण में एक सच्चे योद्धा की निशानी है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्कार देहरादून।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं नमस्कार देहरादून, आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं, प्रोग्राम में अब आप तक पहुंचा रहे हैं अखबार के पन्नों से कुछ स्थानीय महत्वपूर्ण खबरें। नीट यूजी निरस्त, सीबीआई को पेपर लीक जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ों में ओलावृष्टि, निचले इलाकों में बौछारें, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, आंधी ओलावृष्टि का अलर्ट। 15 मई से एक और विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना। एएनएम पूजा राणा को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला, प्रदेश की पहली और इकलौती एएनएम को सम्मान मिलने से खुशी की लहर। राज्य में सहजन की खेती को बढ़ावा देने की तैयारी, देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्देश। मोथरोवाला में जल्द लोगों के लिए खुलेगा अत्याधुनिक पार्क, नगर आयुक्त ने निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्यों का किया निरीक्षण। और अब हाल मौसम का, आज आमतौर पर मौसम साफ रहेगा, हल्के बादल छाए रहेंगे। राजधानी देहरादून में आज 37 डिग्री अधिकतम तो 21 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहेगा तापमान। और आइए अब जानते हैं कि 13 मई का दिन देश दुनिया के इतिहास में क्यों है खास। साल 1918 में आज ही के दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण किए थे। साल 1998 में आज ही के दिन यानी कि 13 मई के दिन

अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने परमाणु परीक्षण के विरोध में भारत के खिलाफ कड़े प्रतिबंध की घोषणा की थी। जापान ने भारत को दी जाने वाली सहायता पर भी रोक लगाई थी। साल 2000 में आज ही का वो दिन था, यानी कि 13 मई का वो दिन था, जब मिस इंडिया लारा दत्ता ने साइप्रस में संपन्न प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स 2000 का खिताब जीता था। साल 2010 में आज ही के दिन भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता इला भट्ट को 2010 के निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और साल 2017 में दुनिया भर में वॉनाक्रॉय रैनसमवेयर से 100 से अधिक देश प्रभावित हुए थे। तो इतिहास के पन्नों पर यह था 13 मई यानी आज का दिन। और प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

श्रोताओं, आज 13 मई है और आज भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती है। 13 मई साल 1905 को दिल्ली में जन्मे फखरुद्दीन अली अहमद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े और बाद में भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में रहे और कृषि, खाद्य और औद्योगिक विकास जैसे मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाली। 24 अगस्त साल 1974 को उन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उनके कार्यकाल का सबसे चर्चित दौर साल 1975 में लगा आपातकाल रहा। 11 फरवरी साल 1977 को कार्यकाल के दौरान ही उनका निधन हो गया। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के उन राष्ट्रपतियों में शामिल हैं जिन्होंने राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण दौर को करीब से देखा। और प्रोग्राम में फिलहाल वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।

श्रोताओं, आज मशहूर भारतीय लेखक और उपन्यासकार आर के नारायण की पुण्यतिथि है। 10 अक्टूबर साल 1906 को मद्रास में जन्मे आर के नारायण ने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से भारतीय मध्यम वर्गीय जीवन को बेहद सरल, सहज और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं में मालगुड़ी नामक काल्पनिक नगर बार बार दिखाई देता है, जो भारतीय जीवन की छोटी छोटी खुशियों, संघर्षों और मानवीय भावनाओं का जीवंत चित्र बन जाता है। उनका प्रसिद्ध उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स आज भी पाठकों के बीच लोकप्रिय है। आर के नारायण की भाषा सरल थी, लेकिन उनके पात्र और कथानक गहरी संवेदनाएं छोड़ जाते हैं। भारतीय अंग्रेजी साहित्य को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। साल 2001 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी पाठकों को भारतीय जीवन की सादगी और आत्मीयता से जोड़ती हैं। कार्यक्रम में वक्त आज के आखिरी गीत का।

श्रोताओं, तो आज नमस्कार देहरादून में बस इतना ही। आपको हमारे ये कार्यक्रम कैसा लगता है, अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7088-0000731 यानी कि 7088-0000731 पर भेज सकते हैं, जिन्हें कार्यक्रम आपका पत्र मिला में शामिल किया जाए।

जाएगा। और हाँ, मैसेज की शुरुआत में आपका पत्र मिला लिखना ना भूलें। तो इसी के साथ अपनी रेडियो दोस्त पुष्पा पुंडीर को दीजिए अनुमति। नमस्कार देहरादून।

नमस्कार देहरादून, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9 बज रहे हैं, लीजिए अब सुनिए सदाबहार फिल्मी गीत।

जी श्रोताओं, कभी कभी भूलना कमजोरी नहीं, आगे बढ़ने की शुरुआत होती है। जो पीछे छूट गया वही नए रास्तों के लिए जगह बनाता है। आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत पुष्पा पुंटीर के साथ।

0: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
1: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
0: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
0: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
1: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
0: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।

0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से।

जी हाँ, गीला करना, शिकायत करना इंसान की पुरानी फितरत है। जो मिला है अक्सर उससे ज़्यादा की हसरत है। फिर भी रिश्ते इन्हीं बातों से ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि शिकायत में भी कहीं ना कहीं मोहब्बत है, अपनापन है।

0: आपकी चाय।
1: EMI किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी?
0: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
1: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
0: ना भाई ना।
2: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार फिल्म गीत।

कभी कभी ना खामोशी शब्दों से कहीं ज़्यादा बोल जाती है। जो एहसास दिल से जुड़े हों उन्हें आवाज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ बातें आंखें कह देती हैं, कुछ हालात समझा देते हैं, और जो सच में अपने हों वो चुप्पी भी सुन लेते हैं।

श्रोताओं, मुस्कुराहट सिर्फ चेहरे की सजावट नहीं, शरीर का विज्ञान भी है। एक छोटी सी मुस्कान मस्तिष्क में सकारात्मक रसायनों का संचार करती है, तनाव कम होता है, मन हल्का महसूस करता है, और यही कारण है कि मुस्कुराहट सेहत की एक सरल दवा मानी जाती है।

0: तो श्रोताओं, इसी के साथ मुझे यानी पुष्पा पुंडीर को कार्यक्रम सदाबहार फिल्म गीत यहीं संपन्न करने की अनुमति दीजिए। सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद आप ले रहे थे FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से। 9:44 होने को हैं। अब प्रस्तुत है सेहत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे ग्लूकोमा कारण लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर BM विनोद से रमेश चंद्रा की बातचीत।
1: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे डॉक्टर BM विनोद कुमार से ग्लूकोमा कारण लक्षण और उपचार के बारे में। डॉक्टर BM विनोद कुमार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: थैंक यू रमेश जी।
1: डॉक्टर साहब, ग्लूकोमा बीमारी है, इसे साइलेंट थीप ऑफ साइट कहा जाता है। एक ऐसी बीमारी जिसमें पता ही नहीं चलता और आंखों की जो दृष्टि है वो जा चुकी होती है, क्या कहेंगे इसको लेके?
2: ये बात 100% सच है। जब तक पेशेंट को पता चल जाता है कि मेरे को आंख में कम दिख रहा है, जब हमारे पास आते हैं, जब चेक करते हैं, ऑलरेडी 50-60% विजन जा चुका होता है
1: जी।
2: तो इसको पहले पकड़ने में सबसे पहले क्या करना चाहिए हर किसी को कि स्क्रीनिंग या चेकअप करने से ही पता चलता है कि आपको ग्लूकोमा है या नहीं। इस बात पे वेट नहीं करना कि मेरे को विजन कम होगा तभी मैं आई चेक कराऊंगा।
1: डॉक्टर साहब, क्या भारत में नेत्रहीनता की जो वजह है उसमें से ग्लूकोमा प्रमुख है?
2: जैसा नेत्रहीनता या ब्लाइंडनेस

0: जो मोस्ट कॉमन कॉज है कैटरैक्ट है या मोतियाबिंद बोलते हैं या सफेद मोतियाबिंद है,
1: जी
0: वो यूजुअली रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है, मतलब उसको ठीक किया जा सकता है ऑपरेशन करके, लेंस डाल के, कुछ भी करके ठीक किया जा सकता है। बट ग्लोकोमा जो नंबर वन बीमारी है जो इरिवर्सिबल डैमेज कॉज करता है, मतलब उसकी कोई विजन वापस आती नहीं है जो जा चुका होता है,
1: जी
0: तो यही नंबर वन है। ग्लोकोमा इज द नंबर वन कॉज फॉर इरिवर्सिबल विजन लॉस।
1: डॉक्टर साहब, अगर कोई व्यक्ति ग्लूकोमा से ग्रसित है तो कैसे जानेगा वो?
0: तो ग्लोकोमा की इनिशियल स्टेज में, जब ग्लोकोमा स्टार्ट होता है तो कोई लक्षण नहीं होता है। इनिशियल स्टेज में पेशेंट को बार बार चश्मे के नंबर चेंज होता रहता है, या किसी किसी पेशेंट को कभी कभी दर्द भी हो सकता है, शाम के समय पे दर्द हो गया,
1: जी
0: या कभी उल्टी भी हो रहा है, इतना तेज सिर दर्द हो रहा है कि रोज दवाई खाने की जरूरत पड़ रही है।
1: जी
0: और मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% तो हम वैसे ही बोलते हैं कि कोई सिम्टम ही नहीं होता, पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि ग्लोकोमा है।
1: जी
0: तो इसको पकड़ते कैसे है कि अगर किसी को ग्लोकोमा है फैमिली में, तो उनके फर्स्ट और सेकंड जनरेशन सबको खुद ही जाके अपनी आंख आई स्पेशलिस्ट से चेक करा लेना चाहिए। आई स्पेशलिस्ट में एटलीस्ट आप डॉक्टर से बोलना है कि मेरी आई प्रेशर क्या है और मेरी ऑप्टिक नर्व या रोशनी देखने का जो नस है वो नॉर्मल है या नहीं, ये दो टेस्ट कंप्लीट एटलीस्ट होना ही चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, क्या अगर किसी को अचानक सिर दर्द होता है या उल्टी या इंद्रधनुषी जो घेरे हैं वो दिखाई देते हैं, क्या ये भी ग्लूकोमा का एक लक्षण है?
0: हाँ, इसको जैसे ग्लोकोमा में अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें प्राइमरी ग्लोकोमा बोलते हैं हम, सेकेंडरी ग्लोकोमा बोलते हैं।
1: जी
0: प्राइमरी ग्लोकोमा क्या है कि आंख की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ग्लोकोमा डेवलप हो गया है।
1: जी
0: सेकेंडरी ग्लोकोमा क्या है कि कोई और कारण से ग्लोकोमा हो गया। तो
1: जी
0: प्राइमरी ग्लोकोमा में कुछ ऐसे ग्लोकोमा है जिसमें पानी जाने का रास्ता बहुत पतला हो जाता है, आंख के अंदर जैसे टैप जैसे एक नल होती है वहां से पानी आता है, ड्रेन भी हो जाती है। तो ड्रेनेज एरिया अगर बहुत पतला है या बंदी हो चुका है, तब जैसे आपने बताया सारे सिम्टम्स दिखेंगे, जिसमें एकदम से इंद्रधनुष जैसा दिखना, आंख में नजर कम हो जाना, तेज सिर दर्द होना, उल्टी होना, और ऑल ऑफ ए सडन सब कुछ नॉर्मल रहता है, एकदम से सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर हम 10 पेशेंट की ग्लोकोमा देखते हैं तो 3 पेशेंट इस टाइप की कैटेगरी का मिल सकते हैं, 6 से 7 पेशेंट का कोई सिम्टम्स नहीं होते।
1: डॉक्टर साहब, आपने कहा 6 से 7 पेशेंट्स में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो व्यक्ति जानेगा कैसे कि वो ग्लूकोमा से ग्रसित है?
0: रमेश जी, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो खुद ही जाके दिखाना है उनको, या 40 साल के ऊपर जो भी पेशेंट है हर साल उनको आई चेकअप होना ही चाहिए। ये बीमारी स्क्रीनिंग में ही अर्ली स्टेज में पकड़े जा सकता है। अगर विजन कम होने के बाद जाते हैं तो बहुत मुश्किल है ट्रीटमेंट करना, और उसके बाद भी जो ट्रीटमेंट करते हैं सिर्फ विजन जितना बचा है उसको बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात यह कि ग्लोकोमा में बाहर से दिखना कम स्टार्ट हो जाता है, फील्ड ऑफ विजन कम होती है।
1: जी
0: सेंटर की नजर तो दिख रहा होता है पेशेंट को, पेशेंट कैन रीड राइट, सब कुछ लिख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, वो यही बोलता है मेरी नजर तो सामने से ठीक ही है। बट बाहर से दिखना, जैसे फील्ड ऑफ विजन बोलते हैं, धीरे धीरे धीरे धीरे करके सेंटर में आके टनल विजन हो जाती है, तब पेशेंट को लगता है कि मेरे बगल से कोई निकला, मेरे को पता ही नहीं चला, तो तब आते हैं हॉस्पिटल, तब तक को ऑलरेडी टाइम निकल चुका होता।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने फील्ड ऑफ विजन की बात की, हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को बताएं फील्ड ऑफ विजन होता क्या है?
0: रमेश जी, फील्ड ऑफ विजन जैसा हम सामने नजर देखते हैं दोनों आंख को मिलते हुए, जैसे राइट आई है, सीधी आंख से राइट साइड से एक्सट्रीम 90 डिग्री से 100 डिग्री तक हम देख सकते हैं, सामने भी देखा और कोई बगल से आ रहा है तो भी दिख जाती है। लेफ्ट साइड में भी ऐसा है, ऐसा सारे एंगल्स में, सुपीरियर इंफीरियर या ऊपर नीचे दाएं बाएं बोलते हैं हम, उसमें अलग अलग डिग्रीज में पेशेंट को दिखता है, नॉर्मल है वो,
1: जी
0: मतलब नॉर्मल फील्ड ऑफ विजन है, ओवरऑल दिखता है, वाइड फील्ड ऑफ विजन बोलते हैं उसको। तो ग्लोकोमा में सबसे पहले बाहर की नजर चली जाती है, धीरे धीरे धीरे करके वो सेंटर तक आ जाता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किसी की फैमिली हिस्ट्री है या 40 वर्ष से ऊपर का है तो उसे डॉक्टर से जांच करा लेनी चाहिए ग्लोकोमा को लेकर, क्या इसके अलावा भी कुछ कारण हैं जिनसे व्यक्ति ग्लोकोमा से ग्रसित हो जाते हों?
0: जैसा ये प्राइमरी ग्लोकोमा मैंने पहले बताया, ये स्क्रीनिंग में ही पता चलता है, कुछ ऐसे ग्लोकोमा भी है जो कि बीमारी से कनेक्टेड हो, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया,
1: जी
0: किसी को आंख में चोट लगी है, किसी को दवाई चल रही है, स्टीरॉयड्स इंड्यूस्ड ग्लोकोमा बोलते हैं, जो कि पेशेंट आंख में खुजली हो रही है, कोई लोकल शॉप से दवाई लिया और डाल दिया
1: जी
0: और यही चीज बार बार करता रहा, तो स्टीरॉयड हो सकता है वो स्टीरॉयड की दवाई हो
1: जी
0: और उससे उनको ग्लोकोमा हो गया है, या बार बार आंख में कोई दवाई और दवाई चल रही है, तो इन सारे पेशेंट को रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। और दूसरी सिम्टम्स मैंने बताया जिनकी आंख की विजन बार बार स्टेबलाइज हो ही नहीं पा रहा, एक
1: जी
0: ऑप्टिकल शॉप में जा रहे चश्मा बनाया, फिर 3 मंथ्स में फिर से नया चश्मा बन रहा है, फिर
1: जी
0: 3 मंथ्स में नया चश्मा बन रहा है, तो उनको डेफिनेटली कुछ आई में प्रॉब्लम है, वो जाके आई स्पेशलिस्ट से चेक कराए, ना कि ऑप्टिकल शॉप में।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने स्टेरॉयड की बात की थी, स्टेरॉयड और ग्लूकोमा का जो संबंध है, हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को विस्तार से
0: तो
1: बताएं।
0: आंख में स्टीरॉयड ऐसे ड्रॉप है जो हम बोलते हैं रामबाण, कि
1: जी
0: आंख में कुछ भी प्रॉब्लम हो, खुजली हो रहा है, दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो स्टीरॉयड के ड्रॉप डालते ही सबको बहुत आराम मिलता है, सबको लगता है कि बहुत अच्छी दवाई है, बट स्टीरॉयड ऐसी दवाई है जो सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट करने दवाई है।
1: जी
0: तो आंख में जैसे स्टीरॉयड की ड्रॉप डालते हैं साइड इफेक्ट होते हैं, जो साइड इफेक्ट में मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है सफेद मोती।

0: या कैटरेक्ट हो जाती है, या कुछ पेशेंट को आंख की प्रेशर बढ़ जाती है, वो इतना बढ़ता है पेशेंट को पता ही नहीं चलता इनिशियली। जैसे नॉर्मल आई की प्रेशर है 21,
1: जी
0: तो 21 से पहले हुआ 22, 23, ऐसा करके धीरे धीरे बढ़ के 30 के ऊपर चले गए, उनको पता ही नहीं चला। तो स्टीरॉयड दवाई डालने से आंख की प्रेशर बढ़ती है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विजन भी चले जाती है।
1: डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो अपनी मर्जी से ओवर द काउंटर आई ड्रॉप्स खरीद लेते हैं, क्या वो सुरक्षित नहीं है?
0: बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। ओवर द काउंटर सिर्फ एक ही ड्रॉप डाल सकते हो, ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप्स, उसके अलावा कोई ड्रॉप ना डाले। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है गांवों में और हिली एरियाज में भी। जब कोई पेशेंट बोलता है कि मेरे को दिक्कत हो रहा है, तो फार्मासिस्ट यही दवाई देते हैं, स्टीरॉयड की दवाई दे देते हैं, उनको भी अच्छा लगता है और वो बार बार खुद ही लेने लग जाते हैं, और अल्टीमेटली जब हमारे पास आ चुके होते हैं तो ऑलरेडी ग्लोकोमा से डैमेज हुआ होता है।
1: और सब कुछ आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स भी आते हैं, क्या उनमें भी ये समस्या हो सकती है?
0: आयुर्वेदिक आई ड्रॉप से ऐसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट इसमें अडल्ट्रेशन हो सकती है।
1: जी
0: आयुर्वेदिक दवाई में कभी स्टीरॉयड की मिक्सचर कर दिया उन्होंने और हमें भी पता नहीं,
1: जी
0: वो पेशेंट भी डाल रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है और उसमें लिखा भी नहीं है कि क्या क्या कंपोजिशन है उसमें,
1: जी
0: और उनको अच्छा भी लग रहा है क्योंकि इसमें स्टीरॉयड है। तो इवेंचुअली यही होता है कि पेशेंट को जब ट्रेस बैक करते हैं हम लोग कि दवाई का नाम बता भी नहीं पाते, बस मुंह से ही बोलते कि ऐसे कुछ दवाई था जो मैं डालता था पहले।
1: जी
0: तो ये हो सकता है, अगर आप आयुर्वेदिक दवाई डालते तो ऑथेंटिक दवाई डाले जो ऑलरेडी प्रूवन हो, ऐसा जो दवाई है जो अडल्ट्रेटेड है बिल्कुल ना डाले।
1: क्या डॉक्टर साहब, जो कंप्यूटर या लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको भी ग्लोकोमा होने की पॉसिबिलिटी रहती है?
0: नहीं, कंप्यूटर और लैपटॉप यूज करने से आंख में ड्राइनेस होती है और आंख में जल्दी थकावट हो जाती है, एस्थेनोपिक सिम्टम्स बोलते हैं, तो उससे ग्लोकोमा से कोई कनेक्शन नहीं है वैसे, बट ड्राइनेस अगर होती है तो उनको ड्रॉप्स यूज करना चाहिए और लैपटॉप के काम करते हुए थोड़ा बहुत रिलैक्स भी करना चाहिए बीच में।
1: डॉक्टर साहब, अगर कोई व्यक्ति ग्लूकोमा से ग्रसित है या उसे लगता है कि ग्लूकोमा हो, उससे पहले मुझे पता चल जाए,
0: यस,
1: तो किस तरह की जांच उसे करानी
0: सो
1: चाहिए?
0: ग्लोकोमा में तीन तरीके का हम लोग देखेंगे कि स्टेप्स क्या क्या है। अगर किसी को ग्लोकोमा नहीं हुआ है
1: जी
0: बट उनकी फैमिली में किसी को ग्लोकोमा है ऑलरेडी,
1: जी
0: तो वो जानना चाहता है कि मेरे आंख में ग्लोकोमा की रिस्क कितना है, तो सबसे पहले आई स्पेशलिस्ट के पास जाए, वो आई प्रेशर और ऑप्टिक नर्व के एग्जामिन करेंगे। बिल्कुल रिस्क नहीं है अगर ऐसे बोल देते हैं डॉक्टर तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है।
1: जी
0: अगर वो बोलते हैं कि हाँ मेरे को थोड़ा माइल्ड रिस्क जैसा लग रहा है, तो हम लोग पहले करते हैं कि ओसीटी टेस्ट या ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी बोलते हैं, ओसीटी आरएनएफएल, जिसमें ग्लोकोमा होने से काफी पहले ही चेंजेस आ जाते हैं।
1: जी
0: उस पेशेंट को अगर प्रेशर्स अगर नॉर्मल है तो हम ईयरली या 6 मंथली वो सीटी टेस्ट रिपीट करते रहेंगे। अगर वो धीरे धीरे विजन या ऑप्टिक नर्व में चेंजेस आ रहे हैं तो डैमेज होने से पहले ड्रॉप स्टार्ट कर सकते हैं।
1: जी
0: ये टेस्ट ये हो गया। अगर जिनको ग्लोकोमा है तो जैसे मैंने पहले बात की, देखने में क्लिनिकली में पता चल गया कि इनकी प्रेशर भी बढ़ा है और आंख में ग्लोकोमा के चेंजेस है, उनकी फील्ड टेस्ट कराना जरूरी है। फील्ड टेस्ट से डायग्नोसिस कन्फर्म भी हो जाती है और आगे भी हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है, कब रोकनी है, कब बढ़ानी है, वो फील्ड टेस्ट ही बताता है।
1: डॉक्टर बीएम विनोद जी, क्या कुछ ऐसी जांचें भी हैं जो व्यक्ति को करा लेनी चाहिए, जैसे किसी को लगता है कोई आईज की जो समस्या है वो ना हो या ग्लूकोमा ना हो?
0: तो अगर ग्लूकोमा के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले बताया, आई की प्रेशर बिल्कुल पूछे डॉक्टर से कि मेरा प्रेशर कितना है। तो
1: जी
0: ये ऑलरेडी प्रूवन है कि प्रेशर 21 के नीचे होना चाहिए।
1: जी
0: किसी का अगर प्रेशर 21 के ऊपर है तो फिर कान खड़े होना चाहिए, या डॉक्टर ही खुद बता देंगे, या आपको खुद रिक्वेस्ट करना कि मेरा प्रेशर कितना है बता देना, और साथ साथ में ऑप्टिक नर्व के एग्जामिनेशन क्लिनिकली चेक हो जाना चाहिए।
1: जी
0: इसके अलावा तो आप घर में क्या कर सकते हैं कि बाकी क्या सिम्टम्स हो सकते हैं ग्लोकोमा में, ऑलरेडी मतलब ग्लोकोमा हो चुका है उनको, कि एकदम से धूप से घर में अंदर आए तो नॉर्मली हम 5 मिनट्स में एडजस्ट हो जाते हैं अंधेरे में,
1: जी
0: तो ग्लोकोमा के पेशेंट्स को 10 मिनट भी लग सकता है। एकदम से जैसे थिएटर में गए तो उनको बहुत देर तक अंधेरा दिखाई देगा, क्योंकि वो लाइट अडोप्टेशन या डार्क अडोप्टेशन बोलते हैं, वो टाइम लग जाती है उनमें,
1: जी
0: और साइड से पहले विजन कम होना स्टार्ट हो जाता है।
1: जी
0: तो रिसेंटली भी रिसर्च की, इसमें एडवांस रिसर्चेस भी आए हैं, अगर पेशेंट हॉस्पिटल भी नहीं आना चाहते हैं तो इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स भी आए हैं जिसमें मोबाइल पे भी या लैपटॉप पे भी आप खोल के टेस्ट, होम टेस्ट भी कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं MRF या मेलबोर्न रैपिड फील्ड्स, तो घर पे भी चेक किया जा सकता है।
1: डॉक्टर बीएम विनोद जी, उपचार क्या है ग्लोकोमा का?
0: सबसे पहले ग्लोकोमा से बिल्कुल डरना नहीं है, इसमें बहुत ही सिंपल और ऑलरेडी प्रूवन ट्रीटमेंट है, सिर्फ मेडिसिन डालना।
1: जी
0: रोज जैसा आप बीपी शुगर के लिए दवाई खाते हो, ऐसा ग्लोकोमा के लिए रोज ड्रॉप्स डालनी है, कभी बंद नहीं करना है, जैसे डॉक्टर एक्सप्लेन करेंगे। और ये ड्रॉप्स एक स्पेसिफिक टाइम में दिया जाता है, जैसा किसी को बोला कि 8 बजे डालना है तो 8 बजे ही डालना है। और किसी किसी पेशेंट को ड्रॉप डालने के बावजूद भी अगर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, खुद बोलते हैं कि मेरे विजन और कम होते जा रहे हैं, या कभी कभी क्या होता है कि एक आंख जा चुका होता है जब हमारे पास आते हैं तो एक ही आंख बची होती है, तो तब हम एडवाइस करते हैं कि सर्जरी भी करा लेना, ताकि कम से कम प्रेशर जितना कम हो जाए उतना अच्छा आपके लिए।
1: जी डॉक्टर विनोद जी, आपने आई ड्रॉप्स की बात की कि डालने पड़ेंगे, क्या ये जीवन भर डालने पड़ेंगे?
0: यस, एब्सोल्युटली, ये जिंदगी भर चलने वाली ड्रॉप्स है, आज की तारीख में यही प्रूवन ट्रीटमेंट है, जैसा हम देखते हैं 90-95%।

0: ऑफ द पेशेंट्स ड्रॉप से मैनेज हो जाती हैं। कुछ 5% पेशेंट्स हैं जिनको सर्जरी जरूरत पड़ती है, कुछ उसमें एडवांसमेंट भी आया है कि आंख के अंदर स्टेंट भी डाल दिया हमने, ट्यूब भी डाल दिया, बट वो सब लेटर स्टेजेस के लिए। ड्रॉप्स लाइफ लॉन्ग डालना है, उससे कोई अल्टरनेटिव नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ये भी देखने में आता है कि बहुत से पेशेंट अपनी मर्जी से दवा बंद कर देते हैं। आपने आई ड्रॉप्स की बात की, जी उन्हें लगा कि नहीं अब हमें ठीक ठाक दिखने लगा है और उन्होंने आई ड्रॉप बंद कर दिया डालना, क्या हो सकता है?
0: बिल्कुल भी नहीं। ड्रॉप तो हम एक टारगेट प्रेशर सेट करते हैं, अगर किसी का प्रेशर 28 आ रहा है तो हम उनकी डैमेज देखा, ऑलरेडी 60% डैमेज हो चुका है, हमारा टारगेट प्रेशर रहेगा 15 के नीचे रखना पड़ेगा, 14 के नीचे रखना पड़ेगा।
1: जी
0: तो ये सब कैलकुलेशन करके हम ड्रॉप स्टार्ट करते हैं। हम यूजुअली देखते हैं हमने 3 ड्रॉप स्टार्ट किया, पेशेंट सिर्फ 1 ड्रॉप डाल रहे हैं,
1: जी
0: तो फिर हम कंफ्यूज है कि क्यों बीमारी बढ़ते जा रहे हैं, हमने तो ड्रॉप स्टार्ट कर दिया था। फिर बाद में ही पता चलता है कि पेशेंट ड्रॉप नहीं डाल, कॉम्प्लायंस नहीं है, मतलब ग्लोकोमा पेशेंट में यही प्रॉब्लम है, बार बार ड्रॉप नहीं डाल सकते, और दूसरा इनकी विजन भी इतना ऑलरेडी कम हो चुका होता है, कोई ड्रॉप डालने में भी उनको दिक्कत लगती है,
1: जी
0: स्पेशली ओल्ड एज में, 60+ में, 70+ में। तो बिल्कुल ड्रॉप बंद ही नहीं करना है, जब आपको डाउट लग रहा है तुरंत डॉक्टर के पास जाए और अपनी ड्रॉप्स को रीशेड्यूल करें। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे ड्रॉप्स हो गए तो वो डाल नहीं पा रहे, तो कुछ उसमें अल्टरनेटिव्स भी होते हैं कि एक ही ड्रॉप में 4 के कॉम्बिनेशन में दिया जा सकता है, अलग अलग भी दिया जा सकता है, तो उसके लिए सोल्यूशन है, बट ड्रॉप छोड़ना इज नॉट ए सोल्यूशन।
1: क्या कम उम्र के जो बच्चे हैं वो भी ग्लूकोमा से डॉक्टर विनोद जी ग्रसित हो सकते हैं?
0: यस यस डेफिनेटली, बहुत एक रेयर फॉर्म में हम कंजेनेटल ग्लूकोमा या बुफ्थाल्मस बोलते हैं, जो किसी किसी को बाय बर्थ ही ग्लूकोमा हो सकता है,
1: जी
0: किसी किसी को 15 ईयर्स 20 ईयर्स में भी ग्लूकोमा, बट दिस इज बेसिकली जेनेटिक, MYOC करके एक जीन होती है, इसकी वजह से डैमेज जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो उनको ये सारी चीजें जैसे मेडिसिन की जरूरत, सर्जरी की जरूरत सब पड़ती है, थोड़ा अर्ली एज में पड़ती है, बट अगर वो कंप्लायंस रहे, मेडिकेशंस डाले, सब कुछ करे, तो स्टिल कैन सेव द विजन।
1: डॉक्टर बीएम विनोद, अभी आपने कहा कि बाई बर्थ भी किसी को ग्लूकोमा हो सकता है, वहां कैसे जानेंगे कि ये बच्चा है ये ग्लूकोमा से ग्रसित है?
0: रमेश जी, इसमें जैसा ये ग्लोकोमा का आई प्रॉब्लम है, वो यूजुअली जेनेटिक डिसीज के साथ कनेक्टेड होती है, तो अल्ट्रासाउंड में पकड़ी जा सकती है, बट अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते। डे वन पे ही अगर पता चल गया डिलीवरी होते ही, नॉर्मली हमारी आंख की जो ब्लैक पार्ट है तो उसकी एक फिक्स डायमीटर होती है, 8 से 10 डायमीटर, ऐसे बुफ्थाल्मस बोलते हैं कंजेनिटल, उनकी डायमीटर बहुत बड़ा हो जाता है,
1: जी
0: बच्चे की आंख बहुत बड़ी दिखती है, अगर वो उस समय इग्नोर नहीं करना है, आइए डॉक्टर को दिखाएंगे तो इमीडिएटली पता चल जाता है इनको कि बाई बर्थ ग्लोकोमा है।
1: डॉक्टर साहब, लेकिन हमारे यहाँ तो ये चलन ही नहीं है कि जो नवजात शिशु हैं उनकी आंखें हम चेक कराते हों।
0: रमेश जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, जैसा हम हॉस्पिटल में हैं, हम बहुत जगह ये ट्रेंड चेंज कर रहे हैं कि न्यू बॉर्न को एटलीस्ट एक आई एग्जामिनेशन होना ही चाहिए, ये मस्ट है, नॉट जस्ट फॉर ग्लोकोमा, आंख में बहुत सारी ऐसी बीमारी है, पहले से पता चल जाती है तो आगे ट्रीटमेंट करना भी आसान है और आगे उसको काउंसिल करना, मैनेज करना भी आसान है। सारे बच्चे जब डिलीवरी हो जाते हैं 34 वीक्स, मतलब जो बच्चे प्रीटर्म भी हुए हैं उनका तो रेगुलर एग्जामिनेशन करते ही करते हैं हम लोग, बट जो नॉर्मल डिलीवरी बेबीज आइदर बाय सीजेरियन और बाय नॉर्मल डिलीवरी, उनको एटलीस्ट विद इन ए मंथ एक आई एग्जामिनेशन होना ही चाहिए, ये मस्ट है।
1: डॉक्टर विनोद जी, हमारे श्रोताओं से कार्यक्रम के समापन में क्या कहना चाहेंगे ग्लूकोमा को लेकर?
0: ग्लूकोमा को लेके मैं 2 बात कहना चाहता हूँ, एक तो ये है कि ये साइलेंट थीफ ऑफ साइट बोलते हैं हम लोग, कि ये आपको नहीं पता चलेगा, तो आपको खुद 40 ईयर्स जो है जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा है, वो खुद जाए अपनी आई चेक कराए और ये 2 क्वेश्चन जरूर पूछे डॉक्टर से कि मेरा प्रेशर ठीक है डॉक्टर साहब, या मेरी ऑप्टिक नर्व ठीक है, ये 2 बहुत जरूरी है। और जिनको ग्लोकोमा ऑलरेडी हो चुका है उनके लिए मैं कुछ स्पेशल चीजें बताना चाहता हूँ, कि आजकल हम लोग योगा भी कर रहे हैं, योगा में कुछ ऐसे एक्सरसाइज है जो सिर नीचे करके एक्सरसाइज करते हैं वो बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि उससे ग्लोकोमा के डैमेज और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सिर नीचे करने से आंख की प्रेशर और बढ़ जाती है,
1: जी
0: तो उनकी डैमेज और जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, लोग जो ओवर द काउंटर आई ड्रॉप्स ले लेते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे?
0: हाँ बिल्कुल, जिनका आंख अगर लाल है, चुभन है, दर्द हो रहा है, इनिशियली नहीं आना चाहते, सिंपल ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप्स हर जगह मिलता है, गवर्नमेंट भी अप्रूव कर रखा है कि सिंपल ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप डाले, बिल्कुल उसके ऊपर कोई ड्रॉप ना डाले, स्पेशली डेक्सामेथासोन करके आता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेरॉयड है और बहुत कॉमनली दिया जाता है पेशेंट को, बिल्कुल अवॉइड करिए, ड्रॉप बिल्कुल ना डाले, इससे ग्लोकोमा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है।
1: डॉक्टर बीएम विनोद कुमार, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को ग्लूकोमा लक्षण, कारण और उपचार विषय पर आपने विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सेहत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ग्लूकोमा कारण लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर बीएम विनोद से रमेश चंद्रा की बातचीत। श्रोताओं, आपको एक बार पुनः याद दिला दें कि आज रात 8:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देहरादून स्थित दून लाइब्रेरी में आयोजित संगीत संध्या पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5।

0: मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 10 बजने को है, अब आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप योशिता पांडे से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजीसी परीक्षा की निरस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर दर्शन किए। प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में वन भूमि हस्तांतरण को स्वीकृति दी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय का दल आज से उत्तराखंड के प्राकृतिक उत्पादों का अध्ययन करेगा। स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की योजना पर होगा काम। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने राज्य में एसआईआर की तैयारियों की समीक्षा की। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक कर राज्य में सहजन की खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। स्विट्जरलैंड में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रियल इम्पैक्ट रैंकिंग में उत्तरांचल विश्वविद्यालय ने देश के शीर्ष 5 और विश्व के 100 विश्वविद्यालय में 85वां स्थान प्राप्त किया। सीनियर रग्बी टीम में उत्तरकाशी के भद्रासू गांव की महक चौहान का हुआ चयन। 16 व 17 मई को उज्बेकिस्तान में सेंट्रल एंड साउथ एशिया चैंपियनशिप में लेंगी हिस्सा। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज भी बारिश, ओलावृष्टि और तूफान की चेतावनी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। परिवहन विभाग द्वारा ई रिक्शा सत्यापन अभियान जारी। अनियमित पाए गए ई रिक्शाओं को किया गया सीज। नए टिहरी नगर पालिका में शामिल होंगे 8 नए वाहन। शुरू होंगी गोग्रास और शव यात्रा का वाहन सेवाएं। टिहरी में जनगणना का कार्य जारी। इस कार्य में लगे कर्मचारी गांव गांव, घर घर जाकर कर रहे भवन गणना। आप सुन रहे न्यूज हेडलाइंस
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। प्रातः के 10:02 और 20 सेकंड्स हो चुके हैं और अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। कहीं आप ईटिंग डिसऑर्डर्स के शिकार तो नहीं है? जानिए लक्षण और उपचार इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के साथ। ईटिंग डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट यानी ईटिंग डिसऑर्डर एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें व्यक्ति कभी तो जरूरत से भी ज्यादा खाता है, कभी बहुत ही कम खाता है। खाने की यह आदत सेहत को बुरी तरह प्रभावित करती है। सभी लोगों की ईटिंग हैबिट्स अलग अलग होती है। कुछ लोग हेल्थ को लेकर इतना ज्यादा सतर्क होते हैं कि एक एक बाइट की कैलोरी काउंट कर लेते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाने को काफी तरजीह देते हैं। ऐसे लोग हर वक्त कुछ ना कुछ खाना पसंद करते हैं ताकि उनकी सेहत बनी रहे, लेकिन लोगों की इन आदतों का सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इन्हीं आदतों को ईटिंग डिसऑर्डर यानी खान पान से जुड़ी बीमारी कहा जाता है। ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है दोस्तों, जिसमें व्यक्ति कभी तो जरूरत से भी ज्यादा खाता है, तो कभी बहुत ही कम खाता है। इतना कम कि उसका वजन कम हो जाता है और बॉडी मास भी घट जाता है। कई लोग मोटापे से निजात पाने के लिए न सिर्फ खाने से परहेज करते हैं, बल्कि शरीर में मौजूद कैलोरी को घटने के लिए हानिकारक तरीकों का सहारा लेते हैं, जिससे बुरा असर पड़ता है। आप भी अपने खान पान की आदतों से परेशान है तो हो सकता है आप भी ईटिंग डिसऑर्डर के शिकार है। जाने कैसे इस परेशानी से निजात पाई जा सकती है इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के साथ। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। डियर फ्रेंड्स, ईटिंग डिसऑर्डर

से बचने के लिए रोजाना तीनों वक्त का खाना जरूर खाएं। तीनों टाइम पौष्टिक आहार लेने की कोशिश करें। सही समय पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करें। अगर आपको कम खाने की आदत है तो आप एकदम अपनी खाने की आदत में सुधार नहीं कर सकते हैं। आप धीरे धीरे खाने की आदत डालें। अपने खाने में दही, फ्रूट्स, छाछ के अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां और फल शामिल करें। ब्रेकफास्ट न करने का मन हो तो एक रोटी खा लें। धीरे धीरे खाने की मात्रा को सामान्य करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपको सही खान पान की आदत हो जाएगी। कई लोग दोस्तों और अन्य लोगों के प्रेशर में आकर खाना पीना छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी न करें। लोगों की बातों पर ध्यान न दें और एक हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करें। जबरदस्ती खाने की आदत को बदलें। हर वक्त खाने से होने वाले फायदे के बारे में ही नहीं सोचें। जब भूख लगे तब खाएं। सही वक्त पर खाएं। ऐसा करने से न सिर्फ खान पान संबंधी बीमारी दूर हो जाएंगे बल्कि आप हेल्थी भी हो जाएंगे। नियमित तौर पर थोड़ी मात्रा में कुछ हेल्थी खाने की आदत डालें। ईटिंग डिसऑर्डर का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति में खान पान संबंधी बीमारी किस तरह की है और उसका लेवल क्या है। ईटिंग डिसऑर्डर के लिए कई तरह की थेरेपीज मौजूद हैं, जिसमें आर्ट थेरेपी, रिक्रिएशन थेरेपी और म्यूजिक थेरेपी प्रमुख है। इसके अलावा बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव रेमेडिएशन थेरेपी, फैमिली थेरेपी और इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी भी की जा सकती है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये लम्हे प्रोग्राम के सुझाव सामान्य जानकारी के लिए है। इन्हें किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की सलाह लेकर ही फॉलो करें आप। भोजन विकार के अनेक लक्षण हैं, जिसे इस विकार को आसानी से पहचाना जा सकता है और समय रहते ही डॉक्टर की सलाह पर उपचार भी किया जा सकता है। भोजन विकार के सही लक्षण अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस लम्हे प्रोग्राम में। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। अधिक भोजन करने व भोजन न करने के कारण व्यक्ति के शरीर का वजन बहुत अधिक या बहुत कम हो जाता है। इस विकार के कारण व्यक्ति को थकान महसूस करना, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना आदि समस्या होने लगती है। व्यक्ति अपने शरीर के आकार और वजन के बारे में अधिक सोचता है। भोजन विकार या ईटिंग डिसऑर्डर के कई प्रकार है। जब व्यक्ति भोजन को अधिक खाने लगता है और भोजन के प्रति काबू नहीं रहता है, तब व्यक्ति को अधिक भोजन का विकार या ईटिंग डिसऑर्डर होने लगता है। इस विकार से ग्रस्ती व्यक्ति भूख न होने पर भी अधिक भोजन कर लेता है, जिसके बाद उन्हें बेचैनी, जी मचलना जैसे संबंधी परेशानी होने लगती है। बुलिमिया विकार से ग्रस्त व्यक्ति कम समय के अंतराल में अधिक भोजन करने लगता है या बार बार अधिक भोजन करने लगता है। इसके कारण व्यक्ति के जीवन में जोखिम या हानिकारक स्थिति उत्पन्न होने लगती है। इस विकार से ग्रस्त व्यक्ति भोजन कम करता है या वजन कम करने के लिए कई बार भूखा भी रहता है, जिसके कारण मृत्यु होने की संभावना बढ़ने लगती है। इससे ग्रस्त व्यक्ति वजन कम करने के लिए गतिविधि करना, भोजन कम करना आदि का प्रयोग करता है और अपने वजन को लेकर चिंतित रहता है। अनुवंशिक कारक की वजह से व्यक्ति अधिक भोजन करने लगता है, जिससे भोजन विकार से जोखिम की समस्या बढ़ने लगती है। जिस परिवार में इस विकार का पारिवारिक इतिहास हो तो उस परिवार के सदस्य को भोजन विकार होने की संभावना अधिक हो जाती है। जब व्यक्ति को अन्य कारणों की वजह से तनाव होने लगता है, तब वह नियमित रूप से भोजन नहीं करता है, जिससे भोजन विकार होने की संभावना बढ़ने लगती है या व्यक्ति को भोजन विकार या ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का वजन अधिक हो जाता है तो वह वजन कम करने के लिए डाइटिंग करना शुरू कर देता है, जिसमें भोजन कम करता है, किसी समय भूख रहना आदि शामिल है। इसके कारण भी भोजन विकार की संभावना बन सकती है। ईटिंग डिसऑर्डर से बचने के लिए अनेक उपाय हैं जिससे आप विकार से बच जा सकते हैं। ये सब बचाव के उपाय मैं आपको लम्हे प्रोग्राम में बताने जा रहा हूँ, तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। भोजन विकार से बचाव के लिए प्रत्येक दिन में भोजन नियमित रूप से करें व दिन के तीनों समय, सुबह, दोपहर और शाम को स्वस्थ आहार लें व जरूर या भूख से अधिक भोजन करने से बचें। व्यक्ति को अपनी जीवन शैली में पौष्टिक आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि को शामिल करना चाहिए, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है और वजन भी नियंत्रित रहता है। व्यक्ति को जबरदस्ती भोजन करने से बचना चाहिए और समय के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। भोजन

0: विकार के लिए दवाइयों से ज्यादा थेरेपी अधिक मददगार साबित होती है। मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर की सलाह पर भोजन विकार का उपचार संभव है। दोस्तों, व्यक्ति को प्रत्येक दिन स्वस्थ आहार या भोजन करना चाहिए। वह प्रत्येक दिन में भोजन का नियमित समय और शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है और भोजन विकार की समस्या भी दूर होती है। ईटिंग डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह पर दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर भोजन विकार के प्रकारों के अनुसार दवाइयों की सलाह देते हैं। भोजन विकार से ग्रसित व्यक्ति की देखभाल करने के लिए परिवार के सदस्य की मदद ली जाती है। इसे है पारिवारिक थेरेपी या परिवार के आधारित थेरेपी कहते हैं। इसमें फैमिली मेंबर्स को ईटिंग डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्तियों का ध्यान रखने के लिए नियमित रूप से भोजन करने, स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए कहा जाता है। इससे भोजन विकार से ग्रसित व्यक्ति की दिनचर्या में बदलाव आता है और भोजन विकार की समस्याएं दूर होने लगती है। ईटिंग डिसऑर्डर से बचने के लिए व्यक्ति को स्वस्थ आहार लेना, दिन में 3 समय भोजन करना, अधिक भोजन करने से बचना और नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करने से इस विकार से बचा जा सकता है। तनाव या डिप्रेशन के कारण भोजन विकार या ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्योंकि तनाव से ग्रसित व्यक्ति को भूख नहीं लग पाती है या वह तनाव के कारण के भोजन नहीं करता है, जिससे भोजन विकार या ईटिंग डिसऑर्डर की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से आप हमें सुन रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 10:12 हुए हैं और अब पेश है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत समीर का लिखा, जिसकी धुन बनाई है नदीम श्रवण ने। गीत को आवाजें दी हैं अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज ने। फिल्म का नाम आदमी खिलौना है।

अब सुनिए कुमार सानू को फूल और कांटे से, शब्द रचना कोकू कोहली की, गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

विकी मेहता और बहरोज चटर्जी की ये आवाज़ें थी। मजरूह का लिखा गीत था और तुषार का संगीत। फिल्म का नाम था अंदाज अपना अपना। इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्य

0: कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रातः के 10:30 हुए हैं। अब समय प्रादेशिक समाचार का।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय का एक दल आज से उत्तराखंड में प्राकृतिक रूप से उगाए जाने वाले उत्पादों का अध्ययन करेगा। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की योजना तैयार करना है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर वाणिज्य मंत्रालय की टीम को गढ़वाल क्षेत्र के दौरे के लिए आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि यह दल पहाड़ में उगाए जाने वाले मिलेट्स, हल्दी, जड़ी बूटियों और अन्य प्राकृतिक उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की संभावनाओं पर काम करेगा। इसके तहत किसानों से सीधे संपर्क करने के साथ उत्पादों की जियो टैगिंग और ब्रांडिंग की योजना भी तैयार की जाएगी। अनिल बलूनी ने कहा कि इस पहल से किसानों को लाभ मिलेगा और पहाड़ की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक होगी। कैबिनेट में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, कृषि, बागवानी, शहरी विकास सहित अन्य विभागों के प्रस्ताव पर कैबिनेट में मुहर लगने की संभावना है। इसके अलावा कार्मिक विभाग की ओर से कर्मचारियों से संबंधित प्रस्तावों को कैबिनेट में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चारधाम यात्रियों को सुरक्षित और सुविधा संपन्न बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर संचालित STEMI प्रोग्राम तीर्थयात्रियों के लिए जीवनदाता साबित हो रहा है। चमोली जिले में बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर 14 स्थानों पर ECG जांच और थ्रोम्बोलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विभाग के अनुसार अब तक 148 तीर्थयात्रियों की जांच की जा चुकी है। इनमें 5 तीर्थयात्रियों की स्थिति गंभीर पाई गई है, जिनका तत्काल उपचार किया गया। एक मरीज को प्राथमिक उपचार के बाद बद्रीनाथ धाम से हेली एम्बुलेंस के जरिए एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। वहीं 47 असामान्य मामलों में तीर्थयात्रियों को उपचार और निगरानी की जा रही है। देहरादून में विकास नगर विधानसभा क्षेत्र के हरबटपुर के लिए स्वीकृत करीब 48 करोड़ रुपए की पेयजल योजना का विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने निरीक्षण किया। योजना के तहत स्कूल के पास ट्यूबवेल स्थापित किया जा रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों और स्कूली बच्चों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिल सकेगी। विधायक ने कहा कि हर घर नल हर घर जल योजना के तहत लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को इस पेयजल योजना से बड़ी राहत मिलेगी। इस दौरान विधायक ने श्री PM राजकीय इंटर कॉलेज हरबटपुर में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ भी किया। इसके अलावा करीब 57 लाख रुपए की लागत से बनने वाले बास्केटबॉल कोर्ट और खेल मैदान निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया गया। विधायक ने कहा कि शिक्षा के साथ खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना भी जरूरी है, ताकि छात्र छात्राओं को बेहतर अवसर मिल सके। कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक सतपाल महाराज की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पौड़ी में चबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं एवं जनहित कार्यों की समीक्षा की गई। कैबिनेट मंत्री ने कहा, आमजन की समस्या का समाधान करना हमारी प्राथमिकता है। वहीं आमजन से संवाद एवं व्यवहार के दौरान अधिकारियों का व्यवहार शालीन एवं सहयोगात्मक होना चाहिए। यदि किसी कारणवश फोन कॉल रिसीव नहीं हो पाता तो संबंधित व्यक्ति को पुनः कॉल कर उनकी समस्या सुनना, उसका समाधान सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सड़क, पेयजल, शिक्षा जैसी आवश्यक जिम्मेदारियों के प्रति अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना रहा। पर्वतीय जिलों में मौसम बिगड़ने का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। पर्वतीय जिलों में आज बारिश, ओलावृष्टि और तेज तूफान की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में तेज दौर की बारिश के साथ बिजली चमकने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने का अनुमान है। लंबे समय से बाघ की दहशत से परेशान ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। दरअसल कॉर्बेट परिक्षेत्र से सटे अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकासखंड के तड़म गांव में दहशत का कारण बने एक नर बाघ को वन विभाग और कॉर्बेट प्रशासन के संयुक्त दल ने ट्रैंकुलाइज कर पकड़ लिया है। हरिद्वार जिले के विभिन्न थानों, कोतवाली व यूनिटों में तैनात 26 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए मैन ऑफ द मंथ चुना गया। SSP नवनीत सिंह ने चयनित पुलिसकर्मियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। SSP ने पुलिसकर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि बेहतर कार्य करने वालों के सम्मान से पूरी फोर्स

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इको सिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: लोक संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं मंजू सुंदरियाल के गाए गढ़वाली लोकगीत।

0: मंजू सुंदरियाल के गाए गढ़वाली लोकगीत अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत के कार्यक्रम में FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी देहरादून है।
1: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
2: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
1: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
2: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव OTT और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
1: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, FM ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
3: जो जस
2: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
1: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
4: FM 100.5 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी देहरादून। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 11:20 हुए हैं और अब समय है आपको

श्रोताओ, फिल्म जूली से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था राजेश रोशन ने। और इस गीत को सुनने की हमारे पास फरमाइश भेजी थी पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद ने। इसी के साथ बोड़ा गाछी पश्चिमी बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत इस गीत को सुनना चाहते थे। परिमहल कासगंज से आबाद खान, नावील खान, आरफा खान, इल्मा खान, मास्टर जाहिद अली ने इस गीत को सुनने की इच्छा जाहिर की थी। इसी के साथ महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल नाचानी, प्रगति नाचानी, बाबू भाई और भारती देवी इस गीत को सुनना चाहते थे। श्रोताओं, अगला गीत अब हमारे जो श्रोताओं ने फरमाइश की है वो है फिल्म आंखें से, जिसे आवाज़ दी है कुमार सानू और साधना सरगम ने, बोल हैं इंदिवर के और संगीत बप्पी लहरी का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं जमशेदपुर से निशा कुमारी, रेशमा कुमारी और देवन। इसी के साथ टैगोर गार्डन दिल्ली से इंद्रजीत कौर, रविंद्र सिंह छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया ने इस गीत की फरमाइश भेजी है। और ग्राम करेली बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी इस गीत को सुनना चाहते हैं। तो प्रस्तुत है फिल्म आंखें से ये गीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, अब एक जरूरी सूचना सुनिए। कार्यक्रम संबंधी ये सूचना है, महिला जगत कार्यक्रम में बहनें अपने मनपसंद के फिल्मी गीत सुन सकती हैं फोन इन कार्यक्रम रेडियो सखी में, जिसके लिए बहनें फोन कर सकती हैं आज दोपहर 1:30 से 2 के बीच। फोन नंबर है 7088001382। फोन नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, फोन नंबर है 7088001382। और समय याद रखिएगा श्रोताओं, आज दोपहर

1:30 से 2 बजे तक आप हमें फोन कर सकते हैं, और फोन इन कार्यक्रम रेडियो सखी का प्रसारण किया जाएगा महिला जगत कार्यक्रम में कल यानी गुरुवार को दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच। सूचना समाप्त हुई। प्रस्तुत है अब अगला गीत फिल्म जब जब फूल खिले से मोहम्मद रफी और नंदा के स्वर में, और इस गीत को सुनना चाहते हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और नमिता हुजा। इसी के साथ गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना इसी गीत को सुनना चाहते हैं। और श्रोताओं, इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह ने। तो प्रस्तुत है जब जब फूल खिले है से ये गीत मोहम्मद रफी और नंदा के स्वर में।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आप सुनते हैं एक सूचना, कार्यक्रम संबंधी ये सूचना सुनिए श्रोताओं। महिला जगत कार्यक्रम में बहनें अपने पसंद के फिल्मी गीत सुन सकती हैं फोन इन कार्यक्रम रेडियो सखी में, जिसके लिए बहनें फोन कर सकती हैं आज दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच। फोन नंबर है 7088001382। श्रोताओं, फोन नंबर एक बार पुनः सुन लें, 7088001382। समय याद रखिएगा, आज दोपहर 1:30 से 2 बजे तक फोन इन कार्यक्रम रेडियो सखी का प्रसारण किया जाएगा। श्रोताओं, महिला जगत कार्यक्रम में कल यानी गुरुवार को दोपहर 12:30 से दोपहर 1 बजे के बीच सूचना समाप्त हुई। अब सुनिए श्रोताओं, फिल्म मैंने प्यार किया से लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत, और इस गीत की फरमाइश हमारे पास भेजी है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से नानाजी लाम से, मीना लाम से, तेजस जय लाम से और हर्षिता लाम से ने।

मुंबई से अनु बड़जातिया, शमशुल खान, अनुराज बेनारा इस गीत को सुनना चाहते हैं। और श्रोताओं, अस्तुपुरा ज़िला मऊ से मजहर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, और बहादुरगंज गाज़ीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद इस गीत को सुनना चाहते हैं। इसी के साथ श्रोताओं, बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूसुफ खान, सोफिया खान भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। और इसी के साथ दौलतबाग मुरादाबाद से अंसार हुसैन और समीर मलिक ने इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है। इसके साथ ही श्रोताओ, इस गीत को सुनना चाहते हैं फर्रुखाबाद साहबगंज चौराहा, यूपी से सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सरिता चौरसिया, सुजाता चौरसिया, सुबोध सोलोनी चौरसिया, संजू लल्ला चौरसिया, पूजा पिंकी चौरसिया, बाबू शिवा चौरसिया, शिवानी चौरसिया और योगेंद्र नायक कासगंजी। तो अब आप सभी का फरमाइशी ये गीत फिल्म मैंने प्यार किया से लता मंगेशकर के स्वर में है।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए यह धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

श्रोताओ, रिफ्यूजी फिल्म के इस गीत को सुनना चाहते थे सीएम रोड निजामाबाद से शेख अब्दुल अली, निगार परवीन, अफसा अनम, समूरा नमीन, मुनझा महवीन, आईझा मनाल, मोहम्मद मिजबुल्लाह, मोहम्मद उज्जैफा अजलान और खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोट और तमन्ना कांगड़ा ने इस गीत की फरमाइश भेजी थी। साथ ही झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया भी इस गीत को सुनना चाहते थे। अब अगला गीत लिया है फिल्म दो रास्ते से मोहम्मद रफ़ी के स्वर में और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल से संजय कुमार नेगी, अंजना नेगी, डॉक्टर आकांक्षा नेगी और सुधांशु नेगी ने। इसी के साथ रामपुर उत्तर प्रदेश से रफत साहब, सईद मंसूरी, राशिद मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मस्कीन नगमा नाज मंसूरी इस गीत को सुनना चाहते हैं। और साथ ही जसपुर उत्तराखंड से भी हमारे पास फरमाइश आई है जो लिख भेजी है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर ने। तो सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत फिल्म दो रास्ते से।

श्रोताओं, अब कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। महिला जगत कार्यक्रम में बहनें अपने पसंद के फिल्मी गीत सुन सकती हैं फोन इन कार्यक्रम रेडियो सखी में, जिसके लिए बहनें फोन कर सकती हैं आज दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच। और हमें फोन करने के लिए आप नंबर लिख लीजिए 7088001382। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 7088001382। और समय याद रखिएगा आज दोपहर 1:30 से दोपहर के 2 बजे तक। फोन इन कार्यक्रम रेडियो सखी का प्रसारण श्रोताओं किया जाएगा महिला जगत कार्यक्रम में कल यानी गुरुवार को दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच। और अब चलते हैं श्रोताओं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। और ये गीत हमने लिया है फिल्म दिलवाले से, आवाज़ है कुमार सानू, अलका याग्निक और अजय देवगन की। और इस अंतिम गीत की फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने की है उनका नाम इस गीत के बाद।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के इस अंतिम गीत को सुनना चाहते थे रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। इसी के साथ जेल रोड नजीबाबाद से राधिका जाटव, प्रभा रानी जटोलिया, चंद्रनगर दिल्ली से मनमोहन चुग, मीठी चुग, खट्टी चुग, इन्होंने हमें इस गीत की फरमाइश लिख भेजी थी। डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, राज अंसारी, फातमा नाज अंसारी और रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू ने इस गीत की फरमाइश भेजी थी। शामली यूपी से सुनना चाहते थे राशिद मंसूरी, आयान मंसूरी, जीशान मंसूरी। इसी के साथ जय विहार नजफगढ़ से फारूक शाहरुख, शहनाज शबनम ने इस गीत की फरमाइश भेजी थी। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक, समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण और जयश्री। इसी के साथ जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानूगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रवालिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश इस गीत को सुनना चाहते थे। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा ने इस गीत की फरमाइश भेजी थी। साथ ही तेलंगाना स्टेट करीमनगर से लक्ष्मी नारायणा, विजया, अभिनय और साई किरण ने इस गीत को सुनना चाहा था। साथ ही संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जिया उल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे इस गीत को सुनना चाहते थे। इसके साथ ही श्रोताओं, रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर ने इस गीत की फरमाइश हमें भेजी थी। इसी के साथ श्रोताओं, व्हाट्सएप फरमाइश का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:59 और 50 सेकंड हुए हैं। व्हाट्सएप फरमाइश के बाद श्रोताओं, अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल का वित्री कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

वीपी रामलिंगम अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाल ही यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट UG परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह SOG द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत SOG ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। IPL क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 35 महिलाएं ले रही प्रशिक्षण। टिहरी में जनगणना का कार्य जारी। इस कार्य में लगे कर्मचारी घर घर जाकर कर रहे हैं भवन गणना। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू होने के कारण हरिद्वार में यात्रियों की आवाजाही घटी। बावजूद इसके चारधाम यात्रा में पहुंच रहे तीर्थयात्रियों ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। सीनियर रग्बी टीम में उत्तरकाशी के भद्रासू गांव की महक चौहान का हुआ चयन। 16 व 17 मई को उज्बेकिस्तान में सेंट्रल एंड साउथ एशिया चैंपियनशिप में लेंगी हिस्सा। नई टिहरी नगर पालिका में शामिल होंगे 8 नए वाहन। शुरू होंगी गोग्रास और शव यात्रा वाहन सेवाएं। परिवहन विभाग की खास पहल पर लंबी दूरी तय कर चारधाम यात्रा पर आने वाले वाहन चालकों को हो रही खास चेकिंग। दुर्घटना के मद्देनजर किया जा रहा चलान। जौनसार बावर उत्थान समिति के माध्यम से सांस्कृतिक एवं खेल कबड्डी प्रतियोगिता व वॉलीबॉल खेल का आयोजन। आज भी कई जिलों में बारिश ओलावृष्टि तूफान की चेतावनी। उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग चमोली बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
1: FM 100.5 MHz पर। यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:12 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत और अर्चना तलगांवकर प्रस्तुत कर रही हैं गजल।

FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और सुगम संगीत में अर्चना तलगांवकर पेश कर रही हैं गजल, और उनका साथ दे रहे हैं तबले पर अंकित कश्यप, हारमोनियम पर शुभम सुहांते।

FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जाननों का वास्ता।

कार्यक्रम जननों का वास्ता सुनन वाल सब है माता बहनियों दीदी भूलियों को गीता भंडारी की तरफ बटी नमस्कार प्रणाम पैलाग सेवा सौली स्वागत छो आप सब है बहनियों को अपन खास कार्यक्रम जननों को वास्ता माँ बहनियों हमार भारतीय संस्कृति माँ बोली गई छू यत्र

कार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जयक मतलब छू जा जननी सम्मान हूँ वाही देवताओं को वास हूँ। वैण्यो श्रेणी केवल त्याग की मूर्त नहा बल्कि अपन अदम्य साहस और आत्मविश्वासक दूसर नाम ले छू। श्रेणिया माँ पत्नी और चिलिक रूप में ममता का अनमोल संगम छू और पारिवारक दगड़ श्रेणिया आज शिक्षा खेल रक्षा अंतरिक्ष साहित्य राजनीति जानी कतु के क्षेत्रों में अपन योग्यता साबित कर रहे। यो हम सब चेलियां और सैनिया के लिए जी बहुत गर्व बात छू। बैणियों एक घर को घर सिर्फ एक सैनी ही बनू वरना वो घर केवल घर न होवे एक मकान है रू। तो भाई मेरे को तो यह छू कि जब एक घर एक रीढ़क जस सैनी हूँ तो वो कह अपन बहुत ज़्यादा ध्यान धरण चे। जैसे हमारे शरीरक जो रीढ़क हद्दिक महत्व हूँ ना उसी हमारे परिवार माँ सैनी के लिए महत्व हूँ। श्रेणी परिवार एक आधार हूँ। तो बैणियों मैं कुण चाहूँ कि आप सब सर घर कामक दगड़ ही अपूर्ण ध्यान ले जरूर धरिया। अपूर्ण खान पीण और खुराक ले महत्व दियोण बहुत ज़्यादा जरूरी छू। तबे सर बे घरक कामक दगड़ ही हम अपूँ को ले भल धर सकूल और काम को भल ही कर सकूल। वैणियों तो छी बात हम कार्यक्रम में ये विषय पर अखिले करूँ लेकिन पहली बात करूँ अब कार्यक्रम का बारा में। बैणियों सदनी की चारों कार्यक्रम में गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी लोकगीत छन और दगड़ में छन कुछ रेवार जो कि बहुत जरूरी होनी और छू आजक दिनक खास एक गढ़वाली वार्ता जकू प्रस्तुत करेली उत्तराखंड एक प्रमुख महिला साहित्यकार डॉक्टर ममता कुंवर। लेकिन थोड़ देर में वैणियों सबसे पहले अब कार्यक्रम की शुरुआत करनु गोपाल बाबू गोस्वामी को गायो यो सुंदर सा कुमाऊनी गीतक दगड़ गीतक बोल छिन भुर भुरु उजाऊ है गो।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: गीत और रैबारों का बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी माता बहनियों को कार्यक्रम जननों का वास्तमा। बहनियों, हमर प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश छू और यहाँ जीवन शैली बहुत ही आसान नाती, खासकर हम सैणियाँ और चेलियाँ के लीजिए। मानो न कि अब बखत में थोड़ बहुत बदलाव होएगो, जहाँ हमार घरक जो पुरुष चिन्हू रोजगारक तलाश में घर बटी भ्यार जानी और घरक सारे काम काज हमारे घर एक सैणी हमार ईजा संभाले और वो अपन घर काम को भली के तो करन छू या का दगड़ वो अपन जो शौक छिन जो अपन हुनर छू वह एक लू ले मनुई। तो बहनियों, उत्तराखंड एक श्रेणी चाहे शिक्षा हो, राजनीति हो, या रक्षा हो, या साहित्य हो, कै ले कम नाती। तो बहनियों, आओ सुनन यह के बारह में ही एक सुंदर सी गढ़वाली वार्ता जो छू जको प्रस्तुत करनी उत्तराखंड की प्रमुख महिला साहित्यकार डॉक्टर ममता कुंवर।
3: सभी सुनदारू तय सादर सेवा सौंदी। उत्तराखंड की धरती तय विधाता को खास आशीर्वाद दे नुज। यह धरती केवल रौत्याली स्वाणी और हरी भरी नीच, बल्कि यह भूमि वीर भूमि च, देवतों की भूमि च और हिमालय की भूमि च। उत्तराखंड का निर्माण मा यखे मातृ शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रहे। यह इन बोली सकदा कि यखे माँ बहनों की एक मुठ ताकत और बुलंद आवाजे बदौलत यु राज्य हमन पाई। जिंदगी को कोई भी काम हो, इन कोई भी क्षेत्र नीचे जेमा यखे मातृ शक्ति को योगदान न हो, माँ बहनों अपनी कलम से उत्तराखंड को साहित्य संस्कृति और लोक चेतना थे अपनी समृद्ध करी। हिमालय की गोद में बसिया ये प्रदेश की मातृशक्ति अपनी संवेदनशील सोच और सृजनशील हाथियों से हिंदी और आंचलिक साहित्य की फसल ते खूब पन पाई। उत्तराखंड की महिला साहित्यकारों अपनी लेखनी से पहाड़ को जीवन यखा रीति रिवाज, पहाड़ को दुख सुख, माँ बहनों को संघर्ष, प्रकृति मनख्यात और सामाजिक मुद्दों को बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्त भी करी, विश्लेषण भी करी। उन तगर देखी जो तो मोटा मोटा तौर पर अब तक उत्तराखंड की लगभग 65 का आसपास महिला हिंदी साहित्यकार और 30 से ज्यादा महिला आंचलिक साहित्यकारों की जानकारी विभिन्न स्रोतों बटी हम तक मिल दीच। सबसे अच्छी बात यह कि पहाड़ के नारियुन आजा जमाना बटीन ना बल्कि देश की आजादी से पहले बिटिन साहित्य सृजन शुरू करिल छू। सभ्यों का बारमा अगर हम चर्चा करने लग जाला तो टाइम बहुत ज्यादा वे जालू। यहाँ का वास्ता आज हम कुछ प्रमुख महिला साहित्यकारों का बारे में परिचय प्राप्त करेला। उत्तराखंड के साहित्य साधना में सबसे महत्वपूर्ण नौच कवियत्री तारा पांडे जी। 1915 में अल्मोड़ा में जन्मी तारा पांडे जी बहुत छोटी उम्र में ही साहित्य सृजन शुरू करिल छू। उनको पहले जो काव्य संग्रह सीकर 1914 में प्रकाशित हुए, ये का बाद शुक पिक आभा

गोधूली, वेणुकी, पावस, सांझ, पुष्पहास सहित लगभग 23 काव्य संग्रहों का प्रकाशित वेन। उनको उत्सर्ग कहानी संग्रह भी खूब चर्चा में रहे। उनकी कविता माँ प्रकृति, अध्यात्म, प्रेरणा और करुणा को अद्भुत संगम दिखेंदू। ये क्रम माँ अगलो महत्वपूर्ण नौच गौरापंत शिवानी जी को। 17 अक्टूबर 1923 में जन्मे शिवानी जी मूल रूप से कुमाऊं का छा। उन हिंदी साहित्य ते कई अमर रचना लीनी। उनकी रचना माँ भारतीय संस्कृति, नारी पराणी की वेदना और पारिवारिक संबंधों की गरिमा सीधा सरल ढंग से दिखे। कृष्णकली, कालिंदी, कैजा, विस्कन्या, 14 फेरे, रति विलाप, लाल हवेली जन रचना आज भी पाठकों का मन मा बसीच। उन कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, धारावाहिक और आत्मकथा जन कई विधाओं में अपर लेखन कार्य करी। उनकी भाषा सरल, आत्मीय और भावनात्मक गहराई से भरपूर छे। उत्तराखंड की साहित्यिक परंपरा में मार्गरेट भट्टी को भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण छो। 1930 में बेरीनाग पिथौरागढ़ में जन्मी मार्गरेट भट्टी अंग्रेजी भाषा की बहुत अच्छी जानकार छा। उन बाल साहित्य और प्रेरणादायक साहित्य का क्षेत्र में खूब काम करी। मेरा दुश्मन मेरा दोस्त, भीम द बोर्ड के साहसी कारनामे, छोटी बुढ़ी औरत, इन उन 1.5 दर्जन से भी अधिक किताब प्रकाशित करी। यो अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में लगातार लेखन काम भी कर दछा। अगलो नौच डॉली डबराल जी को। उनको साहित्य भी उत्तराखंड की साहित्यिक चेतना को महत्वपूर्ण हिस्सा छो। 5 अक्टूबर 1944 में जन्मे डॉली डबराल जी को मैत कश्मीरी परिवार से जुड़ियों और उनको ससुराल चे दुगड्डा पौड़ी मा। उन कविता, कहानी और उपन्यास का माध्यम से साहित्य ते खूब समृद्ध करी। अनछुए एहसास, तुम्हारे नाम, अफ्रीका हाउस, चूरमा जन रचना उनकी संवेदनशील लेखनी को परिचय देंदी। अब बात करेला प्रसिद्ध लेखिका और पत्रकार मृणाल पांडे जी की, जो गौरापंत शिवानी जी की बेटी छिन। 1946 में अल्मोड़ा में जन्मी मृणाल पांडे ने हिंदी साहित्य और पत्रकारिता द्वि क्षेत्र में अलग अलग पहचान बनाई। उन प्रसार भारती का अध्यक्ष का रूप में भी काम करी। उनकी 30 से ज्यादा पुस्तक प्रकाशित छिन। परिधि पर स्त्री, अपनी गवाही, एक स्त्री का विदा गीत जन रचना, नारी चेतना और सामाजिक सरोकारों की मजबूत अभिव्यक्ति जन। ये क्रम में डॉक्टर सुमिति रावत को नाम भी उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकारों में लिए जा। 1946 में पौड़ी जिला में जन्मी डॉक्टर सुनीति रावतन हिमांगी त्रैमासिक पत्रिका को संपादन करी। उन कहानी, कविता और आलोचना का क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देनी। रंगशाला, अनूठे अनुबंध, तीर के तरकश, सड़क किनारे, प्रेम रंग की कहानी, सीमा रेखा सहित लगभग 50 से ज्यादा पुस्तक प्रकाशित करी। महिला साहित्यकारों की सूची में डॉक्टर सविता मोहन जी को नौ भी बड़ो आदर से लिए जांदू। 1953 में पौड़ी जिला का ढोंड गांव में जन्मी डॉक्टर सविता मोहन जी की शिक्षा और साहित्य द्वि क्षेत्रों में खूब पकड़ च और उन खूब नौ कमाई। उन उत्तराखंड भाषा संस्थान का निदेशक का रूप में भी अपनी सेवा देनी। उनकी रचनाओं में समकालीन कहानी, कथ्य एवं शिल्प, हिंदी काव्य में मिथक का समसामयिक संदर्भ, उत्तराखंड समग्र अध्ययन, भारतीय संस्कृति विमर्श, औरतों क्यों बोलती हो इतना सहित कई अन्य पुस्तकों को उन अनुवाद करी। पत्र पत्रिकाओं में कहानी, कविता, स्तंभ लेखन तो आज भी जारी है। अब बात करदा सुधा जुगराण जी की। उन भी आधुनिक हिंदी कथा साहित्य में अपनी विशेष पहचान बनाई। फरवरी 1960 में देहरादून में जन्मी सुधा जुगराणन 21 बरस की उम्र में सरिता पत्रिका में कहानी प्रकाशित कर साहित्यिक यात्रा शुरू करी। गली आगे मुड़ती है, मुखरित मौन, एक मन ऐसा भी, मेरे हिस्से का आकाश, थोड़ा दूर थोड़ा पास, इन कहानियों संग्रह और मनस्वी उपन्यास दगड़ियों की जो रचनात्मक प्रतिभा च वो काबिले तारीफ च। कुसुम भट्ट को साहित्य भी संवेदनशील और सामाजिक चेतना से जुड़ियो रहो। सितंबर 1960 में जन्मी कुसुम भट्ट जी को पैतृक गांव रुठियाल पौड़ी गढ़वाल मच। उनकी रचना में लौट आओ शिशिर, जेम्स वॉट के केतली, खिलता है बुरास, पिघल रही है बर्फ, यूं की कहानी संग्रह छिन और बचा लो उसकी आंख का पानी, एक उनकी कविता संग्रह भी प्रमुख रूप में पढ़ी जाती। अगली साहित्यकार डॉक्टर प्रभा पंतन लोक साहित्य और संस्कृति को संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देनी। 1962 में अल्मोड़ा जिला में जन्मी डॉक्टर प्रभा पंतन विभिन्न पत्र पत्रिका में लगातार लेखन कार्य करी। उनकी रचना में कुमाऊनी लोक कथाएं, परिहंसली, हम और हमारा कुमाऊं, कर्मयोगी सरला बहन, बच्चे मन के सच्चे, उत्तराखंड की लोक कथाएं जन पुस्तक विशेष रूप से उल्लेखनीय छिन। अर्चना पेन्यूली, यूं देश विदेश में हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति को खूब प्रचार प्रसार करी। 17 मई 1963 में चमोली जिला को देवल गांव वखों को जन्म हुए और उन कहानी, उपन्यास और लेखन की कई विधा में कार्य करी। परिवर्तन,

0: वेयर डू आई बिलोंग, पॉल की तीर्थ यात्रा, केराली मसाज पार्लर, अलकनंदा सूट, उपन्यासिनियों का और घर में आखिरी दिन एक कहानी संग्रह युवाओं को खूब प्रसिद्ध हुए। डॉक्टर अर्चना बहुगुणा यूनस साहित्य के साथ साथ माँ पर्यावरण अनुसंधान का क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण कार्य करी। 1965 में जन्मी डॉक्टर अर्चना बहुगुणन वन विभाग उत्तराखंड में नोडल अधिकारी रहते लगभग 28 बरस तक अनुसंधान और शोध कार्य करी। उनका 82 से ज्यादा शोध पत्र और 8 से ज्यादा पुस्तक प्रकाशित वेगिनी। नई पीढ़ी का साहित्यकारों में रामेश्वरी नादान को नाम भी उल्लेखनीय है। 1980 में जन्मी डॉक्टर रामेश्वरी नादान को पैतृक गांव पौड़ी जिला में है। उन कविता, कहानी और बाल साहित्य का क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करी। खामोश होंठ बोलती कलम, फिर एक बार, कुछ कल्पना और कुछ हकीकत, इनबॉक्स, दूसरी पारी, वक्त कब ठहरा है, जन काव्य संग्रह छिन्न और कहानी संग्रह और बच्चों का खातिर भी यून बहुत पुस्तक लिखी। डॉक्टर राजकुमारी चौहान च अगलु नौ यून भी साहित्य और शोध को क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिनी। नवंबर 1978 में रुद्रप्रयाग जिला का परकंडी गांव में जन्मी डॉक्टर राजकुमारी चौहानन जौनसार भावर पर्यटन एवं तीर्थाटन, जौनसार भावर की दिवंगत विभूतियां और उत्तराखंड महिला भूमिका का इतिहास जन महत्वपूर्ण पुस्तक लिखीं। आकाशवाणी और दूरदर्शन में उनकी वार्ता, कहानी और साक्षात्कार प्रसारित होना रहा। उत्तराखंड की महिला साहित्यकारों न केवल हिंदी साहित्य बल्कि आंचलिक साहित्य को भी समृद्ध करने को काम करी। गढ़वाली और कुमाऊनी को संरक्षण और संवर्धन में मातृशक्ति को योगदान अविस्मरणीय है। गढ़वाली साहित्य के प्रमुख रचनाकार विद्यापति डोभाल जी को जन्म 1901 में टिहरी गढ़वाल में हुए। उनकी रचना माँ अमृत की बूंदे, पगली, गढ़वाली गीतिका, माँ ममता और मंगला देवी को श्रद्धांजलि प्रमुख छन। वीणा पाणी जोशी जी ये आंचलिक साहित्य को बहुत बड़ा नौच। कुमाऊं अंचल में 10 फरवरी 1937 में जन्मी वीणा पाणी जोशीन हिंदी और गढ़वाली द्वी भाषाओं में महत्वपूर्ण लेखन कार्य करी। पिठे पेरेलो बुरासा, दुर्वा से अक्षय वर्तक, श्याम भंवर कुछ बोल गया जन आंचलिक उपन्यासन और काव्य संग्रह से उन लोक जीवन और लोक संस्कृति तक खूब शब्द दिनी। गढ़वाली भाषा और साहित्य को संरक्षण में बीना बेंजवाल जी को योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1967 में रुद्रप्रयाग जिला का देवशाल गांव में जन्मी बीना बेंजवालन मुट्ठी भर बर्फ हिंदी काव्य संग्रह जीयों को और कमेला आखर गढ़वाली काव्य संग्रह प्रकाशित करी। उन गढ़वाली हिंदी शब्दकोश, गढ़वाली हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का खातिर गढ़वाली भाषा पाठ्यक्रम संपादन को महत्वपूर्ण कार्य करी। उत्तराखंड की महिला साहित्यकारों पर एक पुस्तक भी अभी कुछ दिन पहले प्रकाशित करी। आंचलिक साहित्य को समृद्ध करण में शांति अमोली बिंजुला जी को योगदान भी उल्लेखनीय है। 1973 में लाल ढांग में जन्मी शांति अमोली बिंजुला गढ़वाली भाषा और संस्कृति से जुड़िया छिन। उनकी कविता और रचना आकाशवाणी और देहरादून दूरदर्शन से प्रसारित होनी रहती। उन गढ़वाली लोक संस्कृति, लोक परंपरा और धार्मिक भावनाओं को अपनी लेखनी में सुंदर ढंग से प्रस्तुत करी। भक्ति अंजवाल और गढ़वाली मांगल उनकी प्रमुख रचना छिन। वो आकाशवाणी देहरादून में गढ़वाली उद्घोषिका का रूप में भी कार्यरत छिन। उनको योगदान गढ़वाली भाषा को संरक्षण और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण मणि जांदू। अगर देखी जाओ तो उत्तराखंड की महिला साहित्यकारों अपनी लेखनी का माध्यम से समाज ते नई दिशा दिनी। उन पहाड़ की संस्कृति, लोक भाषा, नारी चेतना, संघर्ष, प्रकृति, मानवीय मूल्य, मनख्यात, भय भयात साहित्य में जीवंत बने राखी। उनको साहित्य केवल शब्दों को संग्रह नहीं बल्कि उत्तराखंड की आत्मा को दस्तावेज भी चे। आज जरूरत चे कि नई पीढ़ी यो साहित्यकारों की रचनाओं ते पढ़ून, समझून और अपनी बोली भाषा लोक संस्कृति पर गर्व करून और अपनी संस्कृति से जुड़िया रहन। धन्यवाद।
1: बैणियों अल्ले आपल सुन गढ़वाली वार्ता प्रस्तुत करता छी उत्तराखंड के प्रमुख महिला साहित्यकार डॉक्टर ममता कुंवर। उम्मीद छु कि आपको यह वार्ता जरूर पसंद आए हुनेल और वार्ता के माध्यम से आपल जानो हुनल कि हमर प्रदेश में ले साहित्यकारक महिला साहित्यकारक कोई कमी नाती, बस एक मौक मिलने की देरी छू और वो आपको आप ही सिद्ध कर दीनी। तो बैणियों अब आपको ले जानू गढ़वाल की तरफा और सुनू एक सुंदर सा पुरानो गढ़वाली गीत। वाचू पूनम सतीक।

0: सुषमा वर्मा का गायी ये गीत का दगड़ ही आज को जनानों को वास्ता कार्यक्रम संपन्न करने की गीता भंडारी को दियो अनुमति। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजने को है। अब आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थीं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता

0: कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रभदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से ये कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीप वांछित था। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। प्रदेश में चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद। ऋषिकेश और हरबतपुर में बनाए गए स्क्रीनिंग केंद्रों पर विभाग की टीमें तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य जांच कर रही है। हरिद्वार में अगले साल कुंभ मेले को लेकर रेलवे ने प्रमुख स्नान पर्वों पर श्रद्धालुओं की भीड़ प्रबंधन के लिए कई अहम फैसले लिए। और नैनीताल जिले के हल्द्वानी वन प्रभाग ने भीषण गर्मी में कार्यरत फील्ड कर्मियों और फायर वॉचर्स की सुरक्षा व सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहली बार आधुनिक कूलिंग जैकेट उपलब्ध कराए। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की

0: खरीदारी से बचने की अपील की थी। प्रदेश में चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह मुस्तैद है। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि ऋषिकेश और हर्बर्टपुर में बनाए गए स्क्रीनिंग केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं। ऋषिकेश में अब तक 50 वर्ष से कम उम्र के 2700 से अधिक और 50 वर्ष से अधिक आयु वाले करीब 4309 यात्रियों की ओपीडी जांच की जा चुकी है। स्क्रीनिंग के दौरान 436 ऐसे यात्रियों की पहचान की गई जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। इसके अलावा 22 यात्रियों को आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस के माध्यम से त्वरित चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गई हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 29 तीर्थयात्रियों को उनके स्वास्थ्य को देखते हुए यात्रा न करने की चिकित्सीय सलाह दी गई है।
1: ऋषिकेश की बात करते हैं तो जो एमआरपी पे जो हमारी ओपीडी है वो 50 साल से कम लगभग 2760 लोग वहाँ पे आ चुके हैं। 50 साल से ऊपर वाले जो 4309 लोग जो है एमआरपी सेंटर पे आ चुके हैं और इसमें से जो 436 लोग हैं करीब वो ऐसे थे जिनको कोमोर्बिडिटी थी, कोई ना कोई परेशानी थी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कार्डियक प्रॉब्लम या अन्य किसी गंभीर बीमारी से जो पीड़ित थे। और इसमें इसके अलावा जो 22 मरीज ऐसे भी आए जिनको कुछ ना कुछ इमरजेंसी थी और इमरजेंसी के तहत उनको जो है वहाँ पे एम्बुलेंस के माध्यम से उनको एसपीएस ऋषिकेश में भी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध जो है उनको कराई गई।
0: कॉर्बेट परिक्षेत्र से सटे अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकासखंड के तड़म गांव में दहशत का कारण बने एक नरबाघ को वन विभाग और कॉर्बेट प्रशासन के संयुक्त दल ने ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा है। बाघ को ढेला रेस्क्यू सेंटर में रखा गया है जहां उसकी चिकित्सा जांच की जा रही है। वनाधिकारियों के अनुसार पकड़ा गया बाघ नर है और उसकी आयु लगभग 2.5 वर्ष बताई जा रही है। उसके रक्त और डीएनए के नमूने जांच के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान की प्रयोगशाला को भेजे गए हैं। गौरतलब है कि तड़म गांव में गत 31 मार्च को 60 वर्षीय एक व्यक्ति पर जंगल में हमला हुआ था जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 3 मई को एक अन्य व्यक्ति की भी बाघ के हमले में जान चली गई थी। इसके बाद ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए वन विभाग द्वारा लगातार गश्त, कैमरा ट्रैपिंग, ड्रोन से निगरानी और खोजी अभियान चलाया जा रहा था। वहीं वनाधिकारियों का कहना है कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि यही बाघ दोनों ग्रामीणों की मौत के लिए जिम्मेदार था या फिर कोई अन्य जंगली जानवर शामिल था। नैनीताल जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने पुलिस कार्यालय नैनीताल का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न शाखाओं के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने बीट आउट व्यवस्था को मानकों के अनुरूप प्रभावी ढंग से संचालित करने और सरकारी संपत्तियों व अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अभिसूचना इकाई, नैनीताल के निरीक्षक ज्ञानेंद्र शर्मा और उनकी टीम के उत्कृष्ट टर्नआउट, कार्यालय के बेहतर रखरखाव व अभिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण की सराहना की।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: हरिद्वार में अगले साल कुंभ मेले को लेकर रेलवे ने प्रमुख स्नान पर्वों पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ प्रबंधन के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। मेले को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लेने आई उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल की मंडलीय रेल प्रबंधक विनीता श्रीवास्तव ने बताया कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर एक स्थायी होल्डिंग एरिया सहित कुल 5 होल्डिंग एरिया विकसित किए जाएंगे जिनकी क्षमता करीब 19,000 श्रद्धालुओं की होगी। इसके अलावा हरिद्वार सहित अन्य निकटवर्ती रेलवे स्टेशनों पर बफर जोन, वैकल्पिक निकास मार्ग और अतिरिक्त सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
3: मंडलीय रेल प्रबंधक विनीता श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार कुंभ मेले में भीड़ प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों और होल्डिंग एरिया में लगाए जाने वाले ये कैमरे श्रद्धालुओं की संख्या और आवाजाही का रियल टाइम आकलन करेंगे जिससे भीड़ नियंत्रण में मदद मिलेगी। रेलवे और मेला प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल के लिए कुंभ मेले के लिए अलग से रेलवे मेला अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार और आसपास के कुल 11 रेलवे स्टेशनों को कुंभ योजना में शामिल किया गया है। सामान्य दिनों में चलने वाली 33 जोड़ी ट्रेनों के अलावा प्रमुख स्नान पर्वों पर करीब 15 अतिरिक्त विशेष ट्रेनों के संचालन की प्रारंभ

0: की योजना तैयार की गई है। जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या और बढ़ाई जा सकती है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
1: नैनीताल जिले के हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा भीषण गर्मी में कार्यरत फील्ड कर्मियों और फायर वॉचर्स की सुरक्षा व सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहली बार आधुनिक कूलिंग जैकेट उपलब्ध कराए गए हैं। प्रभागीय वनाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि यह जैकेट अत्यधिक गर्मी में शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में सहायक है। उन्होंने कहा कि ग्रीष्म ऋतु विशेषकर वनाग्नि की घटनाओं के दौरान फायर वॉचर्स और फील्ड स्टाफ को दूरस्थ वन क्षेत्रों में कार्य करते हुए भीषण गर्मी, धुएं और आग का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें इस जैकेट से काफी राहत मिलेगी।
2: हल्द्वानी वन प्रभाग के अंतर्गत हमने अभी जो हमारे फील्ड स्टाफ हैं और जो फायर वॉचर हैं जो वनाग्नि की रोकथाम में अभी काम कर रहे हैं उनके लिए एक कूलिंग जैकेट मंगाई है। ये विशेष रूप से डिजाइन की गई है। इसमें जो पावर ऑपरेटेड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी है जिसके कारण ये जो है बॉडी का टेम्परेचर कम करती है और जो हमारे फायर वॉचर है या जो फील्ड स्टाफ है जो जब वनाग्नि नियंत्रण करते हैं तो वहाँ तापमान अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में जो हीट स्ट्रेस है, डिहाइड्रेशन है, थकान है को कम करता है, बॉडी को ठंडा रखता है तो ऐसी स्थिति में वो अपनी पूरी क्षमता के साथ वनाग्नि नियंत्रण के कार्यों को कर सकते हैं। इसमें जो हमारे चेक पोस्ट बैरियर पे भी जो हमारे फील्ड स्टाफ कार्यरत हैं, गर्मी में तापमान बढ़ता है तो उनको भी जो है इसमें जो है हीट वेव और इसके दौरान उनको भी जो है ये उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वो भी जो है कार्य कुशलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।
1: वहीं फील्ड में तैनात वनकर्मी राजीव जोशी ने बताया कि जंगल में आग बुझाने और भ्रमण के दौरान उन्हें इस जैकेट से लाभ मिल रहा है।
3: ये जैकेट फायर सीजन के लिए बहुत अच्छी है। जैसे काफी जैसे पहले हमको सामना करना पड़ता था, आग लग गई है, काफी गर्मी होती थी, तो अब ये जो जैकेट आई है एयर कंडीशनर प्लस वेस्ट जैकेट है। जैसे ज्यादा अंदर गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है तो इसमें बैटरी दी गई है और ये एयर कंडीशनर जैकेट है जिसमें दो पंखे लगे जो अंदर की गर्म हवा भी बाहर फेंक रही है और अंदर काफी ठंडा कर रही है और ये गर्मी से राहत देने के लिए काफी अच्छी है और काफी हल्की भी है जैकेट।
1: रुद्रप्रयाग जिले में स्थित मदमहेश्वर मंदिर के कपाट आगामी 21 मई को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अनुसार 17 मई को भगवान मदमहेश्वर की उत्सव डोली ओंकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह से बाहर आकर मंदिर स्थित सभा मंडप में विराजमान होगी। 19 मई को उत्सव डोली सुबह ओंकारेश्वर मंदिर से प्रस्थान कर रात्रि विश्राम के लिए राकेश्वरी मंदिर पहुंचेगी। 20 मई को डोली रांची से प्रस्थान कर रात्रि विश्राम के लिए गौंडार पहुंचेगी। 21 मई को उत्सव डोली गौंडार से प्रस्थान करेगी जिसके बाद मदमहेश्वर मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। प्रदेश में चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद। ऋषिकेश और हरबरपुर में बनाए गए स्क्रीनिंग केंद्रों पर विभाग की टीमें तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य जांच कर रही है। हरिद्वार में अगले साल कुंभ मेले को लेकर रेलवे ने प्रमुख स्नान पर्वों पर श्रद्धालुओं की भीड़ प्रबंधन के लिए कई अहम फैसले लिए। और नैनीताल जिले के हल्द्वानी वन प्रभाग ने भीषण गर्मी में कार्यरत फील्ड कर्मियों और फायर वॉचर्स की सुरक्षा व सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहली बार आधुनिक कूलिंग जैकेट उपलब्ध कराए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:15:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत और पहला गीत आप सुनने वाले हैं फिल्म आपकी परछाइयां से, लता मंगेशकर के स्वर में, बोल हैं राजा मेहंदी अली खान के और संगीत प्रस्तुत हैं ये गीत आपकी परछाइयां से।

फिल्म चरस से आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। आनंद बख्शी ने ये गीत लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया था। फिल्म का कार्यक्रम का अंतिम गीत है फिल्म हंसते जख्म से, जिसे लिखा है कैफी आज़मी ने और मदन मोहन का संगीत है, आवाज़ लता मंगेशकर की।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और

0: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
1: जी,
0: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
0: जी।
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
0: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
1: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
0: जी,
1: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
0: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
1: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
0: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
1: जी,
0: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
1: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
0: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
1: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
0: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
1: जी,
0: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
0: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
1: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
0: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
1: जी,
0: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
0: जी,
1: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
0: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
0: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थी, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थी।
3: अक्कर बक्कर बम्बे वो 80-90 पूरे 100 100

0: प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
1: हाँ चलो चलो, वहाँ पे पानी
0: चलो,
1: होगा।
0: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
3: कौन है?
1: दीदी।
3: कौन है?
1: दीदी।
0: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
1: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
0: हम थोड़ा पानी पी लें?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
1: हाँ, हाँ पर ठंडा पानी था।
0: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
4: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
1: कौन है आप?
4: नहीं समझे?
1: नहीं।
0: नहीं।
4: अच्छा, तो फिर ये पहेली सुनो।

0: खा जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम।
1: आप गर्मी अम्मा हैं।
2: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
0: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
2: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी
2: शुरू हो जाती है। हाँ
0: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
2: भाई मेरे मौसम में गर्मी ही तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
0: चलो।
3: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
2: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
3: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
0: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
2: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
2: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
2: सोचो, मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
0: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
0: कौन सा फल है?
1: कौन सा?

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: आ,
2: आ,
1: तुम तो बड़ी समझदार हो।
3: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, कुल्फी वाला बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो, आइसक्रीम।
1: बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
4: अरे कोई खाने को दे तब ना।
1: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
5: लाओ अम्मा,
4: लाओ अम्मा,
1: लो।
4: गर्मी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
1: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
7: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
8: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
9: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
8: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
10: What you heard right behind you was the sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
11: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
9: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में ही इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की 2 सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: हाँ? कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
3: हाँ।
2: लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूं मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: हाँ? हाँ? पहनावे से तो कोई कबाइली लगता है।
2: हाँ।
3: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
2: हाँ?
3: कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: हाँ, आने दो, आने दो।
4: ए, कौन हो तुम? रुको, रुको, जाओ वहीं रुक जाओ, रुको।
5: कौन हो तुम?
6: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
5: क्या सूचना?
6: साहब साहब दुश्मनों के बारे में।
5: अच्छा, यहीं रुको, चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
6: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
6: सर हम एक चरवाया हैं।
0: आगे बताओ।
6: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
0: क्या देखा तुमने?
6: साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
0: क्या?
6: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ।
0: कितने लोग रहे होंगे?
6: साहब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
0: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
6: साहब मेरा गांव है घरकोन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
0: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
1: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
0: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी

0: चौकियां बना ली थी।
1: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
0: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
1: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
0: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
1: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
2: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
3: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
2: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
4: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
2: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
3: जी,
5: यस सर।
2: ये मेज के चारों ओर।
3: जी सर।
5: उधर से।
2: हाँ जी। तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
3: जी सर।
2: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
3: जी सर।
2: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
3: जी सर।
2: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
3: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
2: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
6: यस सर।
2: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
3: जी जी सर।
2: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
3: सर, जी सर।
2: कोई शक?
3: नो सर।
2: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
6: यस सर।
5: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
7: धीमे बोलो, धीमे।
5: जी,
7: उन्हें पता ना चल जाए।
5: जी सर।
7: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
5: जी।
7: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
5: ठीक है सर।
7: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हाथ गोला फेंकना।
5: जी सर। जी सर।
7: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
5: जी सर।
7: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकल।

0: casa Brengen. आवाज नहीं
1: हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
2: हाँ सर।
1: एवरीबॉडी रेडी?
2: यस सर।
1: यस सर।
0: अब हथगोला फेंको।
3: गुड। वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।
4: फायर!

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।

0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
3: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक

0: क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक

0: भाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं और इस समय हम लाते हैं आपके लिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए। और सैनिकों के लिए कार्यक्रम में आज श्रोताओं, आज का जो ये एपिसोड है वो समर्पित है 15 मार्च 1977 को केरल के कोझिकोड में जन्मे भारतीय सेना के जांबाज अधिकारी को। सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे फौजी भाइयों, आज का यह एपिसोड समर्पित है 15 मार्च 1977 को केरल के कोझिकोड में जन्मे भारतीय सेना के जांबाज अधिकारी और एनएसजी कमांडो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को, जिन्होंने 26/11 के मुंबई हमले में सर्वोच्च बलिदान दिया और 28 नवंबर को आतंकवादियों से लड़ते हुए अदम्य पराक्रम का प्रदर्शन किया। उन्हें मरणोपरांत

मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का जन्म केरल के कोझिकोड में हुआ था, लेकिन वो पढ़े लिखे बैंगलोर में। उनके पिता का नाम था के उन्नीकृष्णन, जो इसरो में अधिकारी थे, और माता का नाम धनलक्ष्मी था। संदीप उन्नीकृष्णन 1995 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में चयनित हुए और 12 जुलाई 1999 को बिहार रेजिमेंट की 7वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त किए।

श्रोताओ, एक कार्यक्रम का जो गीत आप सुन रहे थे, इसको लिया गया था फिल्म भाग मिल्खा भाग से। आवाज़ थी दिव्या कुमार की, गीतकार प्रसून जोशी और संगीतकार थे शंकर एहसान लोय। श्रोताओ, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 51 विशेष कार्रवाई समूह सैग के कमांडो थे और उन्हें ट्रेनिंग अधिकारी के रूप में जाता था। और अब सुनते हैं दोस्तों अगला गीत फिल्म वेलकम से, जिसे गाया है आनंद राज आनंद और कल्पना पटोवरी ने, और इसको लिखा है इब्राहिम इश्क ने और संगीत है आनंद राज आनंद का।

एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून से श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है सैनिकों के लिए और आज हम बात कर रहे हैं और याद कर रहे हैं शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को। संदीप उन्नीकृष्णन जो ये 26 नवंबर के नाम से जो हमला मुंबई में हुआ था होटल ताज पर, उसके होटल के बंधकों को छुड़ाने के लिए 10 कमांडो की टीम का नेतृत्व कर रहे थे और होटल के अंदर गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने साथियों को पीछे हटने और खुद दुश्मनों से भिड़ने का फैसला किया। श्रोताओ, संदीप उन्नीकृष्णन के अंतिम शब्द थे अपने साथियों के लिए कि डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम, यानी ऊपर मत आओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा।

ये गीत आपने सुना फिल्म चांदनी चौक टू चाइना से, आवाज़ थी कैलाश खेर, नरेश और परेश की। गीत और संगीत था कैलाश खेर का। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। और आज के इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को। शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने अपनी वीरता से केवल अपने राज्य ही नहीं, संपूर्ण देश के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। श्रोताओं, जब जब उनका जिक्र होगा तब तब देश को अपने हर एक सैनिक पर गर्व होगा। उनके अंतिम शब्द के ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा। ये संभवतया ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के दौरान उन्होंने अपने कमांडो से कहे थे। ऐसा कहते ही वे मुंबई के ताज होटल के अंदर सशस्त्र आतंकवादियों की गोलियों से शहीद हो गए और मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किए गए। पूरे देश को उनकी इस वीरता, इस शौर्य

श्रोताओं, कार्यक्रम सैनिकों के लिए मैं आज ये अंतिम गीत था फिल्म लगान से, जिसे आवाज़ दी थी आर रहमान ने, बोल लिखे थे जावेद अख्तर के और संगीत भी आर रहमान का था। श्रोताओं, आज हम याद कर रहे थे शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को। और शहीद उन्नीकृष्णन जो थे वो एक लोकप्रिय अधिकारी थे, जिन्हें उनके वरिष्ठ और कनिष्ठ लोग दोनों ही पसंद करते थे। सेना के सबसे कठिन कोर्स, घातक कोर्स के दौरान वे शीर्ष स्थान पर रहे और उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशिक्षक ग्रेडिंग और प्रशस्ति अर्जित की। इन्हीं शब्दों के साथ हम और शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को याद करते हुए आज के कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। श्रोताओ, कल फिर किसी ऐसी ही बहादुर शख्सियत की बातों के साथ और उनकी यादों के साथ फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम सैनिकों के लिए में।

0: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोता स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप आशुतोष उनियाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार और विभिन्न सेवा संस्थाओं द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के लिए सराहनीय कार्य किए गए हैं। प्रदेश में चार धाम यात्रा के सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह मुस्तैद है। ऋषिकेश और हर्बर्टपुर में बनाए गए स्क्रीनिंग केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं। चमोली जिले में स्थित पंच केदारों में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 18 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। कपाट खोलने की तैयारियों को लेकर मंदिर समिति के साथ ही प्रशासन की टीम भी जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान के तहत पिथौरागढ़ जिले के वाइब्रेंट विलेज गुंजी में 15 और 16 मई को एक शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में संगठन मजबूती, बूथ प्रबंधन और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर मंथन किया जाएगा। हरिद्वार में अगले साल कुंभ मेले को लेकर रेलवे ने प्रमुख स्नान पर्वों पर श्रद्धालुओं की भीड़ प्रबंधन के लिए कई अहम फैसले लिए। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर एक स्थायी होल्डिंग एरिया सहित कुल 5 होल्डिंग एरिया विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा हरिद्वार सहित अन्य निकटवर्ती रेलवे स्टेशनों पर बफर जोन, वैकल्पिक निकास मार्ग और अतिरिक्त सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। नैनीताल जिले के हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा भीषण गर्मी में कार्यरत फील्ड कर्मियों और फायर वॉचर्स की सुरक्षा व सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहली बार आधुनिक कूलिंग जैकेट उपलब्ध कराए गए हैं। ये जैकेट अत्यधिक गर्मी में शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में सहायक हैं। और मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
0: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून से। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गाने नए तराने।

श्रोताओ, शाहिद माल्या के स्वर में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म उड़ता पंजाब से, जिसे लिखा था शिव कुमार बतालवी ने और संगीत था अमित त्रिवेदी का। अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म कलंक से गीत। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार हैं प्रीतम।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओ, नंदिनी श्रीकर और अरिजीत सिंह के स्वर में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म शंघाई से। गीतकार थे कुमार और संगीतकार थे विशाल शिखर। अब अगला गीत प्रस्तुत है जिसे लिखा है अमित भट्टाचार्य ने और संगीत है अमित त्रिवेदी का। फिल्म है लुटेरा और आवाज है मोनाली ठाकुर की।

0: वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से ये गीत आप सुन रहे थे मोहित चौहान के स्वर में। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा था और प्रीतम ने संगीत दिया था। अब सुनते हैं समीर अंजान का लिखा और हिमेश रेशमिया के संगीत से सजा एक गीत, जिसे आवाज दी है राहत फतेह अली खान ने और फिल्म का नाम है सन ऑफ सरदार।
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में करना है।

ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म तुम्हारी सुलु से आवाज, संगीत और गीत था गुरु रंधावा का। अब सुनते हैं अगला गीत जुबिन नौटियाल और ध्वनि भानुशाली के स्वर में, जिसे लिखा है कुमार ने और संगीत है मीत ब्रदर्स का, और फिल्म का नाम है मर जावां।

मिथुन के गीत और संगीत से सजा और अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म आशिकी 2 से। और अब अगला गीत हर्षदीप कौर सुना रही हैं फिल्म रईस से, संगीत है राम संपत का।

फिल्म केदारनाथ से इस गीत को आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह के स्वर में। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा था और अमित त्रिवेदी ने इसे संगीत दिया था। श्रोताओं, अब धीरे धीरे कार्यक्रम में समय हो गया है आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनाने का, तो चलिए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म जिस्म से, श्रेया घोषाल के स्वर में, गीतकार नीलेश मिश्रा और संगीतकार हैं MM करीम।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के इसी गीत के साथ गाने नए तराने ये कार्यक्रम समाप्त होता है। FM 100.5 MHz पर आप हमें आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सायं के 4 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप आशुतोष उनियाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी। अब तक 11 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए। नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार और विभिन्न सेवा संस्थाओं द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के लिए सराहनीय कार्य किए गए हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री बड़ी सुगमता से ऑफलाइन पंजीकरण करा रहे हैं। पंजीकरण केंद्र में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कूलर, पंखों और पीने के पानी सहित शौचालय की व्यवस्था की गई है। चमोली जिले में स्थित पंच केदारों में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 18 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। कपाट खोलने की तैयारियों को लेकर मंदिर समिति के साथ ही प्रशासन की टीम भी जुटी हुई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से देहरादून जिले के सहसपुर और विकास नगर के किसानों को मिली नई पहचान। कृषि विभाग की पहल से 70 हेक्टेयर क्षेत्र में शुरू हुई हाइब्रिड धान खेती से 45 से 62 क्विंटल तक पहुंची धान उपज। किसानों की आय में 39% वृद्धि। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ग्राम पंचायत भगतनपुर आबिदपुर में चंद्रभागी मत्स्य सेवा केंद्र में संचालित रंगीन मत्स्य पालन क्लस्टर का निरीक्षण किया। कहा, जिले का यह पहला मत्स्य क्लस्टर है जहां किसानों द्वारा रंगीन मत्स्य पालन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीन दयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान के तहत पिथौरागढ़ जिले के वाइब्रेंट विलेज गुंजी में 15 और 16 मई को एक शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में संगठन मजबूती, बूथ प्रबंधन और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर मंथन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सायं के 4:02 हुए हैं। अब आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत में आज पंडित मणिलाल नाग कर रहे हैं सितार वादन राग सरस्वती में।

0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, जहां पंडित मणिलाल नाग कर रहे थे सितार वादन राग सरस्वती में। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम से पहले अब सुनते हैं ये संदेश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में साया के 4:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत एक कलाकार। श्रोताओं, फिल्म संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं। फिल्म फेयर पत्रिका द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे लोकप्रिय मेल प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार, उन्हें समूचा संगीत जगत उनके गायन की विविधता के लिए हमेशा याद रखेगा। श्रोताओं, अपनी करिश्माई आवाज के जादू और योडलिंग वाली अदा के साथ किशोरदा संगीत प्रेमियों के दिलों में अनंत काल तक जीवित रहेंगे।
3: हाल कैसा है जनाब का?
4: क्या ख्याल है आपका?

श्रोताओं, किशोर दा के बड़े भाई और सुप्रसिद्ध अभिनेता अशोक कुमार का कहना था कि किशोर एक गायक के रूप में इसलिए सफल हुए क्योंकि उनकी आवाज सीधे माइक तक पहुंचती है, उसके सबसे संवेदनशील बिंदु पर।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म शराबी से, और जिसे लिखा था प्रकाश मेहरा ने। श्रोताओं, किशोर कुमार की लोकप्रियता के साथ साथ उन्होंने पुरस्कार भी बहुत जीते अपने जीवन में। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए किशोर दा को 28 नामांकनों में से 8 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले, और इस श्रेणी में सबसे अधिक फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने और नामांकित करने का रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। उन्हें 1985 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 1997 में मध्य प्रदेश सरकार ने ही हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए किशोर कुमार पुरस्कार नामक एक नया पुरस्कार शुरू किया। 2012 में उनका अप्रकाशित अंतिम गीत नई दिल्ली में ओशियंस के सिने फैन नीलामी में 15,60,000 रुपये में बिका। श्रोताओं,

आनंद बख्शी के बोल और आरडी वर्मन के संगीत में यह गीत आप सुन रहे थे फिल्म अमर प्रेम से। श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं किशोरदा की, तो किशोरदा एक्टर भी थे सिंगर के साथ साथ, इसलिए वो लाइन गाते नहीं थे, सिचुएशंस जीते थे। यदि आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि उनका उनके जो गीत हैं, जैसे मेरे महबूब कयामत होगी, उसमें बेबसी चिंगारी कोई भड़के जो अभी आपने सुना, उसमें तड़प जिंदगी के सफर में फिलॉसफी, सब उनकी आवाज में दिखता है। देवानंद के लिए रोमांटिक उदासी, राजेश खन्ना के लिए टूटा हुआ इश्क, अमिताभ के लिए तन्हाई का दर्शन, हर हीरो का दुख अलग रंग में गाया किशोरदा ने। जैसे रफी के पास सुर का दर्द था, मुकेश के पास आवाज का दर्द था, किशोर के पास अंदाज का दर्द था। वो गम को भी इतनी खूबसूरती से गाते थे कि सुनने वाला दर्द से भागता नहीं, गले लगाता था। इसीलिए आज भी टूटा दिल पहले किशोर ही को ढूंढता है।

ये गीत था फिल्म महबूबा से, जिसका संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। श्रोता, बॉलीवुड में कई गायक संगीतकार जोड़ियां आई, पर किशोर कुमार और राहुल देव बर्मन यानी पंचम दा यानी कि आरडी बर्मन की जोड़ी ने 1970 से 80 के दशक में संगीत का मतलब ही बदल दिया। आरडी ने किशोर की आवाज़ में वो मस्ती, वो शरारत और वो दर्द पहचाना जो किसी और में नहीं था। किशोर दा बिना किसी औपचारिक ट्रेनिंग के सिर्फ एहसास से गाते थे और पंचम प्रयोग करने से कभी नहीं डरते थे। दोनों का मूल मंत्र था, रूल तोड़ो, फील पकड़ो। और 1970 से 87 तक किशोर दा की 90% हिट गाने आरडी के साथ थे, करीब 300 प्लस गाने। किशोर के निधन यानी कि 1987 के बाद आरडी टूट से गए थे। कहते थे कि मेरी आवाज़ चली गई है।

इसी के साथ फिल्म संगीत एक कलाकार समाप्त होता है। श्रोताओ, आज के हमारे कलाकार थे किशोर कुमार। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सायं के 4:59 और 53 सेकंड हुए हैं। अब आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए के धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने 144 विधायकों के समर्थन के साथ विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाली AIADMK ने सरकार का समर्थन किया। एडापड्डी के पन्नीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना DMK के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भाजपा विधायक और PMK समेत 5 विधायक तटस्थ रहे। DMK और अन्य गठबंधन सहयोगी दल मतदान में शामिल नहीं हुए। पुदुचेरी में ऑल इंडिया NR कांग्रेस नेता N रंगास्वामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया NR कांग्रेस के मल्लाड़ी कृष्णा राव और भाजपा के N नमसी वयम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने के प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देशभर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर ही निर्णायक समाधान प्रदान करना है। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। बिबवेवाड़ी इलाके से गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष कुल 85.20% छात्र उत्तीर्ण हुए। छात्राओं का प्रतिशत 88.86

0: और छात्रों का प्रतिशत 82.13 है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 30,413 पर बंद हुआ। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाद, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इधर आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलोर जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल रात तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में साय के 5:05 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर प्रसारित होगा युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत सुनिएगा 5:45 पर। किसान साथियों के लिए कार्यक्रम कृषि जगत का समय रहेगा 7:30। 7:50 पर सुनेगा क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की विशेष प्रस्तुति राज्य दर्शन।

रात्रि 8:15 पर हमारे श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दून लाइब्रेरी एवं रिसर्च सेंटर देहरादून में आयोजित संगीत संध्या पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। रात्रि 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पॉटलाइट, चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। श्रोताओं, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। आपकी फरमाइश, ये कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनेंगे रात्रि 10:00। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आइए अब आपको कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दें। शैल संगीत के कार्यक्रम में कल प्रातः 7:30 पर सुनिएगा मदन सिंह के गाए जौनसारी लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून आप सुनेंगे प्रातः 8:30 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में कल प्रातः 10:35 पर सुनिएगा ललित के गाए कुमाऊनी लोकगीत। व्हाट्सएप फरमाइश, आपका मनपसंद कार्यक्रम प्रसारित होगा प्रातः 11:00।

बहनी सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत। समय रहेगा दोपहर 12:30। दोपहर 1:30 पर श्रोता सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। 2:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए। गाने नई तरारें सुन सकेंगे 3:02 पर। और 4:30 सुनिएगा संदेश टू सोल्जर्स। कल 5:45 पर हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत। और 7:30 समय रहेगा कार्यक्रम कृषि जगत का।

रात्रि 8 बजे श्रोता सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा। भेंटवार्ता का विषय रहेगा उच्च रक्तचाप और हृदय रोग। डॉक्टर चेतन शर्मा से रमेश चंद्रा की बातचीत।

श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। समय हुआ है साई के 5:10। आइए सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। कार्यक्रम युववाणी लेकर हाजिर हैं हम ठीक 5:10 पर। जी हाँ, और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। दोस्तों, ये कार्यक्रम है खास आपके लिए, यानी हमारे युवा साथियों के लिए। तो बनिए रहिए हमारे साथ कार्यक्रम युववाणी में साय 5:45 तक। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस म्यूजिकल ट्रैक के साथ।

गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी धातु की जो केवल आभूषण नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोने की। भारत में सोना पहनना केवल वस्तु नहीं माना जाता बल्कि इसे सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान का प्रतीक समझा जाता है। शादी ब्याह हो, त्यौहार हो, पूजा पाठ और विशेष अवसरों पर सोने की खरीद को शुभ माना जाता है और यही कारण है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में गिना जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सोने की खरीद भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है? दरअसल दोस्तों, भारत अपने उपयोग का अधिकांश सोना विदेशों से आयात करता है। जब देश बड़ी मात्रा में सोना खरीदता है तो विदेशी मुद्रा यानी डॉलर का अधिक खर्च होता है। इससे व्यापार घाटा बढ़ सकता है और रुपए की कीमत पर भी असर पड़ता है। दूसरी ओर, सोना निवेश का एक और सुरक्षित माध्यम भी माना जाता है। जब शेयर बाजार या अन्य निवेश क्षेत्रों में अनिश्चितता होती है तब लोग सोने की ओर आकर्षित होते हैं। ग्रामीण भारत में तो सोना आज भी एक प्रकार की सुरक्षित बचत माना जाता है जिसे जरूरत पड़ने पर आसानी से उपयोग किया जा सकता है। सोने का व्यापार लाखों लोगों को रोजगार भी देता है। जैसे हम सुनार देखते हैं, कारीगर, ज्वेलरी डिजाइनर और छोटे छोटे व्यापारी। भारत की पारंपरिक कला और हस्तकला को भी इससे पहचान मिलती है। हालांकि हमारे जो अर्थशास्त्री हैं वो ये मानते हैं कि यदि अत्यधिक धन केवल सोने की खरीद में लग जाए तो वो उद्योग, व्यापार और उत्पादन जैसे क्षेत्रों में निवेश कम कर सकता है। इसीलिए सरकार समय समय पर गोल्ड बॉन्ड और डिजिटल गोल्ड जैसी योजनाएं लाती हैं ताकि हम लोग सुरक्षित निवेश करें और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिले। तो साथियों, याद रखिएगा कि सोना केवल एक चमकती धातु नहीं है बल्कि भारतीय भावनाओं, परंपराओं और अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आवश्यकता है एक संतुलित सोच और समझदारी से इसमें निवेश करने की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। फिलहाल आपको ले चलते हैं एक और म्यूजिकल ट्रैक पर, लेकिन उससे पहले सुनिए एक संदेश।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
0: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

सुबह ऑफिस जाना हो या फिर शाम को किसी काम पर पहुंचना हो और सड़क पर लगा हो लंबा जाम, तो दिल की धड़कनों का तेज होना लाजमी है। और ऊपर से पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, भाई पेट्रोल के दाम जो हैं आसमान छू रहे हैं। और आज हर शहर में, देहरादून की बात करूं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है क्योंकि हम लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के सड़क पर निकलते हैं। जी हाँ, और इससे सड़कें भर जाती हैं। कितना अच्छा हो अगर चार लोग चार गाड़ियों की जगह एक ही कार में जाएं, तो सोचिए कितना फर्क पड़ेगा। जी हाँ, इसी सोच का नाम तो है कार पुलिंग। कार पुलिंग यानी एक दिशा में जाने वाले लोग मिलकर एक ही गाड़ी का उपयोग करें। इससे न केवल पेट्रोल और पैसे की बचत होती है बल्कि ट्रैफिक और प्रदूषण भी कम होता है। और सबसे बड़ी बात, कार पुलिंग का एक मज़ेदार फायदा ये भी है कि सफ़र बोरिंग नहीं लगता। रास्ते भर बातचीत, हंसी मजाक और दोस्ती का नया रिश्ता बन जाता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि सबसे अच्छी दोस्ती कार पुलिंग से ही शुरू हुई है। इसके अलावा पर्यावरण के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। भाई कम गाड़ियाँ चलेंगी तो धुआं कम होगा, भाई पर्यावरण प्रदूषण तो अपने आप ही कम हो जाएगा और हमारा जो शहर है वो ज़्यादा स्वच्छ और स्वस्थ बनेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि कार पुलिंग का जो ये साझा सफ़र है ये आपको भी पसंद आएगा यदि आप अपने जीवन में इसे अपनाएंगे, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी है अपने शहर के लिए, अपने पर्यावरण के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए।

रब ने बना दी जोड़ी। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में। दोस्तों अच्छा ये बताइए कि अपनी डाइट को लेकर आप कितने पजेसिव हैं या बेफिक्र हैं। भाई मेरी सलाह माने तो मुझे लगता है कि हम सभी को अपनी डाइट की फिक्र ज़रूर होनी चाहिए, और आजकल एक ऐसी डाइट जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जी हाँ, ये स्वास्थ्य और फिटनेस को लेके काफ़ी चर्चा में है, जिसे कहते हैं लो कार्ब हाई फैट यानी कीटो डाइट। कुछ लोग इसे लोको तेल डाइट भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें घी, मक्खन, नारियल तेल और हेल्दी फैट का उपयोग ज़्यादा होता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये डाइट इतनी लोकप्रिय हो क्यों रही है और इसके क्या फ़ायदे हैं। दरअसल हमारी सामान्य भोजन शैली में शरीर को ऊर्जा मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, जैसे चावल, रोटी, आलू और मिठाइयाँ। लेकिन कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम कर दिए जाते हैं और शरीर को ऊर्जा फैट से मिलने लगती है। इसी प्रक्रिया को कीटोसिस कहा जाता है। इस डाइट का सबसे बड़ा फायदा माना जाता है वजन का कम करना। जब शरीर फैट को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करता है तो जमा चर्बी धीरे धीरे कम होने लगती है, और बहुत से लोग तेजी से वजन घटाने के लिए इसे अपनाते भी हैं। दूसरा फायदा है भूख का कम लगना। कीटो डाइट में प्रोटीन और हेल्दी फैट अधिक होते हैं, जिससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है और बार बार खाने की जो इच्छा है वो भी कम हो जाती है। और तीसरा महत्वपूर्ण लाभ है ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद, क्योंकि इसमें चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, इसलिए कुछ लोगों में शुगर लेवल को संतुलित रखने में इससे मदद मिल सकती है। हालांकि मधुमेह के जो मरीज हैं उन्हें

डॉक्टर की सलाह के बिना इसे शुरू नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इससे शरीर में ऊर्जा और फोकस बेहतर महसूस होता है और शरीर फैट से ऊर्जा बनाना सीख जाता है, तो कई लोगों को जो सुस्ती है वो कम महसूस होती है और सक्रियता अधिक। लेकिन साथियों, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी डाइट की शुरुआत बिना किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य का असली मंत्र केवल डाइट नहीं बल्कि संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और अच्छी दिनचर्या है। तो याद रखिए, फिटनेस का मतलब भूखा रहना नहीं बल्कि समझदारी से सही भोजन चुनना है।

ऊर्जा, उत्साह और तेजी का प्रतीक तो है, लेकिन कई बार ये तेजी दुर्घटना का कारण बन जाती है। इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन केवल कानून ही नहीं, बल्कि हमारी और दूसरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है। तो सबसे पहली बात, बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, चाहे बहुत कम दूरी पर आप जा रहे हों। कार में सीट बेल्ट जरूर लगाएं और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए वाहन ना चलाएं। एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी भर का दर्द बन सकती है। तेज रफ्तार और स्टंट करना आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड बन गया है, लेकिन सड़क पर किसी भी तरह की कोई रेसिंग नहीं करनी है। युवाओं को समझना है कि कुछ सेकंड का रोमांच किसी के या हमारे परिवार की खुशियां छीन सकता है। साथ ही ट्रैफिक सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग और लेन नियमों का पालन करना भी जरूरी है। इससे सड़क पर अनुशासन बना रहता है और दुर्घटनाएं कम होती है। ताइए संकल्प लें, सुरक्षित चलें, नियम को माने और अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी खुश रखने का एक प्रयास करें।

दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम युववाणी कैसा लगता है? कार्यक्रम के संबंध में आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून, पिन 24800001। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपके पत्र हमें जरूर मिलेंगे। अब अपने दोस्त को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 5:45 होने को हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

नमस्कार दगड़ियों को राम जगत हम आप सबों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत छ दीपक रावतों को आप सबों थकी प्रणाम सेवा सुनोई और दगड़ियों राजी खुशी होला घर परिवार हम कुटुंबदारी दगड़ ये काम ना कर दू और जन की आप जानने लगे यहाँ चाहिए हमेशा के चार आज भी रंत रैबारों का दगड़ गीत गाना आप लोगों को हम लेकर यहाँ छो ग्राम जगत हम दगड़म गढ़ोली कहानी भी छे और वे एक दगड़ दगड़म छुई बात तो छुई बातों के सिलसिला में दगड़ियों आप चौतरफे देखने लगे छा कि अब धीरे धीरे करके जो चार धाम यात्रा शुरू हुई है और चार धाम यात्रा में लोग दूर दूर देशों बटे की राज्यों बटे की हमारे उत्तराखंड माना छ कुछ तो देव स्थलों थे देखने को आना छनार कुछ जो हमर पहाड़ एक ठंडी ठंडी हवा शुद्ध आवा हवा में रहने को आना छन स्वागत छ सब जद कभी लोग घूमने को आना छन उत्तराखंड में पर वे का दगड़ दगड़ हमारे हाथ जुड़े रहन हमेशा कि चार कि भय लोगों जब भी उत्तराखंड में आवा तो उत्तराखंड का संस्कार था कि वे की संस्कृति विरासत थे भी समझ लिया और वहाँ के अनुरूप यकम आया और देवस्थलों में जया अपन आचरण भी उन्हीं रखिया जैसे कि उत्तराखंड के स्वभाव में बदलाव न्याओ और आन जान वाला रास्ता में जितने भी लोग आना जाना छनू थे कोई कष्ट नहीं हो हम थे कि उन सुगम ढंग से कि सुगम रास्तों बटे अग्नि बढ़न चाहो चार सुगम सरल तरीके से कि यात्रा पर आन चाहो कि पहले का जमाना के लोग बोलते भी छाए कि भाई जब चार धाम यात्रा पर जैले तो भाई वैसे कुछ समय पहली कुछ वक़्त पहली संत बाण सुर कह दियो खैर आजकल जमाना में तो संत बाण बड़ो मुश्किल काम छ पर फिर भी कोशिश हो सकत मन ख्या तो मन क्यों काम योज कि भाई वो अपन कोशिश जारी रख दे तो अपन आचार विचार व्यवहार में भी एक संत जन जो स्वभाव अपन बनावा जिससे कि आप बहुत शांतिपूर्वक ढंग से कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा थे वे सुखद अनुभव प्राप्त कर लिया और बाकी तो उत्तराखंड में जख भी जैले वक एक एक घट घटम राम बस्या छन जने जैले उन्हें भगवान ही भगवान छन और हर जगह का अपनी एक कहानी छ अपनी एक बात छ और वे समाज का प्रति जय समाज का क्षेत्र में आप जाना छो वे तो समझण भी सब लोगों को जरूरी है जो बहर बैठे आना छन और हमारे जो उत्तराखंड का लोग छन जो मेजबान छन उनसे भी मेरे हाथ जुड़े छ कि आप भी अपने स्वभाव थे कि इन्हें दिखावा इन रावा कि बहरों थे भी लगो लो कि हाँ भाई हम उत्तराखंड में छो उत्तराखंड का लोगों की जो पहचान छ बहर राज्यों में और बहर देशों में भी देवतुल्य छ मनखियों की भी पहचान देवतुल्य छ तो कोशिश करना चाहिए कि भाई हम और हमारा स्वभाव देवतुल्य हो छा तो मुश्किल छ पर कोशिश तो हो सकद और कोशिश डाली तो उत्तराखंडों को मान सम्मान भी बढ़ल हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आला और उत्तराखंड को विकास हो लो और विकास हो लो तो एक असर सबों तक पहुँचो तो दगड़ियों यूँ छुई बातों के दगड़ आप धीरे धीरे आगने बढ़ दो और अनुराधा कोटियाला का आवाज़ में आप थे कि सुनो लो एक सुंदर सी गढ़ोली गीत।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा लाइए 3,000।
4: क्यों भाई?
3: मेरी पॉकेट मनी।
4: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
3: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
4: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
3: अपना मोबाइल लाओ।
4: ले ले।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: तो दगड़े अभी आप सुनना चाहे गढ़ोली गीत अनुराधा कोटियाल की आवाज़ में। और दगड़े अब आप लोगों तय सुनल हम एक गढ़ोली कहानी छोटी फूफू। प्रस्तुत कना चन श्री शंभू प्रसाद रतोड़ी।

बिचला चांदपुर मां पिंडर नदी का बाई तरफ नदी का किनारा बिटी पहाड़ का शिखर तक फैलियों गांव च रतुड़ा पंडित हरिकृष्ण जी रतुड़ी अपना गढ़वाल का इतिहास नामक किताब मां बतलौंदा कि संबत 980 मां पंडित सत्यानंद जी और राजबल जी जो आद्य गौर छया यून ऐते रतुड़ा गांव मां बसावट करे। उत्तराखंड ते देवभूमि बोली जांद देवताओं का दगड़ा दगड़ी नारी शक्ति देवी का रूप मां यख निवास कर दी। रतुड़ा मां मां भगवती ज्वालपा गौरजा झाली नागिणा नंदा सरस्वती आदि रूपों मां गांव की रक्षा कर दी। देवियों और ध्यानियों की भूमि ची रतुड़ा ये गांव मां द्वि भाइयों का बाद कन्या को जन्म भयो नौ पड़े भागीरथी। द्वि भाइयों की लाडली बहन को बचपन वे बाबा और भाइयों का दगड़ी सुखपूर्वक बीते। सामान्य किसान का परिवार मां 60-70 साल पहली जन प्रथा होंदी छे कि नौनी ते घर बार देख करी विंकू ब्यो पगना कर देन छा। भागीरथी ते भी जीवन साथी की ढूंढ खोज करी गई। चांदपुर परगना का ही सुदूर डांडा मां बसूं रमणीक ग्वालखेत गांव मां भागीरथी को रिश्ता तय हुए। जीवन का दूसरा परिच्छेद मां अबोध भागीरथी का सीधा साधा वे बबों दगड़ी छलर कपट की कथा शुरू हुए। दरअसल मां वर नारायण पहली बेटी शादीशुदा छया जब ब्यो भेगे भागीरथी सौरास पहुंचे तब जानकारी मिले सीधा साधा लाटा वे बबों अपनों कपाल पकड़ दे ठगी पर अफसोस करदा रह गया। वर नारायण फौज मां छया दाना सयानों राय मशवरा करी ते बाटू खोजी कि ये ते विधि को विधान माना कै भी प्रकार की सिकवा शिकायत से परहेज करा। भागीरथी ते भी जमीन जायदाद मा पूरो हिस्सा किस्सा दिए जालू। भागीरथी की सौत अपना ही महत्मा जीवन बितौली ग्वालीखेत का कोड़ा पुंगड़ा सब भागीरथी की जिम्मेदारी भली। पंचों की इन राय पर सब सहमत हुए गेन जीवन मा पुंगड़ा पाटला घर बौन कोर बाछूर का दगड़ी भागीरथी अग्नि बढ़नी छई। पर एक और दुर्भाग्य भागीरथी का जीवन मां अचानक ऐ पड़े फौजी बनायण सीमा पर शहीद हुए गए। पेंशन पट्टा मां सौत को नौ छयो तो लोन तेल को जुगाड़ भी खत्म हो गयो। कभी कभी जिंदगी कितना विद्रूप क्रूर व कष्टप्रद हो जांदी। बाल विधवा गरीब वे बाबा लोन तेल नसीब नहीं छो पर द्वि भय छया चौन भागीरथी की हिम्मत टूटन नहीं दे। भागीरथी उठ खड़ी हुए वीन साहस करे पुंगड़ों में नाज गोर बाछुरों में मेहनत करे घी दूध वी का जीवन मां हमेशा रहन मुआरा पालियन शहद की मिठास भी सदनी रहे। मेहनत का दम पर अपना जीवन मां वीन रंग भरिया जिंदगी पट्टी पर वापस आ गए। पर सौर्या से ज्यादा मैत की माया छई सारा बार त्योहार वीते मैत मां खींच लांदी छया। भादो का महीना की पाती मंगशीर का महीने की बगवाल पूस का महीना का देवताओं का भंडारा सभी मां भागीरथी की मौजूदगी होंद छई। भय भौजा भतीजा भतीजी सब भागीरथी को इंतजार करता छया। रतुड़ा बिटी ग्वालखेत गांव की दूरी 15 मील का आसपास होंदी। बाल विधवा भागीरथी की आस औलाद नहीं छई वहां की कमी व अपना भतीजा भतीजों पर लाड़ प्यार करी पूरी कर दी छई। अपना भतीजों का अलावा पूरा गांव का नौनियाल भागीरथी का ओण पर खुशी मनांदा छया। फूफू फूफू की आवाज फूफू आगे सब वीते घेरी खुश होंदा छया। भय भौजा भी हमारी नंदा आगे हमारी नंदा आगे बोली ते वी का प्रति लाड़ जतौंदा छया। नंदाष्टमी पर रतुड़ा खंडूड़ा की पाती की अपनी अलग पहचान छई। पाती का त्योहार मां सप्त नया लौरा लता बनदा छया। बिचला चांदपुर मां कूड़ों मां लाल रंग को माटू लगदो छयो। फूफू को ओण से पहली मां का दगड़ी रत्नेश्वर महादेव का ऐंच बिटी मटखाणी बिटी लाल माटू लेते घर की साज सज्जा होंद छई। पुराना झुलनों की घसण काई का अग्नि आज का बेस किमिति पेंटिंग ब्रश भी कुछ नहीं छन। फूफू का इंजार मां पूरी बाल मंडली कई दिन पहली बिटी इंतजार कर दी छई। माते मने करी

स्कूल की भी छुट्टी कर देंदा छा। हम सबका लीडर ज्यादातर पीताम्बर दादा होन छा। वन तो दादा फौज में छया पर पाती माँ अक्सर छुट्टी लेकर ही रतोड़ा ऐ जान छया। ऊँका होन से पूरा वातावरण खुशनुमा हुए जान छो। खिलंदड़ मजाकिया दादा पूरी बाल मंडली माँ लोकप्रिय छया। तब खबरसार को एकमात्र साधन चिट्ठी पत्री होन छई। फूफू कवाली सब कयास ही लगोदा छा। पितामर दादा को आदेश चला फूफू आज आली। अनवाणी कहते हैं पूरी बाल मंडली पुंगड़ों बिटी छलांग लगेते धागड़ चौंधार और पलगाड़ तक पहुंच जानी छई। पलगाड़ का घटमा फूफू को इंतजार होन छो। सबकी नजर नहल का बाटा पर होन छ। कई मरतबा यन भी हुए कि वे दिन फूफू नहीं आ सके। पूरी टीम दिन भर इंतजार करी थे। शाम का वक़्त वापस आ गई। सब मायूस निराश रुआस अभी थे घर ओन छया। फिर अगला दिन सुबेरी अनवाणी का बाद फूफू की प्रतीक्षा। पलगाड़ का घटमा एक एक पल को इंतजार। आज भी नहीं होने रे फूफू पीताम्बर दा की रुआसी आवाज। तभी चमत्कार हो गए। बंसी दादा अचानक दिखे। पूरी बाल मंडली चिल्लाने लगी फूफू आ गए फूफू आ गए। ज्यादातर परखंडी की टीम होनी छे। ज्यादातर फूफू का दगड़ा बंसी दादा ही ऑन छा। उनकी अनुपस्थिति में और लोगों ते ऑन पर्दो छयो। बंसी दादा की पीठ पर है पिट्ठुआ और फूफू की पीठ पर कंडो यू पछाण छई। लंबी छरहरी फूफू हाथों में धागुला करोणों पर मुरकुला गौला में हासुली आंगड़ी और लावा कु वस्त्र विन्यास। फूफू का खजाना मा सप्ते कुछ न कुछ होन छयो। मौसम और ऋतु का हिसाब से बस के आज मा काखड़ी मुंगरी कार्तिक मा आंदी छे तो भमोरा अगर बसंत मा आंदी छे तो काफल। कुछ चीज तो हमेशा मिलती छई। मालो का पत्तों मा बंधियों जथुआ तिमला का पत्तों मा बंधी पाइस सांदण की परोठी मा दे कमोली मा घी और डब्बों मा सहित। मौसमानुसार साग भुज्जी जो बाल मंडली वक प्रतीक्षा करती छई उनको स्वागत लथुआ बिटी होन छयो। लथुआ कणका को पिसू दूध और घी का अद्भुत संयोग को मिष्टान होन छयो। मालू और तिमला का पत्तों की सुवास वीते और मैकोंदी छई। राज जात का बाटा मा पर्ण वाला ग्वाल खेत का अखोड़ भी फूफू का खजाना मा होन छया। बाल मंडली की संख्या ज्यादातर चार पांच ही होन छई पर कभी कभार 10-12 तक भी पहुंच जाती छे। कभी कभी भय भौजूं ते गौड़ी और बाछी की समोण भी आंदी छई। जिमण से पहली बंसी दादा का आदेश पर घास पात की भी व्यवस्था होंदी छई। दावत छकी ते घट बिटी घर की यात्रा शुरू होंदी छई। बंसी दादा का कुटियारा भी बंटदा छया। बंसी दा की कोली मा बाछी उनका पिसने गौड़ी कैमा घी की कमोली कैमा दही की परोठी के का हाथ पर लिंगुड़ा और कुथड़ा कुछ न कुछ सब बच्चों का हाथ में देन पड़ छो। नहीं तो रोन धोन को कार्यक्रम भी होन छो। ई वजह से फूफू का जितना भी कुटियारा मुटियारा छया वे तरह से वो बंधिया होन छा। चौंधार में सबसे पहली बड़ा जी जयसिंह जी भंडारी बोल दो छया। छोटी आगे फूफू को प्यार को नो छोटी भी छो। बैठ थोड़ी देर सुस्ते ली उनका वास्ता भी फूफू कुछ न कुछ समोण लौंदी छे। काफिला अग्नि बढ़नी ते धागड़ पहुंचदू छयो। तब वीर देवता की मंडोली फूफू की यात्रा को महत्वपूर्ण पड़ाव होंदु छयो। नैनी को मंगरो मंगरा ते भेंटण का वक्त वीका गलवाड़ों पर आंसू की बूंद कई बार दिखेंदी छई। जब तक फूफू मंगरो भेंटदी छई तब तक बंसीदा अपनो पतब्यूड़ो को आनंद लेंद छा। भागीरथी आगे की आवाज आंदी छे असली त्योहार तो परखंडी मा शुरू होन छयो। भाई भौज तो बोलदा छया कि हमारी नंद आगे हमारी नंद आगे। पूरी परखंडी मा चहल पहल और त्योहार को माहौल बन जान छो। फूफू ज्यादातर पाती का त्योहार मई मैत आंदी छई। भादों का महीना की नंदाष्टमी हरियाली खुशहाली काखड़ी मुंगरी साटी झंगोरा कौणी को त्योहार होंद। रोट और ब्यूड़ा ब्यूड़ा गेहूं ते अंकुरित करी ते बड़ाई जांद। फूफू नंदा का जागर भी अपना सुजला कंट्रीब्यूटी गानी छई। नंदा नैनी का गीत होन या बच्चों की लोरी या गढ़वाली खुदेड़ गीत फूफू का कंट्रीब्यूटी कांस की थकुली जन फुरदा छया।

0: गदरी रीट गरूड़ ने फबे ऑर्डर आयु जान जरूर। फूफू का सुरीला कंठ बिटी जब यू गीत फुर्दू छई तो पूर्व वातावरण गमगीन भी जान छयो। आज महसूस कर दू तो शायद अपना शहीद बरनारायण की याद भी ये गीत मा फूफू की घुली होंदी छई। आनो पखवाना या लोक जीवन की कथा फूफू का भंडार मा भरपूर छया। बच्चों की टोली घेरीते फूफू मा फरमाइश कर दी छई जीतू बगवाल और एड़ी आंचरियों की कथा। नौ बेणी नागिना परिवार की कथा रामी बौराणी वीर माधो सिंह भंडारी लोधी रिखोला वीर भट्टू की कथा। अपनी की औलाद निहोण का कारण मी की सारी ममता अपना भतीजा भतीजों पर उमर दी छई। घुगुती बासुदी क्या खांदी दूध भाती गांधा भगत मी की आवाज मा एक अदृश्य पीड़ा होंदी छई। शायद अपनी औलाद की कमी इन लोरी गैते पूरी कर दी होली। मी की पीड़ा और संघर्ष यूं ऊंचा ऊंचा पहाड़ों का जतना छन आम पहाड़ी महिला को संघर्ष और वेदना फूफू माँ दिखेंद छई। अब वह ई दुनिया में नीच पर आज जब भी पाती होंदी तो फूफू की याद ऐ जांदी। लोक जात राज जात मा हजारों नंद की गाथा और कथा दबी छन। फूफू का किरदार का द्वारा ऊँ सभी नंदाओं ते हमारो सत सत नमन।
1: तो दगड़ियों अभी आप सुनना चाहे श्री शंभू प्रसाद रतोड़ी के द्वारा गढ़ोली कहानी छोटी फूफू। और फूफू दगड़ियों सब की हुंद और फूफू नाम सुनी की हम थे कि दिशा ध्यानियों की याद आ जांद जो हमारे पहाड़क एक इन विरासत छन जो थे कि हमेशा हम थे कि मान सम्मान देन चाहो छ। किले की दिशा ध्यानियों को हमारे उत्तराखंडम बहुत बड़ो मान छ और वहाँ में फूफू भी आंद। तो दगड़ियों छू बातों के दगड़ अब धीरे धीरे मैं आप लोगों थे कि कुमाऊं की छोड़ ले जाओ लू और दया शंकर फुलारा की आवाज़ में सुनो लो एक सुंदर सी कुमाऊनी गीत।

0: पापा
1: लाइए
0: 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: तदगुण भी आप सुना छे रे बारा का दगुण माँ दया शंकर।

तारा क्या आवाज़ में आयु सुंदर सी कुमाऊनी गीत। और दगड़ियों जन की आप लोग देखण लग्या छा कि मौसम अदल बदल कनुच, जलवायु फट फट बदलनी च, और कभी घाम हो जानो च उसे बरखा हो जानी च, पता नहीं चलनुच कि मौसम कुछ चलनु। अब ये सोचना का भी विषय है कि इनके लिए होच, किले कि अगर इन लगातार होने रहा लो तो ये थोड़ा सा मानवीय जो जीवन च मनखियों जो जीवन च वे फर वे को असर पड़ोल, और जो कि बहुत अच्छो भी नहीं हुए सको। तो दगड़ियों हम तो सोचन पड़ोल कि मौसम इन झट झटाक फट फटा के लिए बदलनु च, किले कि पहले तो भी बदल छा पर इतगा नहीं बदल छा ये रफ्तार से जो रफ्तार अब पकड़ी मौसम की, और कुछ तो यातायात जो साधन है ना हमारे भी आवश्यकता से अधिक हमल जुटाए लेने, जैसे कि प्रदूषण भी बढ़ने लगे हों, और प्रदूषण बढ़ल तो एक सीधा सीधा असर जो है मौसम पर भी पड़ल हो, जलवायु पर भी पड़ल हो, गर्मी भी ज़्यादा होली और ठंड भी आप अचानक हो जली। तो ये हम तो थोड़ा देखना पड़ल हो कि हमारे आवश्यकता कदगा छ, जदगा यातायात साधनों के हमते आवश्यकता उदगह उपयोग में लड़े डाला बोटा, जदगा ज़्यादा से ज़्यादा हम लगे सकला वो हमारे हितम रालू। हम बार बार ग्राम जगत बैठे बोल दो कि डाला बोटो लगा हुआ, जब जब समय मिले आप लोगों को तो बखत मिले, जब हम खाल जमीन देखना चाहो डाला बोटो लगा दो। घर गाँव में भी अपने गाँव गुठियारे में जब जंद हो तो देखो भाई कखम कखम जगह जो हम अपना हिसाब से फलदार वृक्ष लगा दे कोई, और छाँव वाला कुछ इन वृक्ष लगा दे, जैसे कि अगले आने वाली पीढ़ी भी याद कर ली कि भाई पहले का लोगों कोई डाल लगे चाहिए, क्यों लेकिन डाल एक ही निशानी रह जाता कि जो अग्नि अग्नि तक चलत, और आने वाली जो पीढ़ी थी वो भी याद करत कि हाँ भाई छे चाहे कोई समझदार लोग जो कि जलवायु बचाई मौसम बचाई प्रकृति बचाए। कि लेकिन दगड़ियों हमारा जो पहले का पुराने लोग छाई उन जो संस्कृति विरासत या जो जमीन जगह पेड़ पौधा कुछ भी जो चीज़ संरक्षित राखी आज वो हमारे काम आना चाहिए, और अगर हम भी अपड़ आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छी चीज़ छोड़ जोला तो भलो आलू, और वो भी याद रखला कि हाँ भाई पुरख्या पुराना कुछ भला लोग छाई। तो दगड़ियों ध्यान रखा, और जब भी इन्हें फुने कखी भी घूमने को जाना छो या अपना आसपास में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग कर, जदगा कम कर सकले उदगा जलवायु परिवर्तन में भी लाभ मिलोलू, और मौसम अदल बदल पर एक जो असर छ वो पड़ल, जैसे कि जलवायु परिवर्तन बहुत फटफटाक झटझटाक निभालू वहाँ से की राहत मिल ली। और दगड़ियों अब यूँ छुई बातों की दगड़ धीरे धीरे में आप थली जो लो, चार भाई मासू के धरती जौनसार की छोड़, और भद्रु कश्यप की आवाज़ में सुनो लो एक सुंदर सी जौनसारी गीत।

0: तो दगड़े अभी आप सुना छाई भद्रु कश्यप की आवाज़ में यू सुंदर सी जौनसारी गीत। अब थोड़ी देर में आप सुन ले उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
1: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ।

0: स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीय।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी, अब तक 11 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चार धाम के दर्शन किए। पिथौरागढ़ जिले के कुमाऊं वार्ड में सीवर लाइन विस्तारीकरण कार्य का शुभारंभ, शहर की सीवरेज व्यवस्था मजबूत होगी। और हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ग्राम पंचायत भक्तनपुर आबिदपुर में चंद्रभागी मत्स्य सेवा केंद्र में संचालित रंगीन मत्स्य पालन क्लस्टर का निरीक्षण किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा। निजी क्षेत्रों में भी वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही लोगों को सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में वाहनों की संख्या को आधा करने का निर्णय लिया गया। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे घोषित किया जाएगा और जन सामान्य को भी इसके लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा परिवहन विभाग को सार्वजनिक बसों की सेवा और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जल्द ही प्रभावी नीति लाई जाएगी। नए सरकारी वाहनों की खरीद में 50% अनिवार्य तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। बैठक में पीएनजी कनेक्शन के संयोजनों को मिशन मोड में चलाने का फैसला किया गया। होटल, रेस्टोरेंट और सरकारी आवासों में पीएनजी के उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में विजिट माय स्टेट अभियान के माध्यम से घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने, मेरा भारत मेरा योगदान जैसे जन जागरूकता अभियान चलाने, मेड इन स्टेट अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने और सरकारी खरीद में मेक इन इंडिया नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से संतोष थपलियाल।
1: प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है, अब तक 11 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 4,91,000 से ज्यादा यात्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ यात्रा में सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। आज सुबह से ही केदारनाथ के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में यात्रियों की भीड़ जुटी रही। पुलिस ने लाइन लगाकर यात्रियों को केदारनाथ की ओर रवाना किया। श्रद्धालुओं को कतारबद्ध करते हुए सोनप्रयाग शटल सेवा पॉइंट पर भिजवाया गया, जहां से श्रद्धालुओं ने शटल सेवा से गौरीकुंड पहुंचकर केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान किया। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में चार धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री सुगमता से ऑफलाइन पंजीकरण करा रहे हैं। पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल का कहना है कि पंजीकरण केंद्र में आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कूलर, पंखों, पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें जरूरी दवा आदि भी दी जा रही है।
3: द्वार पंजीकरण केंद्र में अभी तक हमारे पास 9,000 से ऊपर का जो है आंकड़ा पार कर चुका है। व्यवस्थाएं की बात करते हैं तो हमने अपने स्तर पर जो है संपूर्ण व्यवस्थाएं जो भी एक यात्री को चाहिए, शौचालय से लेके पीने के पानी से लेके बैठने के लिए कूलर, पंखे सभी जो है, और यात्री बड़े खुश होकर के यहाँ पे जा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हमारे द्वारा की गई है।
1: वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आए श्रद्धालु संजय कुमार बंसल भी पंजीकरण व्यवस्था से काफी संतुष्ट नजर आए।
4: ये हरिद्वार में है, ऋषिकुल जगह ग्राउंड में, वहाँ व्यवस्था अच्छी है, पानी वगैरह सब सहायता है और इजी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है लोगों को, आराम से बैठने की कूलर वूलर भी लगे हैं, बैठ सकते हैं आराम से।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है, जबकि छात्राओं

0: का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: पिथौरागढ़ जिले के कुमाऊँ वार्ड में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित सिविल लाइन विस्तारीकरण कार्य का आज शुभारंभ किया गया। यह परियोजना पूरी होने के बाद लगभग 90 परिवारों और 451 से अधिक लोगों को सीवरेज कनेक्शन की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर मेयर कल्पना देवलाल ने कहा कि निराड़ा कुमाऊँ क्षेत्र में लंबे समय से सीवर लाइन की समस्या बनी हुई थी, जिसके चलते सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही थी और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि सीवर लाइन विस्तारीकरण से क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था मजबूत होगी और नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होंगी।
2: कुमाऊँ वार्ड में जो एक सिविल लाइन का काम होना था, आज उसका शुभारंभ किया गया, भूमि पूजन किया गया और इसमें जल निगम के द्वारा कल से ही काम हम लोग शुरू करवा देंगे, जिससे कि हमारी निराड़ा कुमाऊँ की जनता को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि रोड काफी टाइम से डैमेज थी और अब इसमें जल्द ही काम शुरू किया जाएगा, जिसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करूंगी।
0: हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज ग्राम पंचायत भक्तनपुर आबिदपुर में चंद्रभागी मत्स्य सेवा केंद्र में संचालित रंगीन मत्स्य पालन क्लस्टर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जिले का यह पहला मत्स्य क्लस्टर है जहां किसानों द्वारा रंगीन मत्स्य पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करते हुए आत्मनिर्भर बनाना है।
3: भादौरा ब्लॉक में और अन्य जगहों पर भी मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज यहाँ पर मत्स्य सेवा केंद्र, यहाँ पर ऑर्नामेंटल फिशरीज और आरएएस सेंटर का विजिट किया गया। जो हमारे परिश्रमी किसान हैं जो मत्स्य में अच्छा काम कर रहे हैं, पंचपाल जी और उनकी पूरी टीम, इनके द्वारा ऑर्नामेंटल फिशरीज में भी नया इनिशिएटिव लिया गया, उसको प्रमोट करने के लिए शासन से भी दिशा निर्देश प्राप्त है। उनको कैसे हम आगे प्रमोट कर सकते हैं जिला योजना के माध्यम से, भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से, उसका निरीक्षण किया गया। आगे इसकी प्लानिंग की जाएगी। अधिक से अधिक किसानों को मत्स्य पालन में जोड़ा जा रहा है ताकि उनकी आय में हो सके और साथ ही नए नए हमारी जो तकनीक है उनका प्रयोग किया जा सके, इसके लिए ही आज विजिट किया गया।
0: चमोली जिले में स्थित रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आगामी 18 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। मंदिर समिति और प्रशासन की टीम कपाट खोलने की तैयारियों को लेकर जुटी हुई है और ब्यौरा हमारे चमोली संवाददाता से।
4: 18 मई को चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है और तहसील प्रशासन की ओर से गोपीनाथ मंदिर परिसर में सुरक्षा को लेकर यहां पे जायजा लिया गया और स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं और समिति के जो लोग हैं उन सभी ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को काफी यहां पे तैयारियां की हैं और स्थानीय जो लोग हैं वो काफी उत्साहित कार्यक्रम को लेकर है और ये पहली बार होगा जब भूबे के मुख्यमंत्री चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के कपाट उद्घाटन के समय यहां पे पहुंचेंगे। आकाशवाणी के लिए सुरेंद्र रावत, चमोली।
0: शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अपवंचित व कमजोर वर्ग के बच्चों के दाखिले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने भटवाड़ी विकासखंड के अपवंचित व कमजोर वर्ग के बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ सीधा संवाद कर शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का लाभ हर पात्र बच्चे तक पहुंचना सुनिश्चित करे ताकि कोई भी बच्चा आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने 23 आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कूल बैग, ट्रैक सूट और जूते सहित अन्य आवश्यक शिक्षण सामग्री वितरित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी, अब तक 11 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए। पिथौरागढ़ जिले के कुमाऊँ वार्ड में सीवर लाइन विस्तारीकरण कार्य का शुभारंभ, शहर की सीवरेज व्यवस्था मजबूत होगी। और हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ग्राम पंचायत भक्तनपुर आबिदपुर में चंद्रभागी मत्स्य सेवा केंद्र में संचालित रंगीन मत्स्य पालन क्लस्टर का निरीक्षण किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कि भाई कन कना छो तुम कार्यक्रम में बढ़िया कना छो खराब कना छो या जू भी छे जू भी आपक विचार जन आप तो लगणु ग्राम जगत तो उन लेखू। और दगड़ियों हमर जो चिट्ठी पत्री को जो चिट्ठी को जो पता छे वो छ कार्यक्रम चिट्ठी पत्री ग्राम जगत अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून पिंच 248001। और दगड़ियों झट झटाक फटफटाक चिट्ठी को पता छ चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com। तो सरासर लेखो चिट्ठी और फटाफट भेजो हमको तो हम तो पता चल कि कण चलो ग्राम जगत कार्यक्रम। और दगड़ियों छुई बातों की दगड़ दगड़ जन कि हम हर बार बोल दो आप लोगों से कि भाई अपना बच्चों थे कि गढ़ली बोली भाषा सिखावा उनते समझावा उनते नया नया शब्द रोज आप संकल्प ले लियो कि भाई हमला अपने बच्चों थे कि गढ़ली के शब्द सिखाना आज या उनक समझ बोलन। अब तुम ये जब कहें भाषा बुना रह लिया और भाषा फूकना रह लिया तो उनका बड़े सिकुन गढ़ कुमाऊनी जौनसारी है ना तो उन समण अपड़ जो च गढ़वली या कुमाऊनी जौनसारी भाषा में जय भी क्षेत्र बैठा आप उन्हीं भाषा से बोला ताकि आपका बच्चा भी सीख ला कि भाई हमारे भाषा या छ इन हम बोल दिन गढ़वली यू गढ़वली शब्द यू छिन है ना जौनसारी शब्द यू छिन कुमाऊनी की छिन। और दगड़ दगड़ उत्तराखंड का जो विभूति छिन पहला का वो लोग जो उनके बड़ बड़ा अच्छा अच्छा काम करे छिन उत्तराखंड को और देश को उनके बारे में बतावा ताकि बच्चों के अंदर एक अलग किस्म का एक अच्छा संस्कार आला और जैसे कि एक अच्छो समाज बनोल। ये बात हम किले बुना छो आप सब लोग जाना छो कि भाई चौतरपुर बड़े कुछ ना कुछ उठपटांग खबर है जिन दिन आज वकीन हुए गया आज वकीन हुए और ये घटना के लिए होना छिन कि कखी ना कखी जो हमारा संस्कार छ ना हमारी जो शिक्षा छ वो कखी ना कखी कमी होनी ये तो साफ बात छ। तो हम ते की समझन पड़ो लो कि भाई हमारे बच्चे क्या कनो छ अगर वो मोबाइल भर भी देखो तो क्या देखो छ ध्यान लगे कि हम ते समझन पड़ो लो। पहले का लोग छाए कि पहले का लोग तो अपने अपने बच्चों के ध्यान ही नहीं रखता चाहे बोला अपना तो छोड़ा दूसरा बच्चों पर ध्यान ही नहीं रखता चाहे कि भाई कै बाटा जानो छो अरे कक जानो छो अगर गलत रास्ता पर जाऊँ तो पहले दुई थप्पड़ो को मरद छाए रो एक बार बोलता छाए घर में चल अ घर में जाए तब एक घर वो बताना चाहिए कि भाई आज भी वकील कनू छाए तो अब वो डर भाव भी खत्म हो गया। क्या छ समाज के प्रति हर एक व्यक्ति पहले संवेदनशील छ अब हम अपने बच्चों को संवेदनशील नहीं होना छो तो दूसरा क्यों होना मल तो इन छ कि थोड़ा सा जागरूक होना पड़े लो अगर आज जागरूक रह लिया तो बहुत शांति से और सुखपूर्वक रह लिया नहीं तो पता चलो कि आज तुम बच्चों बड़े मुखी ने फरकाया ला रुझ जाए कुछ कनो तब बाद तब पता चलो मुंडर हो जाओ तो वे मुंडर से बचना खातिर भी थोड़ा सा ध्यान दियाओ अपना आस पास जित का भी बच्चा छे ना और आपका जो अपना बच्चा छे ना उन पर ध्यान दियाओ कि भाई ये क्या कना छे ना कन कना छे ना कहीं दिशम जाना छे ना और ऊँ थे कि संस्कारवान बनावा ताकि एक बहुत बेहतरीन समाज हम बने सकला। तो यूँ छी बात हुई कि दगड़ हम दगड़ियों आप लोगों तक कि विजय सिंह सैलानी की आवाज़ में सुनोला एक गढ़ोली गीत।

0: त दगडियो अब मठ मठ करे कि बगत अग्नि बढ़ु छु और धीरे धीरे करे कि 6:50 होने वाला छन। तो थोड़ी देर में आप सुन लिया उत्तराखंड का गढ़लीमा प्रादेशिक समाचार।
1: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा
2: गांधी। नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में नेहा। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में ऊर्जा

0: और ईंधन बचतक हुई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी, अभी तक 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु करें चारधाम का दर्शन। केंद्र ने सोना सहित बाकी कीमती धातुओं का उत्पाद शुल्क में वृद्धि करी और हरिद्वार का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ग्राम पंचायत भगतनपुर आबिदपुर में चंद्रभागी मत्स्य सेवा केंद्र को निरीक्षण करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में ऊर्जा और ईंधन बचतक होनी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों ते बढ़ावा दिए जालो, निजी क्षेत्रों में भी वर्क फ्रॉम होम ते प्रोत्साहित करे जालो, दगड़ा ही लोगों ते सार्वजनिक परिवहन को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना खुणी प्रोत्साहित करे जालो। एक रिपोर्ट।
1: राज्य मंत्रिमंडल बैठक में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में वाहनों की संख्या अद्दा करने का निर्णय लिए गया। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे घोषित करे जाल और जन सामान्य भी यहाँ प्रति प्रेरित करे जाल। ये के अलावा परिवहन विभाग तय सार्वजनिक बसों की सेवा और क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिए गए। सरकार कर्मचारियों तय सार्वजनिक परिवहन उपयोग करने को प्रेरित करे जाल। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जल्द ही प्रभावी नीति ले जेली, नए सरकार गाड़ियों खरीद में 50% अनिवार्य तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ी होला। बैठक में पीएनजी संयोजन तय मिशन मोड में चलाना फैसला लिए गया। होटल रेस्टोरेंट और सरकार आवासों में पीएनजी उपयोग तय प्राथमिकता दिए जाए। बैठक में विजिट माय स्टेट अभियान के माध्यम से घरेलू पर्यटन तय बढ़ावा देने और मेरा भारत मेरा योगदान जन जन जागरूकता अभियान चलाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। आकाशवाणी देहरादून कुणी समाचार कक्ष बटे आशुतोष उनियाल।
0: प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी छ, अब तक 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने करीन चारधाम का दर्शन। वखी रुद्रप्रयाग जिला में स्थित केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़नी छ, अभी तक 4,91,000 से ज्यादा यात्रियों ने धाम का दर्शन करिया लेन। केदारनाथ यात्रा में सुरक्षा और यातायात का पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करे गए। आज सुबेर बटी केदारनाथ का मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में यात्रियों की भीड़ जुटी रहे। पुलिस ने लाइन लगे कि यात्रियों ते केदारनाथ जने रवाना करे, श्रद्धालुओं ते कतारबद्ध करी कि सोनप्रयाग शटल सेवा पॉइंट पर भिजवे जानुच। जख बटी श्रद्धालु शटल सेवा से गौरीकुंड पहुंचे कि केदारनाथ धाम को प्रस्थान करना छिन। चारधाम यात्रा पर आण वाला श्रद्धालुओं की सुरक्षा खोने स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद। देहरादून का मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मन बताए कि ऋषिकेश और हरबटपुर जो स्क्रीनिंग केंद्र बनया छिन उन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम 24 घंटा काम करनी छ। ऋषिकेश में अब तक 50 वर्ष से कम उम्र का 2,700 से ज्यादा और 50 वर्ष से अधिक आयु वाला करीब 4,309 यात्रियों की ओपीडी जांच करेंगे। स्क्रीनिंग का दौरान 436 यात्रियों की पहचान करेंगे जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन जन गंभीर बीमारियों से ग्रसित छा। ये के अलावा 22 यात्रियों ते आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस का माध्यम से त्वरित चिकित्सा सेवा प्रदान करेंगे।
2: इसी केस की बात करते हैं तो जो एमआरपी पे जो हमारी ओपीडी है वो 50 साल से कम लगभग 2760 लोग वहाँ पे आ चुके हैं। 50 साल से ऊपर वाले जो 4,309 लोग जो है एमआरपी सेंटर पे आ चुके हैं और इसमें से जो 436 लोग हैं करीब वो ऐसे थे जिनको कोमोबिडिटी थी, कोई ना कोई परेशानी थी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कार्डियक प्रॉब्लम या अन्य किसी गंभीर बीमारी से जो पीड़ित थे। और इसमें इसके अलावा जो 22 मरीज ऐसे भी आए जिनको कुछ ना कुछ इमरजेंसी थी और इमरजेंसी के तहत उनको करते हुए जो है वहाँ पे एम्बुलेंस के माध्यम से उनको एसपीएस ऋषिकेश में भी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध जो है उनको कराई गई।
0: केंद्र सरकार ने सोना और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़े याली जो आज बटी प्रभावी वेगिन। वित्त मंत्रालय ने बोली कि सोना और चांदी पर 5% और प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगलो। ये का अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति का अंतर्गत कीमती धातु का जो प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित करे गए। ये से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चलन वाला संकट का लोगों से सोना की खरीद से बचना की अपील करी छे।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जानो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।

0: नैनीताल जिला का हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा भीषण गर्मी का कार्यरत फील्ड कर्मियों और फायर वॉचर्स की सुरक्षा व सुविधा ते ध्यान में रखी कि पहली बार आधुनिक कूलिंग जैकेट उपलब्ध करेगे न। प्रभागीय वनाधिकारी कुंदन कुमारन बताए कि यू जैकेट अत्यधिक गर्मी में शरीर को तापमान नियंत्रित रखने में सहायक छे न। उन बोली कि ग्रीष्म ऋतु खासकर बणों में आग लगने की घटनाओं का दौरान फायर वॉचर्स और फील्ड स्टाफ ते दूरस्थ वन क्षेत्रों में काम करदा दो तेज घाम धुआं और आग को सामना कर पड़ दो यन में ऊते यू जैकेट से काफी राहत मिली।
1: हल्द्वानी वन प्रभाग के अंतर्गत हमने अभी जो हमारे फील्ड स्टाफ हैं और जो फायर वॉचर हैं जो वनाग्नि की रोकथाम में अभी काम कर रहे हैं उनके लिए एक कूलिंग जैकेट मंगाई है। ये विशेष रूप से डिजाइन की गई है। इसमें जो पावर ऑपरेटेड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी है जिसके कारण ये जो है बॉडी का टेम्परेचर कम करती है और जो हमारे फायर वॉचर हैं या जो फील्ड स्टाफ हैं जो जब वनाग्नि नियंत्रण करते हैं तो वहाँ तापमान अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में जो हीट स्ट्रेस है डिहाइड्रेशन है थकान है को कम करता है बॉडी को ठंडा रखता है तो ऐसी स्थिति में वो अपनी पूरी क्षमता के साथ वनाग्नि नियंत्रण के कार्यों को कर सकते हैं। इसमें जो हमारे चेक पोस्ट बैरियर पे भी जो हमारे फील्ड स्टाफ कार्यरत हैं गर्मी में तापमान बढ़ता है तो उनको भी जो है इसमें जो है हीट वेव और इसके दौरान तो उनको भी जो है ये उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वो भी जो है कार्य कुशलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।
0: वकी फील्ड में तैनात वन कर्मी राजीव जोशी ने बताया कि बणों में आग बुझोण और भ्रमण का दौरान ऊंथे यूं जैकेटों से लाभ मिलनो छे।
2: ये जैकेट फायर सीजन के लिए बहुत अच्छी है। जैसे काफी जैसे पहले हमको सामना करना पड़ता था आग लग गई है काफी गर्मी होती थी तो अब ये जो जैकेट आई है एयर कंडीशनर प्लस वेस्ट जैकेट है। जैसे ज्यादा अंदर गर्मी हो रही है पसीना आ रहा है तो इसमें बैटरी दी गई है और ये एयर कंडीशनर जैकेट है जिसमें दो पंखे लगे जो अंदर की गर्म हवा भी बाहर फेंक रही है और अंदर काफी ठंडा कर रही है और ये गर्मी से राहत देने के लिए काफी अच्छी है और काफी हल्की भी है जैकेट।
0: हरिद्वार का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज ग्राम पंचायत भगतनपुर आबिदपुर में चंद्रभागी मत्स्य सेवा केंद्र में संचालित रंगीन मत्स्य पालन क्लस्टर को निरीक्षण करी। उन बोली कि जिला को यू पहलू मत्स्य क्लस्टर च जख किसानों द्वारा रंगीन मत्स्य पालन करे जाणु च। उन बोली कि मत्स्य पालन ते बढ़ावा दियोणा को किसानों ते सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़े जाणु च जयकू ये को मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करी के आत्मनिर्भर बनोण च।
3: भादरस ब्लॉक में और अन्य जगहों पर भी मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज यहाँ पर मत्स्य सेवा केंद्र यहाँ पर ऑर्नामेंटल फिशरीज और आरएएस सेंटर का विजिट किया गया जो हमारे परिश्रमी किसान हैं जो मत्स्य में अच्छा काम कर रहे हैं पंचपाल जी और उनकी पूरी टीम इनके द्वारा ऑर्नामेंटल फिशरीज में भी नया इनिशिएटिव लिया गया उसको प्रमोट करने के लिए शासन से भी दिशा निर्देश प्राप्त उनको कैसे हम आगे प्रमोट कर सकते हैं जिला योजना के माध्यम से भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से उसका निरीक्षण किया गया आगे इसकी प्लानिंग की जाएगी। अधिक से अधिक किसानों को मत्स्य पालन में जोड़ा जा रहा है ताकि उनकी आय में हो सके और साथ ही नए नए हमारी जो तकनीक है उनका प्रयोग किया जा सके इसके लिए ही आज विजिट किया गया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में ऊर्जा और ईंधन बचत होनी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी अभी तक 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु करें चारधाम का दर्शन। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं का उत्पाद शुल्क में वृद्धि करी और हरिद्वार का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ग्राम पंचायत भगतनपुर आबिदपुर में चंद्रभागी मत्स्य सेवा केंद्र को निरीक्षण करे। ये का दगड़ा ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यो अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
4: यहाँ के दगड़ में थे दीपक रावत थे ग्राम जगत बेटे की आज्ञा देवा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

सभी किसान साथियों को दीपा बगासी का नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत में। किसान साथियों, किसी भी देश की असली ताकत वहाँ के नागरिकों से होती है, और जब समाज का हर वर्ग शिक्षा, रोजगार और सम्मान के साथ आगे बढ़ता है, तभी तो राष्ट्र विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुँचता है ना। इसी सोच के साथ भारत सरकार समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है अल्पसंख्यक कल्याण योजना, जिसका उद्देश्य देश के अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ना है। साथियों, भारत सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत 6 समुदायों को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया है। इनमें हमारे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी साथी लोग आते हैं। इस योजना के अंतर्गत सरकार अल्पसंख्यक छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित करती हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई तकनीकी कार्य, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसाय से जुड़े प्रशिक्षण शामिल हो सकते हैं। इनका उद्देश्य युवाओं को रोजगार योग्य बनाना और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। इस योजना में महिलाओं के नेतृत्व विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ ही विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको शिक्षा और व्यवसाय के प्रति जागरूक किया जाता है, इसके साथ ही आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ा जाता है। किसान साथियों, जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी लेते हैं एक संगीत में विराम और सुनते हैं ये लोकगीत।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: खुशहाल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान साथियों, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जैसे आधार कार्ड, आपका बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण और आपके शैक्षिक प्रमाण पत्र यदि आपके पास हो तो। श्रोताओ, इन योजनाओं की सही और आधिकारिक जानकारी के लिए आप भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट minorityaffairs.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो किसान साथियों, आज आपने जाना कि अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं किस प्रकार समाज के विभिन्न वर्गों को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का कार्य कर रही हैं। यदि आप या आपके आसपास कोई पात्र व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ लेना चाहता है तो आप आज ही इस जो हमने वेबसाइट आपको बताई उस पर जाकर सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, ये ध्यान रखिए कि सरकारी माध्यमों से ही आपको आवेदन करना है और इन योजनाओं का शीघ्र ही लाभ उठाएं। श्रोताओं, चर्चा का सिलसिला तो आगे भी बना ही रहेगा, लेकिन अभी वक्त हुआ है आज की भेंटवार्ता सुनने का, जिसका विषय है गन्ने की फसल में मई महीने में मुख्य कार्य। डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार से और इनसे बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी विकास चमोली।
4: किसान साथियों, आज हमारे बीच हैं कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, और आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब की गन्ने में इस समय हमारे किसान साथियों को कौन कौन से मुख्य कार्य करने हैं, क्योंकि गन्ने की फसल हमारी खेतों में खड़ी है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
5: धन्यवाद। धन्यवाद
4: डॉक्टर साहब। गन्ने की फसल में सामयिक कार्यों के बारे में हम बात करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे गन्ने की फसल अगर हमारे किसान साथी उगाते हैं, क्योंकि इसको व्यावसायिक दृष्टिकोण को लेकर किसान साथी उगाते हैं, तो अच्छी खासी आमदनी वो कमा सकते हैं।
5: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। और जैसे आप जानते हैं गन्ना जो है जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, और इसके साथ साथ हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों के लिए गन्ना एक जो है इनकी व्यावसायिक फसल है, और गन्ने से किसान भाई काफी आमदनी प्राप्त करते हैं, क्योंकि गन्ने से पैसे जो उसको मिले वो तो मिलता ही मिलता है, साथ ही उसके किसान भाइयों को वर्ष भर कम से कम 6 महीने उसको हरा चारा भी गन्ने से प्राप्त होता है। इसके साथ साथ गन्ने की से की जो डेयरी का जो उद्योग है वो भी उस गन्ने से उसका अच्छी प्रकार से चलता है। तो जैसे आपने बताया कि गन्ना एक व्यावसायिक फसल है, इसको हम इंडस्ट्रियल फसल भी बोलते हैं, और गन्ना एक किसान की कैश क्रॉप, उसके बारे में भी किसान भाइयों को ध्यान रख करके अपनी गतिविधियां जो है गन्ने में करनी चाहिए।
4: अब क्योंकि मई माह चल रहा है और लगभग हमारे किसान साथियों ने जो फरवरी मार्च के आसपास जिस गन्ने की बिजाई की है वो अच्छा खासा खेतों में खड़ा है। अब ये समय होता है डॉक्टर साहब की जैसे खाद उर्वरकों की मात्रा भी बिल्कुल, गन्ने बिल्कुल, में डालनी है, तो थोड़ा सा इस बारे में हमारे किसान साथी
5: देखो, अगर आपने अच्छी प्रकार से अच्छी फसल लेनी है तो हमें खाद और उर्वरक की जो हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर जो हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक जो विशेष रूप से जो ध्यान देने की जरूरत है वो हमें कोशिश करनी चाहिए, हम जो अपनी फसल है उसमें संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करें, अत्यधिक नाइट्रोजन का प्रयोग ना करें, क्योंकि किसान भाई अक्सर देखने को मिलता है कि नाइट्रोजन का जो प्रयोग जो है अत्यधिक करते हैं। जब अत्यधिक नाइट्रोजन का प्रयोग वो करते हैं तो पौधे में जो है लचीलापन आ जाता है। जब इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है गन्ने में तो उसमें कीड़े और बीमारियों का जो प्रकोप है वो ज्यादा होता है। तो मैं तो किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूंगा, किसान भाई जो खेत में अपने खादों का और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले तो कोशिश करें कि वो मृदा परीक्षण कराएं। अगर मृदा परीक्षण वो किसी कारणवश नहीं करा पाते हैं तो वो अपने खेत में कम से कम 150 से 180 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टर और 40 से 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टर जो जरूर दें। और इसमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी नाइट्रोजन की एक तिहाई मात्रा, फास्फोरस और पोटास की मात्रा पूरी मात्रा जो है बुवाई के समय किसानों ने दे दी होगी। इससे में हमें सिर्फ ये करना है कि जो नाइट्रोजन की 2/3 जो मात्रा जो बची है उसकी 1/3 मात्रा किसान भाई कल्ले बनते समय, जैसे आपने बताया कि फरवरी मार्च में जो गन्ना बोया गया है उसमें अब कल्ले बनने की स्थिति जो है आ गई है, तो इस समय अब 1/3 नाइट्रोजन जो किसान ने देनी है 50 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, जैसे मैंने 150 बताया उसमें से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन जो इस समय किसान भाई दे और सिंचाई करे या सिंचाई करने के बाद नाइट्रोजन का प्रयोग करे ताकि उसका समुचित प्रयोग जो है नाइट्रोजन का हो सके।
4: जी, सिंचाई की बात आपने कही क्योंकि अब गर्मी का प्रकोप भी बढ़ने लगा है और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि पर्याप्त फसलों को सिंचाई मिलती रहे, तो कब कब हमें अपने फसलों की सिंचाई करनी होगी?
5: देखो, अगर आपने अच्छी फसल लेनी है सबसे पहले तो हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारी फसल में जो पानी की कमी ना हो। फिर भी हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अत्यधिक सिंचाई भी फसल को नुकसान कर, और ये भी ध्यान रखें ज्यादा सिंचाई करने से भी बीमारियां और कीड़ों का प्रकोप जो है ज्यादा होता है। तो कम से कम भी 15-20 दिन के बाद एक सिंचाई किसान भाई जरूर करें, और अगर लग रहा है कि कहीं सूखे की अवस्था आ रही है, कहीं सिंचाई किसान भाई नहीं कर पा रहा है, तो उस स्थिति में भी हम क्या करें किसान भाइयों को इसका भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। उस स्थिति में ऐसा करना चाहिए कि जो पोटेशियम क्लोराइड MOP है उसके 0.5% उसका घोल बनाकर किसान जो है अगर अपने गन्ने के ऊपर उसका स्प्रे करता है तो उसको सूखा सहन करने की शक्ति हमारे फसल के अंदर बढ़ जाती है। तो ये भी एक तरीका है सूखे से बचाव करने के लिए, किसान भाई इसको भी अपना सकते।
4: जी, इसके अलावा खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या रहती है और आमतौर पर गन्ने की फसल में देखते हैं कि अनावश्यक ये उग आते हैं, तो इससे किस तरह से हमारी फसलों को बचाया जा सके?
5: बहुत ही अच्छा सवाल किया है क्योंकि इस समय जो है गन्ने की जो है गुड़ाई निराई जो चल रही है और जैसे आप देख रहे हैं कि अब जो लेबर की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, कभी कभी लेबर नहीं मिल पाती, तो ऐसे में अगर खरपतवार खेत में हो जाते हैं तो फसल का उसकी जो पैदावार पर जो विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मैकेनिकल और केमिकल दोनों प्रकार से जो हम खरपतवारों का नियंत्रण करें, क्योंकि मैकेनिकल खरपतवार नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इससे भूमि में वायु संचार अच्छा होता है।
4: जी,
5: जब वायु संचार अच्छा होगा तो भूमि में जो पौधा है उसकी जड़ों का विकास अच्छा होगा, पौधा स्वस्थ होगा, तो ये भी जरूरी है। लेकिन फिर भी जब हमारे पास लेबर की समस्या है या हम लेबर मैकेनिकल विधि से हम खरपतवार नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में हमें कोशिश करनी चाहिए कि दो प्रकार का खरपतवार हमारे खेत में आते हैं, एक तो चौड़ी पत्ती वाले और एक हमारे जो है संकरी पत्ती वाले। संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए हम कोशिश करें जो हमारा एट्राजीन है वो हम बुवाई के समय भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बुवाई के समय हमने उसका प्रयोग किया तो संकरी पत्ती वाले जो हमारे खरपतवार है वो नहीं आते, इसकी 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर जो पर्याप्त होती है। लेकिन उसके बाद अगर जैसे इस समय मई का महीने में अगर चौड़ी पत्ती वाले या कोई दूसरे खरपतवार आते हैं तो इसके लिए 2,4-D सोडियम साल्ट उसकी 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के दर से अगर हम प्रयोग करते हैं तो जो खरपतवारों की जो समस्या है उसका निदान हम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने मैकेनिकली आपको बताया, कम से कम एक निराई गुड़ाई तो किसान भाई जरूर करें ताकि खेत में वायु संचार अच्छा रहे।
4: जी, इसके अलावा क्योंकि फसल अब उस अवस्था में है डॉक्टर साहब कि कई सारे रोग और कीट हमारी फसलों को प्रभावित करते हैं, जैसे हम देखते हैं चोटी बेधक है या इसके अलावा कुरमुला कीट है और भी तरह तरह के कीट हैं जो हमारी फसलों में लगते हैं, हमारी फसलों को नुकसान करते हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे।
5: जो आपने कीटों का अभी नाम लिया है
4: जी,
5: इनका प्रकोप अब जो है हमारे खेतों में हो रहा है। खासतौर से आपको मैं इससे पहले एक और बात ये भी बताना चाहूंगा

0: क्योंकि जब से हमने ये जो अर्ली वैरायटीज हैं जिनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है होता है, जब से हमने इनका प्रयोग किया है, जैसे हमारी CO0238 वैरायटी है, इसमें हमारा जो टॉप बोरर का प्रकोप बहुत होता है। इसके अलावा भी जो हमारी और भी नई नई वैरायटी है जिनको हम अर्ली वैरायटी बोलते हैं, जिसमें हाई शुगर कंटेंट होता है,
1: जी
0: इनमें भी हमारे रोगों और कीटों का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो इनमें हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि गन्ने में बहुत सारे कीट और रोग आते हैं। खासतौर से अगर हम कीड़ों की बात करें तो गन्ने में लगभग 120 प्रकार के कीड़े लगते हैं, लेकिन
1: बिल्कुल
0: उसके अलावा 5-7 तो ऐसे कीड़े हैं जो हमारे क्षेत्र में या हमारे जहाँ पे हमारी किसान भाई हमारी इस वार्ता को सुनेंगे उनको नुकसान पड़ता है। इसमें सबसे पहले हमारा आता है अर्ली शूट बोरर आता है, हमारा
1: अच्छा
0: चोटी बेधक आता है, हमारा स्टेम बोरर आता है, हमारा रूट बोरर आता है। हमारे बोरर ही कई प्रकार के जो है गन्ने में लगते हैं। इसके अलावा हमारा हमारा पायरीला इसमें लगता है। पायरीले के साथ साथ इसमें हमारा जिसको हम काला चिट्टा बोलते हैं वो भी गन्ने में लगता है। तो इन सबके नियंत्रण के लिए हमें कोई अच्छा इंसेक्टिसाइड लेकर के इनका हमें नियंत्रण करने की आवश्यकता है। खास तौर से जैसे अब हमारा मई का समय चल रहा है और हमें विशेष रूप से यह ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि हमारे जो कीड़े हैं इनकी कौन सी अवस्था चल रही है। क्योंकि जैसे अभी हम टॉप बोरर की बात कर रहे हैं या हम अंकुर भेदक की हम बात करें, जब तक हम इनकी जो जो इनकी पीढ़ियां हैं अगर उनके बारे में हमें पता नहीं है तो हम इनका कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमें इनको अंडे देने से लेकर के और उसके जो जो इसका एडल्ट होता है
1: जी
0: उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, और ये अकेले केमिकल के द्वारा हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें हमें दो तीन तरह की जो हमारी क्रियाएं हैं वो अपनानी पड़ेंगी। इसमें मुख्य रूप से कल्चर मेथड होते हैं, मैकेनिकल
1: अच्छा
0: मेथड होते हैं, और दूसरे हमें जो केमिकल्स हैं के द्वारा हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो जैविक मेथड है इसको भी हमें इसमें प्रयोग करना चाहिए। अगर मैं गन्ने में टॉप बोरर की बात करूं तो गन्ने में टॉप बोरर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो हमें वहां पे जो फेरोमोन ट्रैप्स हैं उनको स्टैब्लिश करना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप से
1: अच्छा
0: क्या होता है कि जो उसका मेल है वो अब उसकी तरफ को आकर्षित होता है, और जो वो जब वो फेरोमोन ट्रैप्स में हमें कोई कैरोसिन या क्लोर पारिस वगैरह कोई दवाई डाल के उसमें रखनी चाहिए ताकि जो वो मेल वहां आता है उसकी गंध सूंघ के और वो उसमें गिरे और वो मर जाए। इससे क्या होगा कि हमारी जो फीमेल है उनमें आपस में मीटिंग नहीं होगी, जब मीटिंग नहीं होगी तो आगे की जो उनकी पीढ़ियां हैं वो नहीं बनेंगी।
1: जी
0: इसी प्रकार से फेरोमोन ट्रैप के अलावा हमारा एक और रहता है जिसको हम प्रकाश प्रपंच बोलते हैं, उसको भी अगर हम अपने खेत के आसपास लगाएं तो उससे भी हमारे जो उसमें एडल्ट जो है हमारे चाहे मेल हो या फीमेल दोनों उसकी प्रकाश की तरफ आते हैं, और उसमें भी जब वो गिर जाते हैं जो लाइट ट्रैप उसमें लगा हुआ है उनको भी वहां से हम कलेक्ट करके कहीं उनको नष्ट कर सकते हैं या वो उनको किसी घोल में डाल करके उनको मार सकते हैं। एक ये तरीका आता है। इसके अलावा हमारे ट्राइकोगामा कार्ड्स
1: जी
0: इनको भी हमारा लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनमें से कुछ परजीवी निकलते हैं जब ये अंडे देते हैं, ये हमारी टॉप बोरर या जो हमारे दूसरे भी बेधक हैं, तो ये हमारे जो परजीवी हैं उनके अंडों को नष्ट कर देते हैं। तो ये भी हमें जो इस प्रकार के मेथड भी हमें अपनाने चाहिए, तभी हम गन्ने में जो ये बोरर हैं या इस प्रकार के जो कीड़े हैं इनका कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें फिर भी रासायनिक विधि से भी हमें जो बच जाता है रासायनिक विधि से भी हमें कंट्रोल करना जरूरी है,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: वह भी जरूर समय समय पर उसका स्प्रे करना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए भी बहुत सारी दवाइयां हैं अवेलेबल हैं। इसके लिए जो आजकल सबसे बढ़िया जो दवाई आ रही है वो है क्लोरांट्रिनिरी प्रोले, जिसको हम आम भाषा में क्रोजन भी बोलते हैं। तो इसकी मात्रा लगभग 18.18.5 SC में ये आती है, और इसकी लगभग 375 मिलीलीटर जो दवाई है वो लगभग 1000 लीटर पानी में घोल करके इसका स्प्रे करने से, स्प्रे भी इसको कैसे करें, जहां से स्टैंप निकलता है जिसको हम कॉलर बोलते हैं वहां से हम ड्रेंचिंग करें, मतलब उसका थोड़ा फुवारा मोटा करके ड्रेंचिंग करके उसके पौधों के ऊपर, और ड्रेंचिंग करने के बाद आप सिंचाई कर दे तब जा करके इसका अच्छा कंट्रोल हम कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, इस दवाई का सबसे बड़ा खासियत यह है अगर आपने इसको मई में करा तो ये जून जुलाई अगस्त 3-4 महीने तक आपके फसल को इस प्रकार के जो बोरर हैं इनसे प्रोटेक्शन आपको देती है। तो अगर आप इस प्रकार से जो IPM है एक पूरा मॉड्यूल अगर आप लगाएंगे तो आप निश्चित रूप से गन्ने में जो बीमारियां हैं वो जो कीड़े हैं उनसे छुटकारा आप पा सकते हैं। इसके अलावा कुछ थोड़े एक आध उसमें रोग भी आता है, रोगों में तो सबसे पहले जैसे हम लाल सड़न रोग की हम बात करते हैं, ये भी आजकल हमारी फसलों में बहुत आ रहा है। इसमें तो सबसे पहले बात जो करने की है ये ध्यान रखना कि जो बीज हम रहे हैं उसमें इस बीमारी का प्रकोप ना हो, बीज को आप स्वस्थ बोएं। इसके अलावा बीज को आप ट्रीट करके बोएं, चाहे आप जैविक विधि से ट्रीट करें जैसे हम ट्राइकोडर्मा से भी ट्रीट कर सकते हैं या हम वेविस्टीन से भी ट्रीट कर सकते हैं। इससे भी हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि बीज को ट्रीट करके बोएंगे तो ये बीमारियां जो हैं आगे कम आती हैं। लेकिन जो मेरी मेन बात है इसमें आपको बताने की यही है कि हम बीज का जो सिलेक्शन है वो ठीक करें, और क्योंकि रेड सडन जो बीमारी है अगर एक बार ये आ जाती है फिर इसका कोई मतलब ऐसा प्रभावी उपचार नहीं है जो इसको खत्म किया जाए, फिर तो ये

0: सीड ट्रीटमेंट के द्वारा या सीड को बदल करके हम बीमारी से जो है छुटकारा पा सकते हैं।
1: लाल सड़न रोग के अलावा जैसे आप दो तीन और रोगों की बात बता रहे थे, और कौन से रोग ज्यादा हमारी फसलों पे लगते हैं?
0: इसमें जैसे पोका बोइंग आ जाता है आजकल, जैसे अप्रैल मई में से लेकर जुलाई अगस्त तक जो पोका बोइंग आएगा, इसके लिए कोपरोक्सीक्लोराइड का हम जो प्रयोग कर सकते हैं। कोपरोक्सीक्लोराइड जो दवाई है, 3 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में घोल करके अगर हम स्प्रे करेंगे तो इससे हम प्रभावी नियंत्रण जो है इसे पा सकते हैं। इसके अलावा एक बीमारी इसमें और आता है, इसको हम स्मट बोलते हैं, गन्ना कंडवा बोलते हैं, विपटेल स्मट इसको हम बोलते हैं, जो चाबुक जैसी उसकी एक नली सी निकलती है गन्ने के बीच में से। उसके लिए हम कोशिश करें कि भाई इस प्रकार के जो प्रभावित जो पौधे हैं उनको वहां से हटा करके कहीं मिट्टी में दबाएं, ताकि वो बीमारी जो है हमारे दूसरे पौधों पर पे ना फैले। हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर इस प्रकार के पौधों को निकाल करके उसको नष्ट कर दें तो हम ये बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं।
1: इसके अलावा डॉक्टर साहब, जैसे कि मिट्टी चढ़ाने का काम भी किसान साथी करते हैं, तो वो किस समय उनको करना चाहिए?
0: देखो, मिट्टी चढ़ाने का काम जो है, जब हम अपने गन्ने की निराई गुड़ाई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, तो लास्ट गुड़ाई जब हम करते हैं, हमने अपना खेत से खरपतवार निकाल दिए, लास्ट गुड़ाई हम कर रहे हैं, तो उस समय हमको मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। और मिट्टी चढ़ाने से एक तो ये फायदा होता है कि जो गन्ने में जो लोजिंग होती है, जो गन्ना गिर जाता है, एक तो वो कम होता है, और जो पानी देने की जो हम प्रक्रिया है वो भी हमारी आसान हो जाती है। हम मिट्टी चढ़ाने से एक काम और कर सकते हैं, अगर पानी की कमी है तो हम अल्टरनेट नालियों में भी पानी लगा करके अपने पानी को बचा सकते हैं। तो ये भी एक किसान भाई इससे ये फायदा जो ले सकते हैं।
1: तो चलते चलते जिन किसान साथियों ने इस समय गन्ने की फसल लगाई है, उनको क्या सलाह आप देना चाहेंगे?
0: मेरी सलाह अपने किसान भाइयों को यही है कि गन्ना एक हमारे क्षेत्र की बहुत प्रमुख फसल है, इससे किसान हमारे काफी आमदनी इससे लेते हैं। तो जब आप अपने खेत में गन्ने की बुवाई करते हैं, एक तो आप जो प्रजातियां हैं उनका अच्छा सिलेक्शन करें, जो ज्यादा पैदावार देने वाली हैं, जैसे COE 15-03 है, इसको भी आप लगा सकते हैं, CO 13-235 लगा सकते हैं, पन्नगर की हमारी COP 12-221 प्रजाति है, उसको भी आप लगा सकते हैं। जो नई नई प्रजाति हैं, जो थोड़ा जिनमें बीमारियां कम हैं, उनको लगाने से जो किसान भाइयों को अच्छा लाभ होगा। और अपना भूमि का शोधन जरूर करें किसान भाई, क्योंकि जब तक हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति अच्छी नहीं रहेगी, तब तक चाहे आप जो भी केमिकल डालें, तब तक हम जो है बीमारियां कीड़ों से नहीं बचा सकते। इसके लिए हम अपने खेत में ट्राइकोडर्मा का जरूर प्रयोग करें। ट्राइकोडर्मा एक बहुत ही अच्छा भूमि शोधक हमारा बायोफंजिसाइड है। इसके लिए आप 40 किलोग्राम गोबर की खाद लेकर के उसमें आप 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा मिला करके उसको 7-8 दिन रख के, जब उसमें नीली नीली फफूंदी जैसी बन जाती है, कहीं छाया में उसको रख के रोज शाम के टाइम हल्का हल्का पानी डाल के, आपको दिखेगा कि 7-8 दिन बाद उसमें नीली नीली फफूंदी बन जाती है। फिर इसको आप जब खेत में निराई गुड़ाई कर रहे हो या आप रास जुताई कर रहे हैं, उसको कैसे भी हो, बुवाई के समय या मतलब सिंचाई के समय या गुड़ाई के समय, जब भी आप इसको कर सकते हैं, इसको अपने खेत में आप मिलाएं, ताकि जो हमारे जो लाभदायक जीवाणु हैं, जो ट्राइकोडर्मा में जो हमारे जीवाणु हैं, उनकी संख्या हमारे खेत में बढ़े और बाहर से जो बीमारी फैलाने जीवाणु जो है उनको हमारे जीवाणु रोक सकें। तो ये भी एक आप बीमारी से बचने का एक अच्छा तरीका आपके पास हो सकता है।
1: तो डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान साथियों को दी कि किस तरह से गन्ने की फसल से अच्छी पैदावार ले जा सकती है। आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार से, जिसका विषय था गन्ने की फसल में मई महीने में मुख्य कार्य, और इनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी विकास चमोली। किसान साथियों, ये तो आप सब जानते ही हैं कि अच्छी फसल पाने के लिए जरूरी है सही समय पर सही तैयारी, खेत की जुताई से लेकर बीज के चयन, खाद प्रबंधन और वर्षा जल संरक्षण तक हर छोटी तैयारी आपकी खेती की सफलता तय करती है। और अब जब मानसून का मौसम नज़दीक है, इसी के साथ शुरू हो जाती है खरीफ फसलों की तैयारी। यदि आप समय रहते इसकी तैयारी कर लेते हैं तो बेहतर उत्पादन के साथ अच्छी आमदनी भी आपको ज़रूर मिलेगी। खरीफ की फसलों में मुख्य रूप से धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, कपास, मूंगफली के साथ ही विभिन्न दलहनी फसलों की खेती की जाती है, ये तो आप सब जानते ही हैं। अच्छी पैदावार के लिए खेत की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले खेत की आप लोगों को गहरी जुताई करनी है, पुराने खरपतवार को निकालना है और फसल के अवशेष को भी हटा लेना है। फिर अपने खेत को आप लोगों को समतल करना है, और हाँ, जल निकासी की उचित व्यवस्था भी आप लोगों को अपने खेत में ज़रूर करनी है, ताकि वर्षा का अतिरिक्त जल खेत में जमा ना हो। किसान साथियों, अच्छी फसल अच्छे बीज पर निर्भर करती है, इसलिए हमेशा प्रमाणित और अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का ही चयन करें। बुवाई से पहले बीज उपचार अवश्य करें, जिससे फसल को प्रारंभिक रोगों से बचाया जा सके।

0: किसान साथियों, मिट्टी की जांच करवाना भी आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसके बाद ही आप अपने खेत में उर्वरकों का सही मात्रा में उपयोग कर पाएंगे, जिससे न केवल आपकी फसल को सही पोषण मिलेगा बल्कि आप पर रासायनिक खाद का अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा और आपके खेत की मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बनी रहेगी। तो देखा आपने कितने फायदे हैं मृदा परीक्षण के, है ना? और चर्चा का सिलसिला आगे जारी रहेगा, लेकिन अभी सुनते हैं ये लोग गीत।
1: Yeah.

किसान साथियों, बरसात के मौसम में खरपतवार ज़्यादा ही मात्रा में बढ़ने लगते हैं, इसलिए समय समय पर अपने खेत का निरीक्षण करें और खरपतवार को तुरंत निराई गुड़ाई करके निकाल दें। इस मौसम में फसलों में कीट व रोग लगने की संभावना भी ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप कीट या रोग अपनी फसल पर देखें तो तुरंत उसका उपचार करें या फिर कृषि विशेषज्ञों की सलाह लें और उनके बताए अनुसार ही दवाई का छिड़काव करें। किसान साथियों, अगर आपके इलाके में अच्छी वर्षा होती है तो वर्षा के जल को संरक्षित करें और यदि आपके यहाँ वर्षा अनुमानित से कम होती है तो समय समय पर फसलों की सिंचाई करें। अब तो आप अपने मोबाइल पर घर बैठे ही अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग या कृषि विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं और साथ ही मौसम का हाल भी जान सकते हैं। किसान साथियों, यदि आप वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर खरीफ फसलों की तैयारी करें तो उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ आप अपनी खेती को अधिक लाभकारी बना सकते हैं और आज की जानकारियाँ से आपको लाभ अवश्य पहुँचा होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। तो आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमें अपने पत्रों व संदेशों के माध्यम से ज़रूर सूचित करें। हमारा पता है, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा, केंद्र निदेशक, आकाशवाणी देहरादून, पिन कोड 248001। श्रोताओं, अगर आप भी अपने पसंद के लोकगीत व रागनियाँ सुनना चाहते हैं तो हमें शुक्रवार को 1:30 से 2 बजे के बीच हेलो लोक मंजरी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जाएगी। आप 7088001382 पर कॉल करके अपनी पसंद की फरमाइशी लोकगीत या रागनी सुन सकते हैं। तो अब अपनी साथी दीपा बगासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: किसान साथी अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 7:30 हुए हैं। श्रोता आप सुनेंगे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के दगड़ मी ज्योति जोशी। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

0: की अध्यक्षता में भई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में ऊर्जा और ईंधन बचत तक लीजिए जरूरी फैसल ली गई। प्रदेश में चारधाम यात्रा व्यवस्थित रूपल चलने एल तले 11 लाख है जा श्रद्धालुओं चारधामक दर्शन करी। केंद्रीय सोनक दगड़ दुहर महंगी धातुओं उत्पाद शुल्क में वृद्धि की और हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षितल ग्राम पंचायत भक्तनपुर आबिदपुर में चंद्रभागी मत्स्य सेवा केंद्र जाँच करी। अब समाचार विस्तारल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में भई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में ऊर्जा और ईंधन बचत तक लीजिए जरूरी फैसल ली गई। अब सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा दी जाल। निजी क्षेत्रों में ले घर बटी काम करहू प्रोत्साहित करी जाल। दगड़े लोगों को सार्वजनिक परिवहनक ज्यादा उपयोगक लीजिए कही जाल। एक रिपोर्ट।
1: राज्य मंत्रिमंडलक बैठक में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के ब्याण में वाहनों की संख्या के अधिक करने का निर्णय लियो। हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे घोषित करी जाल और जन सामान्य के एक लीजिए प्रेरित ले करी जाल। एक अलावा परिवहन विभाग के सार्वजनिक बसों की सेवा और क्षमता बढ़ोने के लिए निर्देश दी गयी। सरकारी कर्मचारियों के सार्वजनिक परिवहन उपयोग लीजिए प्रेरित करी जाल। इलेक्ट्रिक वाहनों की जल्द ही प्रभावी नीति लाई जाली। नई सरकारी वाहनों की खरीद में 50% अनिवार्य तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन हॉल। बैठक में पीएनजी कनेक्शनों के संयोजन के मिशन मोड में चलोनक फैसल ली गयो। होटल रेस्टोरेंट और सरकारी आवासों में पीएनजी के उपयोग के प्राथमिकता दी जाल। बैठक में विजय माई स्टेट अभियान के माध्यमल घरेलू पर्यटन के बढ़ावा देन और मेरा भारत मेरा योगदान जस जन जागरूकता अभियान चलोनक दगाड़ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय ले ली गयी। आकाशवाणी देहरादून लीजिए समाचार कक्ष बैठे ममता पांडे।
0: प्रदेश में चारधाम यात्रा व्यवस्थित रूपल चलने एल ताले 11 लाख है ज्यादा श्रद्धालुओं चारधामक दर्शन कर हैली। वहीं रुद्रप्रयाग जिला में स्थित केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ते जाने एल ताले 4,91,000 है ज्यादा यात्रियों धामक दर्शन कर हैली। केदारनाथ यात्रा में सुरक्षा और यातायात तक भल इंतजाम करी गई छन। आज राती बटी केदारनाथक मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में यात्रियों की भीड़ लागी रहे। पुलिस लाइन लगे बेर यात्रियों को केदारनाथ और भेजो। श्रद्धालुओं को लाइन में लगे बेर सोनप्रयाग शटल सेवा ठौर में भेजी जानो। जा बटी श्रद्धालु शटल सेवाल गौरीकुंड पुजबेर केदारनाथ धाम लीजी जानी। चारधाम यात्रा में 19 श्रद्धालुओं की सुरक्षा लीजी स्वास्थ्य विभाग ले पूरी तरह बटी तैयार छू। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार सरमाल बता कि ऋषिकेश और हरबतपुर में बनाई गई स्क्रीनिंग केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम 24 घंटा काम करने। ऋषिकेश में एल ताले 50 वर्ष है कम उम्र 2,700 है ज्याद और 50 वर्ष है ज्याद उम्र वाल लगभग 4,309 यात्रियों की ओपीडी जाँच कर ली। स्क्रीनिंग का वक्त 436 यस यात्रियों की पहचान करी गई जिनको शुगर और हाइपरटेंशन जैस गंभीर बीमारियां छी। यह के अलावा 22 यात्रियों को आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस के माध्यम झट चिकित्सा सेवा दी गई।
2: इसी केस की बात करते हैं तो एमआरपी पे जो हमारी ओपीडी है वो 50 साल से कम लगभग 2760 लोग वहाँ पे आ चुके हैं। 50 साल से ऊपर वाले जो 4309 लोग जो है एमआरपी सेंटर पे आ चुके हैं और इसमें से जो 436 लोग हैं करीब वो ऐसे थे जिनको कोमोबिडिटी थी, कोई ना कोई परेशानी थी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कार्डियक प्रॉब्लम या अन्य किसी गंभीर बीमारी से जो पीड़ित थे। और इसमें इसके अलावा जो 22 मरीज ऐसे भी आए जिनको कुछ ना कुछ इमरजेंसी थी और इमरजेंसी के तहत उनको करते हुए जो है वहाँ पे एम्बुलेंस के माध्यम से उनको एसपीएस सीसी केस में भी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध जो है उनको कराई गई।
0: केंद्र सरकार सुन और दुहर महंगे धातुओं में आयात शुल्क बढ़े हेलो जो आज बटी शुरू है गो। वित्त मंत्रालय को कि सोना और चांदी में 5% और प्लैटिनम में 5.4% आयात शुल्क लागल। यह के अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के भीतर महंगे धातु प्रयोग करी जानवल उत्प्रेरक में 4.35% आयात शुल्क तय करी जरो। यह पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी एशिया में चलनवार संकट कारण लोगों ते सोनी खरीदणक लीजिले कह राखी। नैनीताल जिला हल्द्वानी वन प्रभाग बटी भारी घाम में काम करनी फील्ड कर्मियों और फायर वॉचर्स की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखबेर पहली बार नई कूलिंग जैकेट उपलब्ध कराई गई छन। प्रभागीय वनाधिकारी कुंदन कुमारल बता कि यो जैकेट ज्यादा गर्मी में शरीरक तापमान नियंत्रित रखने में सहायक छू।

0: उन्होंने कहा कि रिउड़ी दिन खास करके जब वन में आग लगने की घटनाओं बखत फायर वाचर्स और फील्ड स्टाफ को दूरस्थ वन क्षेत्रों में काम करने बखत भीषण गर्मी धूं और आगक सामना करन पड़ू। यस में उनको यो जैकेटल मस्त आराम मिलल।
1: हल्द्वानी वन प्रभाग के अंतर्गत हमने अभी जो हमारे फील्ड स्टाफ हैं और जो फायर वाचर हैं जो वनाग्नि की रोकथाम में अभी काम कर रहे हैं उनके लिए एक कूलिंग जैकेट मंगाई है। ये विशेष रूप से डिजाइन की गई है, इसमें जो पावर ऑपरेटेड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी है जिसके कारण ये जो है बॉडी का टेम्परेचर कम करती है और जो हमारे फायर वाचर हैं या जो फील्ड स्टाफ हैं जो जब वनाग्नि नियंत्रण करते हैं तो वहाँ तापमान अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में जो हीट स्ट्रेस है, डिहाइड्रेशन है, थकान है, इसको कम करता है, बॉडी को ठंडा रखता है तो ऐसी स्थिति में वो अपनी पूरी क्षमता के साथ वनाग्नि नियंत्रण के कार्यों को कर सकते हैं। इसमें जो हमारे चेक पोस्ट बैरियर पे भी जो हमारे फील्ड स्टाफ कार्यरत हैं गर्मी में तापमान बढ़ता है तो उनको भी जो है इसमें जो है हीट वेव और इसके दौरान उनको भी जो है ये उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वो भी जो है कार्य कुशलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।
2: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: वहीं फील्ड में नियुक्त वनकर्मी राजीव जोशील बता कि जंगलों में आग बुझूण और घुमणक बखत उनको यो जैकेटल लाभ मिलनो।
3: ये जैकेट फायर सीजन के लिए बहुत अच्छी है। जैसे काफी जैसे पहले हमको सामना करना पड़ता था आग लग गई है, काफी गर्मी होती थी तो अब ये जो जैकेट आई है एयर कंडीशनर प्लस बेस्ट जैकेट है। जैसे ज्यादा अंदर गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है तो इसमें बैटरी दी गई है और ये एयर कंडीशनर जैकेट है जिसमें दो पंखे लगे जो अंदर की गर्म हवा भी बाहर फेंक रही है और अंदर काफी ठंडा कर रही है और ये गर्मी से राहत देने के लिए काफी अच्छी है और काफी हल्की भी है जैकेट।
0: हरिद्वारक जिलाधिकारी मयूर दीक्षितल आज ग्राम पंचायत भक्तनपुर आबितपुर में चंद्रभागी मत्स्य सेवा केंद्र में चलनी रंगीन मत्स्य पालन क्लस्टरक जांच करी। उन्होंने कहा कि जिला की ओ पहली मत्स्य क्लस्टर छू जहाँ किसानों बटी रंगीन मत्स्य पालन करी जानो। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देना के लिए किसानों को सरकार एक अलग अलग योजनाओं थे जोड़ी जानो और यह का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करवेर उनको आत्मनिर्भर बनून छू।
4: बहादुरा ब्लॉक में और अन्य जगहों पर भी मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज यहाँ पर मत्स्य सेवा केंद्र, यहाँ पर ऑर्नामेंटल फिशरीज और आरएएस सेंटर का विजिट किया गया। जो हमारे परिश्रमी किसान हैं जो मत्स्य में अच्छा काम कर रहे हैं पंचपाल जी और उनकी पूरी टीम, इनके द्वारा ऑर्नामेंटल फिशरीज में भी नया इनिशिएटिव लिया गया, उसको प्रमोट करने के लिए शासन से भी दिशा निर्देश प्राप्त है। उनको कैसे हम आगे प्रमोट कर सकते हैं जिला योजना के माध्यम से, भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से, उसका निरीक्षण किया गया, आगे इसकी प्लानिंग की जाएगी। अधिक से अधिक किसानों को मत्स्य पालन में जोड़ा जा रहा है ताकि उनकी आय में हो सके और साथ ही नए नए हमारी जो तकनीक है उनका प्रयोग किया जा सके, इसके लिए ही आज विजिट किया गया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में भई राज्य मंत्रिमंडल एक बैठक में प्रदेशम ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए जरूरी फैसला ली गई। प्रदेश में चार धाम यात्रा व्यवस्थित रूपल चलने एल ताले 11 लाख है ज्यादा श्रद्धालुओं चार धाम दर्शन करी। केंद्र सुनक दगड़ दुहर महंगी धातुओं उत्पाद शुल्क में वृद्धि की और हरिद्वारक जिलाधिकारी मयूर दीक्षितल ग्राम पंचायत भक्तनपुर आबितपुर में चंद्रभागी मत्स्य सेवा केंद्र जांच करी। यह कदगड़ी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।

FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:40 होने को हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, हसरत जयपुरी की शब्द रचना, शंकर जयकिशन का संगीत और फिल्म थी आरजू। आइए अब सुनवाते हैं आपको अजनबी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी की शब्द रचना को संगीत दिया है RD बर्मन ने।

0: दादी वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस चमक जाओ।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 7:50 होने को हैं। आइए सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून का विशेष कार्यक्रम राज्य दर्शन।
1: श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति के साथ मैं योशिता पांडे। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे राज्य दर्शन की। राज्य दर्शन में हम आपको ले चलेंगे मंदिरों में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं बाबा मधमहेश्वर के मंदिर में। उत्तराखंड के हिमालयी अंचल में स्थित मधमहेश्वर मंदिर आस्था, प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अद्भुत संगम है। पंच केदारों में द्वितीय केदार के रूप में प्रतिष्ठित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी रहस्यमयी पौराणिक कथाओं तथा मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की शरण में आए

तो भगवान उनसे रुष्ट होकर विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए। मदमहेश्वर में भगवान शिव की नाभि के रूप में दर्शन होते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आत्मिक शांति की तलाश में आने वाले साधकों के लिए भी एक विशेष आकर्षण रखता है। समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियों और हरे भरे बुग्यालों से घिरा हुआ है। यहाँ पहुँचने के लिए अंतिम चरण में कठिन लेकिन रोमांचक ट्रैक करना पड़ता है, जो श्रद्धालुओं के धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेता है। यात्रा के दौरान घने जंगल, कलकल बहती नदियां और पहाड़ों की शांत वादियां मन को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। मदमहेश्वर मंदिर की वास्तुकला भी अत्यंत प्राचीन और आकर्षक है। पत्थरों से निर्मित यह मंदिर उत्तराखंड की पारंपरिक शैली को दर्शाता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग श्रद्धालुओं के लिए गहन आस्था का केंद्र है। यहाँ सुबह और शाम की आरती के समय वातावरण मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठता है, जो हर आने वाले को एक अलौकिक अनुभव प्रदान करता है। यहाँ का एक विशेष आकर्षण है बूढ़ा मदमहेश्वर, जो मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित एक ऊंचा स्थल है। वहां से चौखंबा पर्वत श्रृंखला का विहंगम दृश्य दिखाई देता है, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय विशेष रूप से मनमोहक होता है। ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति स्वयं ईश्वर की आराधना कर रही हो। मदमहेश्वर की यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्म खोज की एक अनूठी यात्रा है। यहाँ की शांति, निर्मलता और प्राकृतिक सौंदर्य हर व्यक्ति को भीतर तक स्पर्श करता है। यह स्थान हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ किया गया प्रयास ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुँचाता है। तो आइए इस पावन स्थल की यात्रा करें और भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन को नई ऊर्जा सकारात्मकता से भर दें। मदमहेश्वर केवल मंदिर नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो जीवन भर हमारे साथ बना रहता है। मदमहेश्वर मंदिर की यात्रा सीधी साधी नहीं है, यह एक आध्यात्मिक ट्रैक है जिसमें सड़क और पैदल यात्रा दोनों शामिल हैं। अगर आप सही प्लानिंग करें तो यह यात्रा बहुत सुगम और यादगार बन सकती है। अगर आप भी मदमहेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप मदमहेश्वर मंदिर तक पहुँचेंगे, चलिए आपको बतलाते हैं। सबसे पहले आपको उत्तराखंड के प्रमुख प्रवेश द्वारा ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंचना होगा। यहां से सड़क मार्ग द्वारा यात्रा शुरू होती है। ऋषिकेश से आप देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होते हुए ऊखी मठ पहुंचते हैं। यह पूरा सफर लगभग 7 से 8 घंटे का होता है और रास्ते में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के सुंदर संगम के दर्शन होते हैं। ऊखी मठ वही स्थान है जहां सर्दियों में केदारनाथ की पूजा होती है, इसलिए इसका धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। ऊखी मठ से आगे सड़क मार्ग द्वारा आप रांसी विलेज तक जाते हैं, जो मदमहेश्वर ट्रैक का बेस कैंप माना जाता है। अब असली यात्रा शुरू होती है, करीब 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक। रांसी से चलते हुए पहला पड़ाव गोंडार आता है। रास्ते में घने जंगल, छोटे छोटे पुल और पहाड़ी झरने आपका स्वागत करते हैं। इसके बाद बंटोली पहुंचते हैं, जहां मध्यम स्तर की चढ़ाई शुरू होती है। यहां से आगे खारकी और नानू जैसे छोटे पड़ाव आते हैं, जहां आप रुककर आराम कर सकते हैं। अंतिम चरण में चढ़ाई थोड़ी कठिन हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप मदमहेश्वर मंदिर के पास पहुंचते हैं, सामने बर्फ से ढकी चौखंबा पर्वत श्रृंखला का अद्भुत दृश्य आपकी सारी थकान मिटा देता है। अगर पूरा प्लान देखें तो इसे आमतौर पर 3 से 4 दिनों में पूरा किया जा सकता है। पहले दिन ऋषिकेश से ऊखी मठ या रांसी, दूसरे दिन रांसी से गोंडार या बंटोली, तीसरे दिन मदमहेश्वर मंदिर तक पहुंचकर दर्शन और चौथे दिन वापसी। यात्रा का सबसे अच्छा समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर तक का माना जाता है, जब मौसम साफ रहता है और ट्रैक सुरक्षित होता है। अगर आप मदमहेश्वर में आना चाह रहे हैं और रुकने की व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर होमस्टे या धर्मशाला मिल जाते हैं, में खाने की एक सामान्य व्यवस्था भोजनालय के तौर पर मिल जाती है। और अब बात करते हैं दूसरे पर्यटन स्थल की। चलिए हम आपको लेके चलते हैं कार्तिकेय स्वामी के मंदिर में। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित कार्तिक स्वामी मंदिर एक ऐसा पावन स्थल है जहां आस्था, त्याग और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय को समर्पित है, जिन्हें युद्ध के देवता के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक

0: कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के सामने यह शर्त रखी कि जो पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर लौटेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर तुरंत यात्रा पर निकल पड़े, जबकि भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर उन्हें ही संपूर्ण ब्रह्मांड मान लिया। इस प्रकार गणेश विजयी हुए। जब कार्तिकेय को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर अपना शरीर त्याग दिया और अपनी अस्थियां इस स्थान पर समर्पित कर दी। कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान कार्तिकेय की अस्थियों की ही पूजा की जाती है, जो इसे अन्य सभी मंदिरों से विशिष्ट बनाती है। यह मंदिर एक संकरी पहाड़ी धार पर स्थित है, जहाँ से चारों ओर फैली हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। विशेष रूप से सूर्योदय के समय जब पहली किरणें बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ती हैं, तो पूरा वातावरण स्वर्णिम आभा से भर उठता है। यहाँ की शांति और निर्मलता हर आने वाले को भीतर तक स्पर्श करती है। मंदिर तक पहुँचने के लिए अंतिम चरण में लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, जो कानक चौरी नामक स्थान से शुरू होता है। यह मार्ग घने जंगलों और खुले बुग्यालों से होकर गुजरता है, जहाँ हर कदम पर प्रकृति की सुंदरता आपका स्वागत करती है। रास्ता अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन ऊंचाई के कारण यह यात्रा रोमांच और श्रद्धा का अद्भुत मिश्रण बन जाती है। कार्तिक स्वामी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और आंतरिक शांति की अनुभूति का केंद्र है। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है कि मानो समय थम गया हो और मन पूरी तरह प्रकृति और ईश्वर के सानिध्य में विलीन हो गया हो। तो आइए सिद्धिविधाम की यात्रा करें, और भगवान कार्तिकेय के त्याग और तपस्या की गाथा आज भी गूंजती है, और जहां हर श्रद्धालु को एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है। अगर आप भी कार्तिक स्वामी मंदिर की यात्रा प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कार्तिक स्वामी मंदिर के दर्शन करना, तो सही रूट प्लान क्या है, चलिए आपको बतलाते हैं, जिससे कि आप 1 या 2 दिन में अपना पूरा ट्रिप प्लान कर सकते हैं। यात्रा की शुरुआत होगी ऋषिकेश या हरिद्वार से, और यात्रा मार्ग द्वारा आपको देवप्रयाग, श्रीनगर होते हुए रुद्रप्रयाग पहुंचना होता है। यहाँ लगभग 6 से 7 घंटे का सुंदर पहाड़ी सफर है। रुद्रप्रयाग से आगे आपका गंतव्य होता है कनक चौरी, जो कार्तिक स्वामी ट्रैक का बेस पॉइंट है। यह दूरी लगभग 40 किलोमीटर है और सड़क अच्छी बनी हुई है। यहाँ आप टैक्सी या अपनी गाड़ी से आसानी से पहुँच सकते हैं। कनक चौरी से मंदिर लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है, और यह ट्रैक मध्यम से आसान श्रेणी का लगभग 1.5 से 2 घंटे में पूरा किया जा सकता है। रास्ता सीढ़ीनुमा और साफ सुथरा है, जो घने जंगलों और पहाड़ी धार से गुजरता है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, हिमालय की चोटियां धीरे धीरे आपके सामने खुलती जाती हैं। ट्रैक के अंत में आप कार्तिक स्वामी मंदिर पहुंचते हैं, जो एक संकरी पहाड़ी धार पर स्थित है, और चारों तरफ का 360 डिग्री दृश्य चौखंबा, नंदा देवी और अन्य हिमालय शिखरों का प्राकृतिक सौंदर्य आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। अगर रुकने की बात की जाए तो कानक चौरी में आपको बेसिक होम स्टे और धर्मशाला आप ले सकते हैं, जिससे कि आप आराम से ठहर सकते हैं, यात्रा सुलभ और सुगम हो जाती है। यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का माना जाता है, जब आसमान साफ रहता है और हिमालय के दृश्य सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं। कम समय में प्रकृति, रोमांच और आध्यात्मिकता का पूरा संगम आपको देखने को मिलता है। तो श्रोताओं, राज्य दर्शन में आज सिर्फ इतना ही। अगले अंक में किसी नए सफर पे आपको लेके चलेंगे। तब तक के लिए मुझे कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून का विशेष कार्यक्रम राज्य दर्शन, FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं श्रीमती नीलम गुरुंग से अंग्रेजी वार्ता। वार्ता का विषय है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप एंड सेल्फ केयर।
2: टुडे आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट समथिंग दैट ऑफन गेट ओवरलुक्ड इन आर बिजी लाइव्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप एंड सेल्फ केयर। इन आर फास्ट पेस्ड वर्ल्ड वी टेंड टू ग्लोरिफाई प्रोडक्टिविटी, late nights and constant hustle, but the truth is that without proper rest and care for ourselves, our bodies and minds cannot function at their best. Sleep is not simply a passive state of doing nothing. It is an active process during which our bodies repair tissues,

की आवाज थी ऋतुश्री शुक्ला की। श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं विविध कलाकारों के गाए भजन। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और साथियों का गाया यह भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में अभी आपने सुनी विविध कलाकारों की भजन गायकी। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शैलेंद्र कुमार और लता की आवाज में कार्यक्रम का ये पहला गीत, आनंद बख्शी का गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और फिल्म का नाम है बॉबी।

ये आवाजें थी शैलेंद्र कुमार और लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी के गीत को संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम बॉबी। आइए अब सुनते हैं समीर का लिखा गीत, नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया, फिल्म दामिनी का कुमार शानू और साधना सरगम के युगल सुर में।

लीजिए अब सुनिए गुमराह फिल्म से महेंद्र कपूर और आशा भोसले के युगल स्वर में साहिर का लिखा गीत। गीत को संगीतबद्ध किया है रवि ने।

0: महेंद्र कपूर और आशा के युगल सुर में अभी आपने ये गीत सुना। श्रोताओं, फिल्म गुमराह के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।
1: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242
0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतरराज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वर यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों

0: का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व से, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जाँच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज

0: ने दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit,
2: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
1: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि चार यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
1: The visit to the four European countries.
2: चार यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
1: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से तीन भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
1: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकार

0: चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support price, MSP, of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi,

0: चर्चा का विषय है।
1: दुनिया की नब्ज पश्चिम एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मुज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।

0: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मूज की मौजूदा स्थिति है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
1: आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मूज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मूज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी एक का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
0: पश्चिमी एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
2: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चले, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा।
0: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये 3 सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त हैं?
3: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहां खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे, और उसका भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे

0: वो दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और हम इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPRs बोलते हैं वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पर पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है।
1: जी
0: और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं
1: जी
0: और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, ईरान, इनके लिए आवश्यक होता है भारत अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहां सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक अहम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पर जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35,000 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36,000 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का, तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है। और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन, अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए। बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई, बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा, आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए, जो इंडिया अगेन

0: ये सोने पे सुहागे की तरह है।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: ये हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है, इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में भी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हर एक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पे, विश्व की अर्थव्यवस्था पे, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है, उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है। एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध जैसे क्वाड के अंदर है उसको, साथ में इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय रही रहने वाला है, उस सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए, जो इस समय सरकार का

0: सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत उन गिने चुने देशों में है, खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में, जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं, लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद, 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं, तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए, हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है। तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री की ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद यह है, दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खुल के जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए। उनके विचार जो है वो आम आदमी से साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड as India is to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by strong policy frameworks and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: जी, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है, उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहाँ जाना है और 2070 तक कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी है, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसके यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन के सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लेट से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती है, तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाय चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें। तो और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगी। तो मैं सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है, तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की, और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
4: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते, जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
0: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं या ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है, लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए यह है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको यह भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा ये जब भी युद्ध समाप्त होता है, ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो मुझे लगता है युद्ध तो है लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
5: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उभरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
6: चर्चा का विषय है। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.5 MHz पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दून लाइब्रेरी एवं रिसर्च सेंटर में आयोजित संगीत संध्या पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 साल पूर्ण होने पर आज शाम 4 बजे देहरादून के दून लाइब्रेरी में आयोजित शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीत संध्या के भव्य आयोजन की ये खास रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति रमेश चंद्रा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज देहरादून के दून लाइब्रेरी में शाम 4 बजे शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीत संध्या का भव्य आयोजन किया गया। संगीत और सुरों से सजे संध्या ने श्रोताओं को भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा से रूबरू कराया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके बाद रागों की गंभीरता और उपशास्त्रीय संगीत की मधुरता ने उपस्थित श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कहीं बंदिशों की गूंज सुनाई दी तो कहीं ठुमरी व दादर गायन और मधुर संतूर वादन की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया।
1: आकाशवाणी देहरादून द्वारा आज दिनांक 13 मई 2026 को शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीत संध्या में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे कर रहा है, इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज आकाशवाणी देहरादून द्वारा शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीत संध्या आयोजित की जा रही है। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है दीप प्रज्वलन सिंह।

0: को साक्षी मानकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: दूरदर्शन उत्तराखंड के उपनिदेशक कुलभूषण कुमार ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम संबंधी अपने विचार साझा किए।
2: आकाशवाणी के गौरवपूर्ण 90 वर्ष पूरे होने पर ये कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसके साथ ही जो हमारी इस आकाशवाणी की गरिमामय श्रोतागण है, जो जिनके माध्यम से हम आकाशवाणी के माध्यम से आपस में परिवार की तरह जुड़े हुए हैं, उनका भी सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आकाशवाणी की परंपरा जो है संगीत के माध्यम से भारतीय संस्कृति और जो हमारी लोक ये पद्धति है शास्त्रीय संगीत की, जो हमें एक सुकून देती है, उसके लिए आप श्रोतागण उनका बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत। और इसकी प्रस्तुति कलाकार करेंगे, उनका आप उत्साह वर्धन करेंगे। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आज दून पुस्तकालय सभागार में आयोजित शास्त्रीय और उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में हमारे साथ आज कार्यक्रम में उपस्थित रहे मुख्य अतिथि हेमंत बी आड़े, निदेशक भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून से। तो जानते हैं इन्होंने क्या कहा कार्यक्रम को लेकर।
3: आकाशवाणी पिछले 90 दशक से भारत की आवाज रहा है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक आकाशवाणी की भूमिका अतुलनीय रही है। 90 वर्षों की यह उपलब्धि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। आकाशवाणी ने हमारे संगीत की विरासत को पुष्पित, पल्लवित और संरक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी द्वारा आयोजित संगीत कार्यक्रम केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि आत्मा की भाषा है। संगीत मन को शांति ही नहीं बल्कि जीवन को नई ऊर्जा भी प्रदान करता है।
1: हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्री आर के बनवारी, उपनिदेशक जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड से उपस्थित रहे। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा।
4: इस तरह के आयोजन लोगों में संगीत के प्रति जागरूकता करने, संस्कृति और संगीत से जुड़े रखने में मददगार साबित हो रहे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो हमने 80s में जब शुरू किया था, बचपन में जब खेलते थे या हम सुनते थे, तो हमारे पास सिर्फ मनोरंजन का साधन सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी था, जिसमें हम लोग गाने सुनते थे और दर्शकों को ये पता भी नहीं होगा उस समय मूवीज़ पिक्चर जो है हम संडे को वेट करते थे कि भाई संडे को कब मूवी आएगी और हम सुनेंगे। जिस तरीके से पूरे देश को एकत्र किया हुआ है आकाशवाणी ने लगातार 90 सालों से, उसके लिए उनको बहुत बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, धन्यवाद।
0: देहरादून के एक सांगीतिक परिवार में जन्मी युवा कलाकार कुमारी शरण्या जोशी, मात्र 3 वर्ष की उम्र में गायन के क्षेत्र में इन्होंने कदम रखा। अपनी माता श्रीमती नीलू जोशी एवं पिता श्री असीम जोशी की अनुप्रेरणा से एवं अपनी दादी स्वर्गीय श्रीमती विनोद जोशी की देखरेख में शरण्या ने गायन के माध्यम से आगे बढ़ती रही। 5 वर्ष की उम्र में से लेकर अभी तक देहरादून की प्रसिद्ध संगीत शिक्षक श्री उत्पल सामंत जी से शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय संगीत तीनों ने बारीकियां सीखी। शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय संगीत में आपने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिनमें प्रमुख है आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता, सुरकला संगम, क्लासिकल वर्ड्स ऑफ इंडिया आदि। दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम दर्जे में उत्तीर्ण हुई और वर्तमान में आप आकाशवाणी में शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय संगीत की बी हाई ग्रेड कलाकार हैं। संगीत जगत के जाने माने कलाकार पंडित राजन साजन मिश्र, पंडित स्वप्न चौधरी, पंडित अरिंदो चटर्जी, पंडित बीजू महाराज, सोनू निगम आदि के सम्मुख अपनी प्रस्तुति देकर इन्होंने प्रशंसा प्राप्त की है। देश के अनेक शहरों में आपने प्रस्तुति दी है, जिनमें कोलकाता, चंडीगढ़, पंजाब, मुंबई, लखनऊ आदि प्रमुख रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप प्रस्तुत करने जा रही हैं राग खमाज पर आधारित ठुमरी, राग मिश्र पीलू पर आधारित दादरा एवं राग पहाड़ी झिझोटी पर आधारित चैती। आकाशवाणी की ए ग्रेड तबला वादक श्री प्रदीप डे की संगीत की यात्रा मात्र 6 वर्ष की उम्र में कोलकाता की सनामधन्य तबला वादक एवं शिक्षक पंडित कानाई दत्त के शिष्य पंडित काशीनाथ चक्रवर्ती के मार्गदर्शन से शुरू हुई। सन 1990 से कोलकाता के सुप्रसिद्ध तबला शिक्षक पद्मभूषण पंडित ज्ञान प्रकाश घोष के शिष्य पंडित गोविंद घोष जी के सानिध्य में तबले की आपने बारीकियां सीखी। आपने देश के विभिन्न मंच पर एकल वादन के साथ साथ सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका विदुषी शिप्रा गुहा, सितार वादक स्वर्गीय पंडित सौमित्र लाहिड़ी, सुप्रसिद्ध ख्याल गायक पंडित राजन मिश्र एवं पंडित साजन मिश्र, ख्याल गायक उस्ताद रजा अली खान आदि के साथ तबले की संगत की है। और साथ में हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शरण्या जोशी के साथ संगत कर रहे हैं माहिर अहमद। माहिर अहमद अल्पायु से ही पिता श्री मुन्ने खां से इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। आकाशवाणी की ए ग्रेड ख्याल गायक श्री ऋत्विज पंत के देखरेख में आपने गायन के क्षेत्र में श्री गुरुराम राय विश्वविद्यालय देहरादून से स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। गायन के अतिरिक्त ऋषिकेश के पंकज सुहास से तबले की शिक्षा प्राप्त की। आपने गायन, तबले के अतिरिक्त क्लोरिनेट, सैक्सोफोन, बांसुरी और हारमोनियम वादन में भी महारत हासिल की है। हारमोनियम वादन में आप आकाशवाणी की विग्रेट कलाकार हैं। तो आज के इस कार्यक्रम का हम आगाज करने जा रहे हैं और आज की हमारे शास्त्रीय गायन की कलाकार हैं शरण्या जोशी।
5: आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आकाशवाणी को, रॉबिन सर को, सर को हमारे सर बैठे हैं यहाँ पे, और आप सबसे ही इजाज़त लेते हुए मैं आज गाना प्रस्तुत करूँगी खमाज में ठुमरी, जो मेरे गुरुजी ने कंपोज करी है और आशा करती हूँ सबको पसंद आए। धन्यवाद।

0: शरण्या जोशी ने उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत ठुमरी और दादरा की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। उनकी मधुर आवाज और भावपूर्ण गायन ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अभी आपने जिनकी प्रस्तुति सुनी, हमारे साथ है शरण्या जोशी। जानते हैं उनसे किस प्रकार का अनुभव रहा उनका?
1: मेरा बहुत ही सुंदर अनुभव रहा, खासकर कि जो मेरे साथ तबले पे थे, मेरे साथ हारमोनियम पे थे, तानपुरे पे थे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज, क्योंकि मैं देहरादून से हूँ और देहरादून में प्रोग्राम करना मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी गर्व की बात है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हुए हैं और इसी तरह से हमारी भारत की शान रही है रेडियो स्टेशन, और आगे चल के भी इस तरह से ही शान बरकरार रहे। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस।
2: तो कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर पार्थ राय चौधरी से संतूर वादन, और आपके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर प्रदीप्त देव।

पार्थ रॉय चौधरी ने संतूर वादन से वातावरण को सुरमय बना दिया। संतूर की मधुर ध्वनि ने पूरे सभागार में एक अलग ही संगीतात्मक अनुभूति पैदा की। संगत कलाकार के रूप में प्रदीप डे ने तबले पर और माहिर अहमद ने हारमोनियम पर संगत किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि आकाशवाणी ने अपने 90 वर्षों के सफर में भारतीय संगीत, संस्कृति और साहित्य को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी रेडियो लोगों की भावनाओं और संस्कारों से जुड़ा एक विश्वसनीय माध्यम बना हुआ है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों और शहर के गणमान्य लोगों ने भाग लिया तथा कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना की। और इसी के साथ ही आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आज शाम 4 बजे देहरादून की दून लाइब्रेरी में आयोजित शास्त्रीय एवं शास्त्रीय संगीत संध्या के भव्य आयोजन की रेडियो रिपोर्ट यहीं संपन्न होती है। अब मुझे यानी प्रियंका जैना को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे आज शाम 4 बजे दून लाइब्रेरी में आयोजित शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीत संध्या के भव्य आयोजन की ये खास रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर प्रियंका जैना का, प्रस्तुति रमेश चंद्रा।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दून लाइब्रेरी एवं रिसर्च सेंटर में आयोजित संगीत संध्या पर आधारित रेडियो रिपोर्ट FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कुछ रिश्ते आवाज से बन जाते हैं, कुछ एहसासों से सज जाते हैं। जो लोग दिल से याद करते हैं वह हर फरमाइश में मुस्कुरा जाते हैं। आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को प्रणाम नमस्कार। भारती आनंद की ओर से श्रोताओं, आपकी पसंद के गीतों का यह खूबसूरत सिलसिला यूं ही चलता रहेगा ठीक 11 बजे तक। दिल से निकली हर फरमाइश पहुंचेगी आपके दिल तक। बस आज की इस महफिल में आपका और हमारा साथ बना रहे, कभी गीत बनकर और कभी याद बनकर। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपकी फरमाइश के गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपना पूरा पता हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। नंबर है 7088000731 7088000731। और चलिए कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं इस फरमाइशी गीत के साथ। इस गीत की फरमाइश हम तक पहुंची है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी रॉय दुबिहा निवेदा जिला गाजीपुर से, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय। साथ ही फरमाइश हम तक पहुँची है हमारे श्रोता हैं पंजू सराई संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, असद अंसारी। श्रोता है हमारे आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा। फरमाइश हम तक पहुंची है शांति निवास लेहगांव रेलवे जिला अमरावती महाराष्ट्र से कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष कुरहाड़े, दीपक कुरहाड़े की। और फरमाइश हम तक पहुंची है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाज शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी की। आप सबकी फरमाइश पर डीजे सुनिए कार्यक्रम में ये पहला गीत।

श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, और साथ ही फरमाइश हम तक पहुंची है परी महल कासगंज से आबाद खान, नवील खान, अल्फा खान, एम असलम सैफी, इल्मा खान, मास्टर जाहिद अली की। और फरमाइश करता है हमारे श्रोता साहिना प्रवीण, फातिमा, खुशबू, आयजा, मोहम्मद अदीब, मजरूर अली, आप हैं खालापार मुजफ्फर नगर से, साथ ही गांव और डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर की फरमाइश हम तक पहुंची है। फरमाइश करता है पायल, गीता, दीपा, शिवानी, सुषमा, सुनीता, पूजा, हंसी, आयुष, योगेश, हरीश, दीपक, शिब्बू, आप हैं नैनीताल उत्तराखंड से। और फरमाइश करता है हमारे श्रोता नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौशीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम हंसारी। साथ ही फरमाइश करता हमारे श्रोता हैं अनारकली बाजार जगराव से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव। श्रोता हमारे सुन रहे हैं हमें रहाट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर और पूरा रामेकर परिवार। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता की फरमाइश हम तक पहुंची है। और फरमाइश पहुंची है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग की। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म अपनापन से ये गीत।

इसी गीत की फरमाइश की थी पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी और असद अंसारी ने। अगली गीत की फरमाइश हम तक पहुंची है ऋषिकेश उत्तराखंड से। अभय पालीवाल, आंचल, राहुल पेटवाल, रानी रूपमती, अभिषेक कुरियाल, हिमांशु कुरियाल। साथ ही फरमाइश हम तक पहुंची है हमारे नियमित श्रोता हैं बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, रचिता मस्कीन। आपकी फरमाइश हम एक बार पहले भी ले चुके हैं, आपका नाम भी पढ़ चुके हैं। और साथ ही गणेशपुर गंज डंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा प्रवीण, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान की फरमाइश हम तक पहुंची है। और हमारे फरमाइश करता है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। साथ ही हमारे फरमाइश करता है हमारे श्रोता वारसी करब सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान और मानपुर साबित ज़िला मुरादाबाद से शेख ज़ियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान की फरमाइश पहुंची है हम तक। और फरमाइश करता है हमारे श्रोता वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। फरमाइश हम तक पहुंची है हमारे श्रोता हैं गांव उगाला ज़िला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और हरमन। साथ ही गंज डंडवारा से मोहम्मद कलीब अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी और समशुल कमर राही की फरमाइश हम तक पहुंची है। और हमारे फरमाइश करता हैं राजनगर मधुबनी से शारदा गुप्ता, रूपा गुप्ता, फूलो मैडम, रंजू रंगीली, कुशेश्वर कांति गुप्ता। फरमाइश करता है हमारे श्रोता मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। साथ ही जवाहर नगर दुर्ग से हमारे श्रोता आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े की फरमाइश हम तक पहुंची है। और फरमाइश करता है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। फिल्म का नाम है लोफर।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अगली फरमाइश हम तक पहुंची है महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से। रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनद नाचानी, मिथिल नाचानी, प्रगति नाचानी बाबू भाई की फरमाइश हम तक पहुंची है गांव फरासी जिला हिसार से। राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी फरमाइश करता है हमारे श्रोता। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से बैनी सिंह सागर, पनीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, खनक शुगुन, सारांश आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथ्वी सिंह। और फरमाइश करता है हमारे श्रोता शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर मोहम्मद जैन, जन्नत विष्णु अग्रवाल जी। हमारे श्रोता हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और साथ ही हमारे श्रोता हम तक अपनी फरमाइश पहुँचा रहे हैं। आप हैं उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु खोरवाल। हमारे श्रोता हैं गांव जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। आप सबकी फरमाइश पर लीजिए श्रोताओं सुनिए कार्यक्रम में ये अगला गीत, फिल्म है साजन।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब लेते हैं कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश। आप हैं रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से किशन वंजानी, नीलम, स्वाति, संगीता, सरिता, सुमन महाजन और किस्सू। साथ ही फरमाइश करता है हमारे श्रोता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता। हमारे फरमाइश करता है शांति निवास लेहगांव रेलवे जिला अमरावती महाराष्ट्र से दीपक कुरहाड़े। हमारे श्रोता हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। हमारे नियमित श्रोता हैं महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से। आपका नाम मैं पहले ले चुकी हूं, आप अलग अलग नंबर से हमें फ़ोन कर रहे हैं ताकि हम अलग लोगों के मैसेज ना पढ़ सके, तो कृपया ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टर, रोजी डिकेस्टर, पर डिकेस्टर और विलिस डिकेस्टर की फरमाइश हम तक पहुँची है। और फरमाइश पहुँची है मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन रोजा मुस्कान और अफसर अली नगमा नाज मंसूरी की। और फरमाइश करता है गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूद, साइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अबीम हुसैन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की

0: रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested 5 accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2026 examination. The 5 accused persons in the case, 3 from Jaipur, 1 from Gurugram, and 1 from Nashik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches today at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. The agency is also coordinating with the Special Operations Group Rajasthan, which had conducted a preliminary inquiry into the case. Prime Minister